और इससे पहले मैं आपसे पुष्पांजलि से अनुमति लूं, पर आप सब मेरे साथ जुड़िए और हवा में दोनों हाथ ऊपर करके शिव शंभु, बाबा विश्वनाथ और कालों के काल महाकाल का जय घोष करें और दिल से आंखें बंद कर जोर से बोले, ओम नमः पार्वती पते हर

जी हाँ, रेनबो सुन रहे हैं आप शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट 102.2। सुबह के बज रहे हैं पूरे साथ, हो चुकी एक फ्रेश वाइब के साथ आज के दिन की शुरुआत। नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई मुस्कान लेकर रहे आज की ये सुबह, और इस खूबसूरत पल में हम हैं आपके साथ। जी हाँ, मैं उसी आपकी दोस्त सीमा और लेकर आ चुकी हूँ आपका फेवरेट गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम चाय की चुस्कियों के साथ। सुप्रभात, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग।

0: are you?
1: जो तो बता दूं आपको कि रेनबो इस वक्त है आपके साथ, सुबह के 7:07 का वक्त हो रहा है पूरा। धीरे धीरे सड़कों पर हलचलें बढ़ चुकी हैं, मॉर्निंग वॉक, योगा और झुम्बा के साथ, कहीं मट्ठा तो कहीं मक्खन बन का स्वाद है, तो कहीं हेल्दी शुरुआत के लिए स्प्राउट का साथ है। तो हमारे हर दिन की सुबह जो है कुछ ऐसी होती है। और बाय द क्लॉक जैसे कि मैंने बताया 7:08 यहाँ अब हो रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि आज कौन कौन से प्रोग्राम हैं जिनको आप हमारे साथ एंजॉय करने वाले हैं। तो सबसे पहले समाचारों के ठीक बाद, यानी हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के ठीक बाद सुबह 8:30 पर लेकर आएंगे शुरू की पुरानी महफिल, सुनवाएंगे कुछ मेलोडियस गाने। 9:00 का टाइम होगा इस बहार का, बनाएंगे आपकी मॉर्निंग को थोड़ा और एनर्जेटिक। और 9:45 पर विविधा में बिखरेंगे लोक गीतों के रंग, लोक रंग में। दिन में 11:00 से लेकर आएंगे आपके लिए हमनवा, और आज मेरी हमनवा होंगी आरजे रितु, होंगी इंटरेस्टिंग सी बातें आपके साथ में और रितु के साथ ही। दिन में 3:00 एंजॉय करेंगे आज का म्यूजिक का। तो ये थी इन शॉर्ट जानकारी आज ब्रॉडकास्ट होने प्रोग्राम्स की। और अब फिलहाल प्रोग्राम में आगे बढ़े एक ब्यूटीफुल से ट्रैक के साथ। तो कनेक्ट है इस वक्त शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट रेनबो के साथ, एंजॉय कर रहे हैं आज का गुड मॉर्निंग प्रोग्राम, गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम आपके दोस्त सीमा के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग।

जी हम भी हर दिन आपसे मिलते हैं ऐसे ही सुबह 7 बजे गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में। आपका मॉर्निंग टी टाइम शो, और जैसे कि सूरज की पहली किरण धरती को रोशन कर दिए, वैसे ही ये सुबह आपकी जिंदगी में नए जज्बे और नई उम्मीद लेकर आए। जी हाँ, जुड़ जाइए नेचर की खूबसूरती के साथ और एनर्जी के साथ। क्या कह रही है आज की पॉजिटिव वाइब? और ये पॉजिटिव वाइब है रविन्द्रनाथ टैगोर के इंस्पायरिंग वर्ड है आपके लिए कि अपना लक्ष्य ऊंचा रखो क्योंकि सितारे तुम्हारे अंदर छुपे हैं। गहरे सपने देखो क्योंकि हर सपना लक्ष्य से पहले आता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के वर्ड हमें ये सिखाते हैं कि सपने सिर्फ रातों में नहीं देखे जाते दोस्तों, उन्हें हौसलों और मेहनत से सुबह की नई रोशनी में सच भी किया जाता है। तो इस खूबसूरत सुबह में आपके अंदर छिपे सितारों पर भरोसा रखें। हर नई शुरुआत एक बड़े सपने की पहली सीढ़ी है। ये है फुल ऑन पॉजिटिव वाइब आज की, और आज के गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में ये वाइब फिलहाल हमने आपके साथ शेयर कर ली। प्रोग्राम में वक्त है एक और ट्रैक को आपके साथ शेयर करने का।

गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में वक्त है अब देश दुनिया की बड़ी और खास खबरों पर एक नजर डालने का। भारत आज से शुरू होने वाली दो दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। इसके साथ आपको ये खास खबर भी अपडेट कर दें यहाँ पे कि विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के इच्छुक लोगों से 19 मई से पहले आवेदन करने का आग्रह किया है। यात्रा के पंजीकरण जल्द ही बंद होने वाले हैं। इच्छुक आवेदक इसकी आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं।

देश में हवाई यात्रा को लेकर बड़ा बदलाव आने वाला है। टोल प्लाजा पर लंबी कतारें बन जाएंगी इतिहास, क्योंकि शुरू हो रहा है बैरियरलेस टोल सिस्टम NH-48 और दिल्ली में शुरू होने के बाद मल्टीलेन फ्री फ्लो सिस्टम अब पूरे देश में फैलने जा रहा है, जहां वाहन बिना रुके बिना बैरियर के आसानी से गुजर सकेंगे।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

रेनबो की घड़ी में सुबह के 7:29 का समय हो रहा है पूरा, और इस वक्त कनेक्ट है आप, जी हाँ, आज के गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में। April 14, 2026 गुरुवार। तो चलिए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और बात करते हैं उन घटनाओं की जिन्होंने देश दुनिया की तस्वीर बदल दी। तो सबसे पहले बात करेंगे इजराइल की स्वतंत्रता की, साल 1948। 1948 में यहूदी आंदोलन के बाद आज ही के दिन इजराइल ने दुनिया के एकमात्र यहूदी राष्ट्र के रूप में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। ब्रिटेन में लगाया गया चेचक का पहला सफल टीका साल 1996 में आज ही के दिन इंग्लैंड के डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने 8 वर्षीय रोगी को चेचक का पहला सफल टीका लगाया था। चौदहवीं भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, साल 1954 में आज ही के दिन तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर ने ये ऐतिहासिक घोषणा की थी कि हाउस ऑफ द पीपल को अब से लोकसभा के नाम से जाना जाएगा। लोकसभा संविधान के प्रति निष्ठा, जनता की आकांक्षाओं और राष्ट्रहित में लिए गए निर्णयों की सजीव संस्था है। इस दिन को याद करना भारत की लोकतांत्रिक परंपरा के प्रति आदर भाव प्रकट करना है।

और क्या कह रही है आज की सोशल मीडिया अपडेट्स जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, हाईलाइट हो रही है फेसबुक और एक्स हैंडल पर। नेशनल हेल्थ मिशन यूपी की ओर से ये ट्वीट है एक्स हैंडल पर। डेंगू से बचाव को लेकर जहां काफी सतर्कता दिखाई जा रही है, और सतर्कता ये कि पानी की टंकी को ढककर रखें, मच्छरदानी लगाकर सोएं, खिड़की दरवाजों पर मच्छरों से बचाव के लिए जाली लगाएं, खाली बर्तनों में पानी को इकट्ठा ना होने दें, पूरी बाह के कपड़े पहने, ये छोटे छोटे उपाय अपनाकर डेंगू को रोके और अपने परिवार को सुरक्षित रखे। डेंगू से सावधानी, बीमारियों से आजादी। और अधिक जानकारी के लिए आप इसके टोल फ्री नंबर 1800-180-5145 पर भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, कानपुर की गर्मी से तो हम सब वाकिफ है, पर इस बार मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में हमारे मेहनतकश भाई बहनों को सावधान रहने की सलाह दी है। चिलचिलाती गर्मी में काम करते समय सतर्क रहना है बेहद जरूरी, तो थोड़ी थोड़ी देर में पानी जरूर पीते रहें। अधिक पसीना आने पर शरीर में एसेंशियल मिनरल्स और सॉल्ट की कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन करते रहें, जैसे ORS का घोल और सत्तू का शरबत, गुड़ और पानी, नींबू का शरबत लेते रहें बीच बीच पे। अपनी सेहत का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।

और इसी के साथ ही एक और यहाँ पे अपडेट है सोशल मीडिया की। कल सीबीएसई बोर्ड के परिणाम घोषित हुए हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उनके ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्वीट मिला है। ये सभी सफल छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को हार्दिक बधाई। छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना के संदेश के साथ। तो ये थी जी हाँ सोशल मीडिया अपडेट्स आपके लिए। और सोशल मीडिया की इन खबरों के साथ प्रोग्राम में वक्त है अगले सॉन्ग का, जो आप तक पहुंचा दिया जाए। सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम सीमा के साथ। फिलहाल रेनबो की घड़ी में 7:40 का वक्त हो रहा है पूरा। तो बढ़ते हुए वक्त के साथ हम भी कदम से कदम मिलाकर

शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट रेनबो पे अगली अपडेट आपके लिए शहर से जुड़ी हुई। कम सुनने की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए आईआईटी के स्टार्टअप केशम इनोवेशन ने क्रांतिकारी समाधान पेश किया है, जहां मरीजों को सुनने के लिए कानों की मशीन नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि एक ही स्मार्ट ग्लास से उन्हें आवाज की दुनिया से जोड़ दिया जाएगा। ये चश्मा न केवल सुनने में मदद करेगा उनकी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लूटूथ जैसी आधुनिक सुविधाओं से भी पूरी तरह लैस होगा। तो ये स्मार्ट इनोवेशन बनने जा रहा है हियरिंग लॉस की समस्या से जूझते लोगों के लिए, जो है किसी उपहार से कम नहीं होगा। और बेहद गर्व और खुशी की बात है, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट कल जब आउट हुआ, शहर की बेटी सोनाक्षी बनी नेशनल टॉपर, 99.6% अंक प्राप्त कर। जी हां, सोनाक्षी गोयल ने सीबीएसई 12th में 4 विषयों में 100% स्कोर प्राप्त किए हैं। सर्वोदय नगर की रहने वाली सोनाक्षी की सफलता ने जो गौरव प्राप्त किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ ही कुछ और अपडेट हैं, काम की खबरें हैं, ये भी आपसे हम यहाँ शेयर कर लेते हैं। आज केस को जो है मरम्मत के लिए शटडाउन करेगा, इसमें आचार्य नगर, ओ ब्लॉक किदवई नगर, पराग डेरी, यू ब्लॉक चावला मार्केट की बिजली सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, और 40 दुकान सब स्टेशन के हनुमान मंदिर फीडर की बिजली जो है 11 से 2 बजे तक बंद रहेगी। और इसके साथ ही एक और अपडेट, राज्य हथकरघा पुरस्कार के लिए 18 तक आपको आवेदन करने हैं। संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव के बुनकर अपना आवेदन पत्र विभागीय पोर्टल handloom.upsdc.gov.in पर 18 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी कुछ खास अपडेट हमारे शहर से जुड़ी हुई। यहाँ जुड़ते हैं प्रोग्राम में आगे, 7:48 का वक्त हो रहा है पूरा आपके लिए एक और ब्यूटीफुल सा ट्रैक आज के गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में।

और सबसे पहले शहर से जुड़ी, खेल से जुड़ी ये अपडेट आपके लिए कि शहर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में एक बार जी हाँ क्रिकेट फिर से रंगने जा रहा है और होने जा रहा है यहाँ पे यूपी T20 लीग का आगाज। और कब से होने जा रहा है? ये होने जा रहा है 14 अगस्त से 6 सितंबर तक। तो इस लीग में 24 मुकाबले खेले जाएंगे। कानपुर सुपरस्टार्स, लखनऊ फॉल्कन्स, मेरठ मेवरिक्स, काशी रुद्राक्ष, गोरखपुर लॉयंस, नोएडा किंग्स समेत 6 टीमों के बीच ये मैचेस खेले जाएंगे यूपी T20 लीग में। और अब आपके लिए खेल समाचार। कोहली के रिकॉर्ड सेंचुरी से कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराकर बेंगलुरु प्ले ऑफ के करीब पहुंचा है। और इसी के साथ ही ये अपडेट आपके लिए। एशियाई वेट लिफ्टिंग में ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता रजत और कांस्य पदक।

और अब आइए चलते चलते आपसे मौसम की अपडेट यहाँ शेयर कर ले। उससे पहले जी हाँ, मौसम से कनेक्टेड ये अपडेट आपके लिए कि देश में मौसम पूर्वानुमान की व्यवस्था के चलते बड़े तकनीक बदलाव के दौर में पहुंच गई है। भारत मौसम विभाग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आधारित ऐसी प्रणाली शुरू की है जो 4 हफ्ते पहले तक जिलावार मॉनसून की प्रगति का अनुमान दे सकेगी। 4 सप्ताह पहले ही मौसम के हाल की जानकारी आपको मिल जाएगी, जिससे शहर को जल भरा और ड्रेनेज को मैनेज करने के लिए प्रशासन को आपदा से निपटने में मदद मिल सकेगी। साथ ही इस नए सिस्टम से प्रत्येक किलोमीटर के दायरे में 10 दिन पहले ही मिल जाएगा सटीक वर्षा का पूर्वानुमान। तो ये तो खैर अपडेट थी मौसम की, जो अब हमें इन टाइम मिल जाया करेगी। और आज के मौसम का क्या हाल है ये भी आपसे यहाँ शेयर कर लेते हैं कि कैसा रहने वाला है आज का मौसम। चंद्रशेखर आज़ाद, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय।

विद्यालय एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी 5 दिनों में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के आसार हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। और अधिकतम तापमान की हम बात करें तो 38.4 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और न्यूनतम की बात करें तो 26.4 न्यूनतम तापमान रहने वाला है आज का। तो फिलहाल इन्हीं बातों के साथ आज का गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम यहीं हो रहा है वाइंड अप।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और

0: संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच आबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
2: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
3: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों के उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है।
6: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
7: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में

0: में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। दो दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है तमिलनाडु में फ्लोर

0: टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रूपये बढ़ाकर 2441 रूपये किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार, दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रूपये प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। 2-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A 2-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Sayed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Sihasak Phuanketkyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia, Dato Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan, and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
3: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 80th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said, a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. He said the proposed legislation aims to address issues including

जी आप सुन रहे शहर के म्यूजिकल हार्टबीट रेनबो 102.2 रेनबो की घड़ी में 8:31 का वक्त हो रहा है यहाँ पर पूरा, और इस वक्त हम आ चुके हैं आज के शुरू के पुरानी महफिल प्रोग्राम के साथ। नमस्कार अभिनंदन, और प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं हम आपके हैं कौन फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के साथ, आवाज़ें SP बालासुब्रमण्यम लता मंगेशकर की।

पहुंचने को है तैयार, जमाई राजा फिल्म से ये नगमा है। आवाजें हैं एस जानकी और एक बार फिर से एस पी बाला सुब्रमण्यम की। सुनवाते हैं आपको ये गाना जमाई राजा फिल्म से।

0: आशा भोसले, समीर कुमार और कुमार सानू की आवाज में अभी आपने ये सुना घायल फिल्म का गाना। और इसी के साथ ही आज की सुरों की पुरानी महफिल का जी समापन हो रहा है इसी गीत के साथ ही। फिलहाल प्रोग्राम में हम बढ़ने वाले हैं आगे 9 बजे के रजबाहर प्रोग्राम के साथ, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए शहर के म्यूजिकल हार्ट बीट रेनबो के साथ। लेकर आते हैं बस अब से कुछ ही देर में आपके लिए
1: नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।
2: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

वेलकम अगेन, गाड़ी में बज चुके हैं पूरे 9 कनेक्ट हम शहर के म्यूजिकल हार्ट बीट रेनबो के साथ 102.2 की फ्रिक्वेंसी पे। जी हाँ, शहर की सड़कों ने इस वक्त पूरी रफ्तार पकड़ ली है, हर कोई एक नई एनर्जी के साथ अपनी मंजिल की ओर निकल रहा है। तो हम भी हैं तैयार बनाने आपके मॉर्निंग को और भी एनर्जेटिक एंड एंटरटेनिंग आज रसबहार शो पर। जी हाँ, और आज के इस शो पर सीमा है आपके साथ में, तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। फिलहाल बाय द क्लॉक 9:02 का वक्त हो चुका है पूरा, और प्रोग्राम की अभी शुरुआत एक ब्यूटीफुल से एनर्जेटिक सॉन्ग के साथ पहुँच रहा है आप तक।

जी हाँ, 9:05 का वक्त हो रहा है यहाँ पर पूरा, और इस वक्त आप कनेक्ट है शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट रेनबो के साथ, और रेनबो पर शुरू हो चुका है, शुरू होगा ये सुरीला सफर एनर्जेटिक सॉन्ग के साथ रस बहार प्रोग्राम में। सीमा है आपके साथ करने कुछ खास बातें, साथ ही ब्यूटीफुल से ट्रैक को लेकर। तो 32 डिग्री टेम्परेचर के साथ अभी क्या है कि मौसम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, लगातार घटता बढ़ता तापमान कहीं ना कहीं दोस्तों हमें ये एहसास दिलाता है कि नेचर का बैलेंस धीरे धीरे बदल रहा है। हाल फिलहाल हमने ये देखा भी है, और आज हम एनवायरमेंट के प्रति थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बने, पेड़ लगाए, पानी बचाए, अननेसेसरी फ्यूल यूज कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग अपनाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रायोरिटी दें, देश को जो है देश की ये वेल्थ है ये बचानी जरूरी है, और साथ ही हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है इसके साथ में, तो शायद आने वाले समय की गर्मी कुछ कम महसूस हो अगर हम ऐसा करते हैं तो, क्योंकि हमारी छोटी छोटी आदतें ही बड़ा बदलाव ला सकती हैं देश और आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो है ये चीज़ बेहद ज़रूरी है। अभी हाल ही में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से सस्टेनेबल लाइफ अपनाने की अपील की है ताकि एनवायरनमेंट और लिमिटेड रिसोर्सेज को बचाया जा सके। ये छोटे छोटे स्टेप हैं, जब देश के करोड़ों लोग एक साथ अपनाएंगे तो डेफिनेटली एक बड़ा बदलाव ज़रूर लेकर आएंगे। तो वेल, ये ज़रूर कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को अपनाइए, लाइक पेड़ लगाइए, अपने घर के पानी को बचाइए, बेहद ज़रूरी है। अगर ये रिसोर्सेज वाकई में ख़त्म हो गए तो आगे की लाइफ क्या होगी, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है, सोचने की बात है। तो अभी सोचना स्टार्ट कीजिए इसके बारे में। फिलहाल प्रोग्राम में हम बढ़ रहे हैं आगे, और यहाँ पे एंजॉय करा रहे हैं एक और खूबसूरत सा ट्रैक, ये

सुबह के 9:12 हो रहे हैं पूरे और इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप आज का रस बहार प्रोग्राम, जहां सीमा लेके आई आपके लिए कुछ दिलचस्प बातें। क्या है ये बातें? एक जुड़ी है देश की पहचान से तो दूसरी उस आवाज से जिसने दशकों तक हिंदुस्तान के दिलों में राज किया। बताऊं इससे पहले आपके लिए छोटा सा सवाल कि क्या आप जानते हैं भारत का पहला गांव किसे कहा जाता है? और इसी के साथ ही जी हाँ, जब हम आकाशवाणी के 90 वर्षों का जश्न मना रहे तो याद आती है उस सुरमई आवाज की जिसने रेडियो के जरिए करोड़ों श्रोताओं तक अपनी पहचान बनाई, लता मंगेशकर जी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो खास सवाल ये उनसे जुड़ो आपके लिए कि कब पहली बार लता जी की सुरीली आवाज देश के श्रोताओं तक पहुंची, ये सब बातें हम आपसे शेयर करने वाले हैं आपके साथ। तो बस कनेक्ट रहिए हमारे साथ।

अपनी रसबहार शो पर। अभी आपके लिए फिलहाल वक्त है अगले ट्रैक को जी हाँ एंजॉय कराने का, तो जो बिल्कुल क्यू है और प्ले करने के लिए हम हैं यहाँ पे तैयार। बढ़ते हुए वक्त के साथ 9:14 का वक्त हो रहा है पूरा।

जी हाँ, तो और अब आपको बताते चले यहाँ देश के पहले गांव के बारे में, जिस बारे में हम आपसे बात कर रहे थे उसका क्या नाम है? उसका नाम है माना। बद्रीनाथ के पास बसा ये खूबसूरत सा गांव भारत तिब्बत सीमा के करीब स्थित है, खूबसूरत पहाड़ों के बीच। और भारत तिब्बत सीमा के करीब बसे इस गांव को पहले देश का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब इसकी पहचान फर्स्ट इंडियन विलेज के रूप में की जा रही है। ये गांव सिर्फ अपनी लोकेशन की वजह से ही खास नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, पारंपरिक जीवन शैली, प्राकृतिक खूबसूरती भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बर्फ से ढके पहाड़, शांत वादियाँ और लोक संस्कृति का अनोखा अनुभव लेते हैं यहाँ आने वाले पर्यटक। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बताएंगे कि माना गांव का संबंध महाभारत की कई मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पांडव स्वर्गारोहण के लिए इसी मार्ग से हिमालय की ओर गए थे। यहाँ के भीम पुल से जुड़ी भी मान्यता है कि जब पांडवों ने रास्ते में तेज बहती सरस्वती नदी को पार किया, तो द्रौपदी को नदी पार कराने के लिए भीम ने एक विशाल पत्थर उठाकर नदी में रख दिया। उस पत्थर को आज भीम पुल कहा जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि सरस्वती नदी यहाँ कुछ दूरी तक दिखाई देती है, फिर आगे चलकर अलकनंदा में विलीन हो जाती है, जिसकी तेज धारा और गर्जना लोगों को आज भी आकर्षित करती है। तो ये है देश के सबसे पहले गांव माने से जुड़ी कहानी। और आज इस गाँव के बारे में हमने जाना, भी यही वजह है कि माना गाँव सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और महाभारत काल की कथाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। तो इसी दिलचस्प जानकारी के साथ प्रोग्राम में आपके लिए ये अगला ट्रैक।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

जी आप सुन रहे आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.2। मना रहे हैं हम आकाशवाणी के 90 वर्षों का जश्न, तो इसके सुनहरे इतिहास से जुड़ी हैं कई यादें अपने आप ताजा हो जाती हैं। उन्हीं यादों में से एक बेहद खास नाम है लता जी का, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की कब पहली बार रेडियो पर गूंजी आवाज। याद आती है ये ऐतिहासिक घड़ी 16 दिसंबर 1941 की, ये वो दिन जब पहली बार आकाशवाणी के माध्यम से लता जी की सुरीली आवाज देश के श्रोताओं तक पहुंची थी। इस पहली प्रस्तुति में उन्होंने दो मराठी नाट्य गीत पेश किए जो उनके ऐतिहासिक संगीत के सफर की आधारशिला बनी। और जब उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी ने ये प्रस्तुति सुनी तो वो बेहद खुश हुए, जो आगे चलकर देश की पहचान बनी, दुनिया भर में स्वर कोकिला के नाम से अमर हो गई। तो श्रोताओं, उस दौर में रेडियो सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं था बल्कि नई प्रतियोगिताओं और प्रतिभाओं को भी घर तक पहुँचाने का बड़ा मंच रहा है। आकाशवाणी @90 शो का सफर सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास नहीं है बल्कि भारत की सांस्कृतिक, संगीत और भावनात्मक यात्रा का भी एक खूबसूरत हिस्सा है, जो कल था, आज है और कल भी रहने वाला है।

तो इन सब बातों के साथ हम प्रोग्राम में बढ़ चुके हैं आगे। सुबह के 9:34 का वक्त हो रहा है, पूरा शहर तेजी से बढ़ रहा है आगे और हम भी बढ़ते हुए वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। सुन रहे हैं आप रेनबो शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 और रेनबो पर इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं आज का रस बहार आपकी दोस्त सीमा के साथ। जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए अपनी बातों के साथ प्रोग्राम में हम भी बढ़ेंगे आगे और आज के रस बहार शो पर अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस का बर्थडे जिन्होंने अपनी पहली फिल्म में प्रिंसेस का रोल प्ले किया, सलमान खान की अपोजिट वीर फिल्म में। बात हम कर रहे हैं जरीन खान की, उनका आज है हैप्पी वाला बर्थडे। तो जरीन ने हिंदी, पंजाबी और कुछ अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया। हिंदी फिल्मों में हाउसफुल 2, हिट स्टोरी 3, अक्सर 2 और 1921 जो हॉरर फिल्म रही है में काम किया, जहां उनके काम को अप्रिशिएट किया गया। इसके अलावा उन्होंने कई म्यूज़िक वीडियोस और टीवी शोज़ में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, विश करते हैं उनकी प्यारी मुस्कान पर्दे को और हर दिल को रोशन करती रहे उनके फिल्म के गाने के साथ। जी हाँ, शेयर कर रहे हैं फिलहाल उनका बर्थडे यहाँ पे और पहुँच रहा है आप तक ये ट्रैक। ये

0: जी हाँ, सुबह के 9:44 का वक्त हो रहा है पूरा, और यहाँ पे इस वक्त के साथ आज के रजबहार प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय भी लगभग हो चुका है पूरा। और चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि अभी इस प्रोग्राम में खूबसूरत एहसास और पॉजिटिविटी के साथ, जी हाँ, अपने दिन को बनाए रखिए। खास फिलहाल एक प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर ज़रूर बनाए रखिए, क्योंकि ये जो मुस्कान है ना आपके चेहरे की, वो दूसरों को जो है स्माइल के साथ खुश रखेगी और साथ ही आपको तो पॉजिटिविटी देगी। तो हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, बस इंजॉय करते रहिए। फिलहाल अभी आज के रजबहार प्रोग्राम को यहीं कर रहे हैं वाइंड अप, और अगला प्रोग्राम लेकर आते हैं कुछ ही देर में विविधा। विविधा में आज हम आपको सुनवाएंगे लोकगीत लोक रंग कार्यक्रम में, तो कहीं मत जाइए, बस जुड़े रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.2 के साथ।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए, कला साहित्य शिक्षा खेल चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार पद्मश्री पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

स्वागत आप सभी का एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं यहाँ पर। जी हाँ, लोक संगीत की महफिल और सबसे पहला ये लोकगीत आप तक पहुँच रहे हैं सीमा मिश्रा की आवाज़ में।

मालिनी अवस्थी के गाए इसी लोकगीत के साथ ही आज का लोक रंग कार्यक्रम यहीं समाप्त हो रहा है। अब हम आपसे मिलेंगे दिन में 11 बजे हम नवा शो के साथ, और आज हम नवा शो पर होंगी मेरी दोस्त हम नवा आरजे रितु। तो बस बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.2। अगले ब्रॉडकास्ट के लिए आपको कनेक्ट करेंगे हमारे लखनऊ केंद्र के साथ।

नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश में कल आए तेज आंधी तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। जबसे अधिक मौतें भदोही जिले में हुई हैं, जहां 15 लोगों की जान चली गई। मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली में 4 लोगों की मौत हुई है। बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने और अगले 24 घंटों में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मितव्ययिता, ऊर्जा संरक्षण और उत्तरदायी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। मुख्यमंत्री ने सचिवालय और निदेशालय में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने, प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग और आवश्यकता आधारित विद्युत उपभोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने कल इसे सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे, अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक में आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों को और साझेदार देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडल प्रमुख इस बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित और वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष परीक्षा में 17,68,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 85.2% यानी 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। छात्राओं की उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप

0: घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।

10:05 और सुपर हिट सॉन्ग्स लेकर आ चुकी हूँ मैं आपकी दोस्त आयुषी आपके साथ, और रहेगा ये म्यूजिकल सफर चलता रहेगा एक घंटे तक। हम सुनेंगे बहुत सारे प्यारे प्यारे भूले बिसरे और आपके दिलों में बसने वाले सदाबहार से वो गाने जिनके लिए कभी हम थिरक उठते थे और आज भी हमारे दिलों पर वो करते हैं राज।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

10:21 और सुपर हिट सॉन्ग्स का सफर जारी है 100.7 FM पर आयुषी के साथ, जहां हम निकाल कर ला रहे हैं ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर वो प्यारे प्यारे गाने जिन्हें हम बस बर बस कभी सुन लिया करते थे, यूं ही रेडियो पर, टीवी पर, और जहन में बसा लिया करते थे और जुबा पर सजा लिया करते थे।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

100.7 FM पर सुन रहे हैं आप सुपर हिट सॉन्ग्स आयुषी के साथ। 10:37 हो रहे हैं और प्यारे प्यारे सुपर हिट सॉन्ग्स गानों का ये जो सफर है ना, ये जारी है, अपने शबाब पर है और आपके साथ है। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए।

10:55 हो रहे हैं, सुपर हिट सॉन्ग्स सुन रहे हैं आप आयुषी के साथ। लेकिन देखिए ना, हर अच्छी चीज को भी हमें वाइंड अप करना पड़ता है, क्योंकि उससे भी अच्छी चीज तो आ सकती है ना, ये स्कोप रखना पड़ता है। और भाई ये म्यूजिकल सफर ऐसा ही होता है कि कितना भी कर लीजिए, एक गाने से दिल नहीं भरता, लेकिन हजारों गाने हैं जिन्होंने हमारे दिल में अपनी जगह बनाई है। और दिल तो बहुत बड़ा है ना, और दिल तो जुड़ा रहता है एफएम रेनबो के साथ। तो सुपर हिट सॉन्ग से आयुषी को दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं नहीं जा रही हूं मैं, जैसे कि मैंने कहा, अच्छी के बाद एक और अच्छी चीज और संदेश आपके गीत हमारे लेकर आपके साथ वापस से फटाफट जुड़ जाऊंगी। तब तक एंजॉय करिए ये सॉन्ग और मिलते हैं न्यूज ब्रेक के उस पार, संदेश आपके गीत हमारे लेकर।

0: वेलकम, नमस्कार। घड़ी में बज चुके हैं पूरे 11। हाजिर हैं हमनवा शो के साथ। मैं हूं सीमा और मेरे साथ मेरी हमनवा ऋतु। स्वागत आपका भी हमारे लिसनर्स के साथ, वही प्यारी सी स्माइल और अपनी गुड वाइब लिए। ऋतु जी,
1: इतनी प्यारी सी वेलकम के बाद सीमा दिन और भी खूबसूरत लगने लगा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे सभी लिसनर्स का मैं भी अपने प्रोग्राम हमनवा में स्वागत करती हूँ। और हम नवा प्रोग्राम को आज हम बनाते हैं और भी ख़ास एनर्जेटिक बनाते हैं। और क्या है आज अपने पिटारे में ख़ास बातें शेयर करते हैं अपने श्रोताओं के साथ।
0: बिल्कुल, हम बात शेयर करेंगे कि खेल का चरित्र विकास में क्या है महत्व, कैसे खेल के मैदान से हमारे जीवन का विकास जुड़ा हुआ है।
1: और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न हम मना रहे हैं। जानेंगे उन मशहूर हस्तियों के बारे में जिनकी आवाज ने पहली उड़ान आकाशवाणी से भरी।
0: और इसके साथ ही गर्मी के मौसम में इंडोर प्लांट्स की बात, जो हवा को फ्रेश रखने के साथ माहौल को सुकून से भर देंगे।
1: ज्ञान विज्ञान सेगमेंट में हम बात करेंगे उसकी, जो हमारे किचन में मौजूद होता है और बड़ा ही रुलाता है, यानी कि प्याज।
0: जी हाँ, समझेंगे कि आखिर प्याज काटते वक्त आंखों से आंसू क्यों आते हैं। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आएंगे चलते चलते एक रेसिपी, यहाँ पे हम लेकर आएंगे।
1: तो आज के हम नवा में इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं सीमा, लेकिन उन बातों की शुरुआत करेंगे हम इस प्यारे से ट्रैक के बाद।

0: सीमा हमारा और तुम्हारा साथ भी बहुत प्यारा है और हमारे दोस्तों का साथ भी बहुत प्यारा है। और हमने अभी स्टार्टिंग में बताया कि हमारा एक विषय है खेल का चरित्र विकास में महत्व। तो मुझे लगता है कि हमारे जो भी श्रोता हैं वो सभी खेल से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, मतलब खेल में इंटरेस्ट रखते हैं। तो उनके विचार हम आमंत्रित करते हैं अपने इस विषय पर। तो हमारी ईमेल आईडी आप बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जी हाँ, हमसे जुड़ने के लिए आप कनेक्ट हो जाइएगा AIRKANSOMEDIA@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है। हमें है आपके मैसेजेस का, आपके संदेश का इंतजार। तो बस जुड़ जाइए हमारे साथ में। फिलहाल हम अपनी बातों को यहाँ कंटिन्यू करेंगे अपने साथ के साथी। और जब ये साथ हमारा पूरा 90 वर्षों का हो रहा है, बेहद ही खुशी की बात है हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। और ये जश्न हम मना रहे हैं पूरे 90 साल का। तो भारत में आकाशवाणी केवल एक रेडियो संस्था नहीं रही है, बल्कि ये प्रतिभाओं की ऋतुदी ऐसी पाठशाला रही है जहाँ से अनेक महान कलाकार, गायक, समाचार वाचक, साहित्यकार और अभिनेताओं ने अपने सफर की शुरुआत की है। आकाशवाणी @90 के अवसर पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि इस मंच ने भारतीय संस्कृति, संगीत, साहित्य और पत्रकारिता को कितनी महान हस्तियां दी हैं।
0: बिल्कुल। और रेडियो के स्वर्णिम दौर में जब टीवी और इंटरनेट नहीं थे सीमा, तब आकाशवाणी ही लोगों के मनोरंजन, जानकारी और संस्कृति का सबसे बड़ा माध्यम था। यहां से निकलने वाली आवाजें घर घर पहचानी जाने लगी। कई कलाकारों ने यहीं से अपने करियर की शुरुआत की और बाद में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि उन्हें प्राप्त हुई।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। आकाशवाणी से शुरुआत करने वाली प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला नाम आता है, जी हाँ, जिनके बारे में हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, जिन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। लता मंगेशकर जी की बात हम यहाँ कर रहे हैं। और भारत रत्न लता मंगेशकर ने अपने शुरुआती दिनों में आकाशवाणी पर गीत गाए। उनकी मधुर आवाज ने रेडियो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाद में वे भारतीय सिनेमा की सबसे महान गायिकाओं में से एक गायिका बनी।
0: बिल्कुल। और मोहम्मद रफी की भी बात करें तो अपने गायन जीवन की शुरुआत रेडियो कार्यक्रमों से उन्होंने की। शास्त्रीय संगीत की मजबूत पकड़ रखने वाले मन्नाडे ने रेडियो के जरिए अपनी कला को लोगों तक पहुंचाया और आकाशवाणी ने उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच दिया।
1: किराना घराने के महान गायक भीम सेन जोशी जी की ख्याति फैलाने में आकाशवाणी की सबसे बड़ी भूमिका रही है। उनके भजन और शास्त्रीय प्रस्तुतियां रेडियो पर बेहद लोकप्रिय थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन ने अपने शुरुआती करियर में आकाशवाणी में नौकरी पाने की कोशिश की। यद्यपि उन्हें समाचार वाचक के रूप में चयन नहीं मिला, लेकिन उनकी आवाज बाद में भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली आवाजों में से गिनी गई।
0: बिल्कुल सीमा, महान कवि हरिवंश राय बच्चन की कविताएं और काव्य पाठ आकाशवाणी के माध्यम से लाखों श्रोताओं तक

0: पहुंचे। रेडियो ने हिंदी साहित्य को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गजल सम्राट जगजीत सिंह की आवाज को लोकप्रिय बनाने में भी रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा।
1: और हम बात करेंगे बेगम अख्तर जी की भी, आकाशवाणी के माध्यम से गजल और ठुमरी को नई पहचान दिलाई उन्होंने। रेडियो की दुनिया में अमीन सयानी जी का नाम अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। उनकी प्रसिद्ध शैली बहनों और भाइयों श्रोताओं के दिल में बस गई। हालांकि वे मुख्य रूप से रेडियो सिलोन से जुड़े, लेकिन भारतीय रेडियो संस्कृति और आकाशवाणी के स्वर्णिम दौर का वे महत्वपूर्ण चेहरा रहे।
0: बिल्कुल, और प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी और कई साहित्यकारों की कहानियां, नाटक और वार्ताएं आकाशवाणी से प्रसारित होती थी। इतिहास में विशेष रूप से खेल कमेंट्री में मेलविल डी मेलो एक बड़ा नाम है। सीमा, वे आकाशवाणी के सबसे प्रतिष्ठित समाचार वाचक और कमेंटेटर में से एक थे।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए अपनी बुलंद आवाज और आधिकारिक आवाज के लिए पहचाने जाने वाले देवकी नंदन पांडे रेडियो पर समाचार पढ़ने के अंदाज के लिए घर घर में प्रसिद्ध हुए। हास्य प्रसिद्ध अभिनेता असरानी ने बॉलीवुड में आने से पहले आकाशवाणी पर काम किया था। उन्होंने एक्टिंग को विज्ञान मानने वाले दौर में रेडियो ब्रॉडकास्टर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी।
0: दिल्ली मेट्रो की अगला स्टेशन वाली आवाज के रूप में प्रसिद्ध शम्मी नारंग ने आकाशवाणी में हिंदी समाचार वाचक के रूप में अपना करियर शुरू किया।
1: आकाशवाणी एट दी 19 ईयर केवल जो है वो एक उत्सव नहीं है, बल्कि उन आवाजों को याद करने का अवसर है जिन्होंने भारत की पीढ़ियों को जोड़ा। एक रेडियो वही मधुर ध्वनि आज भी हमारे जितने भी हमारे लोग हैं जो लिसनर्स भी जुड़ते हैं तो वो लोगों के दिलों में जीवित है और इतनी शिद्दत से लोग सुनते हैं कि उसका जो है अभी वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है लोगों के दिलों में।
0: बिल्कुल सीमा, और तो हम अब बारी है हमारे एक श्रोताओं को बढ़िया से एक 90s का एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं कुमार सानू की आवाज़ में।

0: बेहद ही खूबसूरत सा गाना सुनवाया रितु तुझे आपने यहाँ पे हमारे श्रोताओं को।
1: और सीमा, अभी हमने आकाशवाणी की बात की, तो अब हम बात करते हैं सिनेमा की। सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि ये समाज का दर्पण भी है। जिस प्रकार साहित्य समाज को दिशा देता है, उसी प्रकार सार्थक सिनेमा समाज की सोच, संस्कृति, समस्याओं और मूल्यों को उजागर करके लोगों को जागरूक बनाने का कार्य करता है।
0: सार्थक सिनेमा की हम बात करें तो ये वो सिनेमा है जो केवल मनोरंजन तक सीमित न रहकर सामाजिक, नैतिक, शैक्षिक और मानवीय संदेश देता है। ये समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है।
1: बिल्कुल, और आज के दौर में जब समाज अनेक चुनौतियों जैसे कि गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, लैंगिक असमानता, पर्यावरण संकट, नशाखोरी और सामाजिक भेदभाव से जूझ रहा है, तब सार्थक सिनेमा लोगों को सोचने और बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है।
0: ये वो सिनेमा है जो समाज की समस्याओं को जनता के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। जब लोग किसी समस्या को पर्दे पर देखते हैं तो वो उससे भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। जैसे तारे जमीन पर, पैडमैन और टॉयलेट एक प्रेम कथा, इन फिल्मों ने समाज में चर्चा की और लोगों की सोच बदलने का प्रयास किया।
1: बिल्कुल सही कहा सीमा तुमने। और सिनेमा समाज में फैली बुराइयों को उजागर करता है। जातिवाद, दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत और अंधविश्वास जैसी समस्याओं के खिलाफ सिनेमा ने हमेशा आवाज उठाई है। आर्टिकल 15, पिंक और ओ माय गॉड जैसी फिल्में लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं कि समाज में बदलाव आवश्यक है।

0: तो सिनेमा केवल मनोरंजन ही नहीं करता है बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य भी सिखाता है। फिल्म थ्री इडियट्स ने शिक्षा व्यवस्था की कमियों को दिखाते हुए विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने का संदेश दिया। वहीं सुपर 30 मूवी ने शिक्षा के माध्यम से गरीब बच्चों के सपनों को साकार करने की प्रेरणा दी। और एक इसी के साथ एक मूवी मुझे और याद आ रही है, बारहवीं फेल, उसने भी कुछ ऐसा ही संदेश दिया समाज को।
1: बिल्कुल सीमा, और ये फिल्में मुझे लग रहा है हमारे सभी श्रोताओं ने देखी होंगी। सार्थक सिनेमा ने महिलाओं के अधिकारों और उनकी क्षमता को समाज के सामने प्रभावशाली तरीके से रखा। दंगल, क्वीन, थप्पड़, लापता, लेडीज, मिर्च मसाला जैसी फिल्मों ने समाज में महिलाओं के प्रति सोच बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, सिनेमा देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना को भी मजबूत करता है। हमारा ये सार्थक सिनेमा, लगान, स्वदेश और रंग दे बसंती जैसी फिल्मों ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा दी। सार्थक सिनेमा अक्सर उन लोगों की कहानी कहता है जिनकी आवाज समाज में दब जाती है। मजदूर, किसान, गरीब, दलित, आदिवासी और आम नागरिकों की समस्याएं इन फिल्मों के माध्यम से सामने आती हैं।
1: बिल्कुल, और सिनेमा युवाओं को मेहनत करने, समाज सेवा करने, देश के लिए सोचने और सही मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। भारतीय सिनेमा में सीमा कई महान फिल्मकार हुए हैं, जैसे कि सत्यजीत रे, विमल रॉय, श्याम बेनेगल, ऋषिकेश मुखर्जी। इन निर्देशकों ने अपनी फिल्मों के माध्यम से समाज की सच्चाइयों को सामने रखा है।
0: हालांकि सिनेमा का महत्व तो बहुत अधिक है, फिर भी ये कई ऐसे चुनौतियों का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। व्यावसायिक फिल्मों का दबाव होता है, दर्शकों की बदलती रुचि, बड़े बजट और प्रचार की कमी, मनोरंजन प्रधान सामग्री की अधिक लोकप्रियता, फिर भी अच्छे विषयों पर बनी फिल्में आज भी लोगों के दिलों को छूती हैं और समाज पर गहरा प्रभाव डालती हैं।
1: बिल्कुल सीमा, यदि सिनेमा समाज को सही दिशा दिखाए तो ये शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम बन सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम ऐसे सिनेमा को प्रोत्साहित करें जो मानवता, नैतिकता और सामाजिक सुधार के मूल्यों को आगे बढ़ाए। तो ऐसी ही एक फिल्म का गाना हम अपने श्रोताओं को अब सुनवाने जा रहे हैं।
0: जी हाँ, टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म से ये खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: हमारे तमाम लिसनर्स का एक बार फिर से स्वागत है और इस वक्त आप हमसे जुड़े हैं हम नवा शो पर। और आज के इस शो पर सीमा और रितु हैं आपके साथ, सुन रहे हैं आज का ये शो हमारे साथ में। तो अब हम बात करेंगे खेल का चरित्र विकास में क्या महत्व है, इसी विषय पर हम बात करने आ चुके हैं। ये वो शक्ति है जो मैदान से निकलकर जीवन को दिशा देती है, वो है खेल, जो हमारे कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबसे बड़ा साधन है।
3: बिल्कुल सही है सीमा, क्योंकि खेल और चरित्र विकास का आपस में गहरा संबंध है। खेल सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि मानसिक संतुलन, अनुशासन और नैतिकता भी सिखाता है।
2: और कहा भी जाता है जिसके बारे में कि जीत से बड़ा है संघर्ष, हार से बड़ा है धैर्य। खेल सिखाता है कि जीवन का हर अध्याय एक पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक है। खेल हमारे जीवन में जो सिर्फ मैदान तक ही नहीं

0: सीमित है, ये हमारी जिंदगी का असली स्कूल भी है।
1: फिर से कहेंगे कि मैदान में जो सीखा वही जीवन का सार है, अनुशासन और सहयोग से मिलता सच्चा आधार है। सुबह की प्रैक्टिस, टाइम पर पहुंचना, नियमों का पालन करना, ये ही तो अनुशासन है।
0: और यही डिसिप्लिन हमें जिंदगी में आगे बढ़ाता है। खेल का मैदान सिर्फ पसीना बहाने की जगह नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण की वर्कशॉप है। जब एक खिलाड़ी मैदान पर उतरता है तो वो सिर्फ गोल नहीं बनाता है, अपनी निष्ठा, धैर्य और खेल भावना का भी परिचय देता है।
1: बिल्कुल, और खेल हमें सिखाते हैं कि जीतना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि नियम के दायरे में रहकर ईमानदारी से लड़ना ही असली किरदार है। और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं शिक्षिका शशि श्रीवास्तव, जिन्होंने वर्षों से युवाओं बच्चों को खेल में के मैदान में प्रशिक्षित किया है।
0: तो वो अपने विचार यहाँ पे हमारे साथ में साझा कर रही हैं और बेहद ही ये इंस्पायरिंग वर्ड है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है।
2: मैं शशि श्रीवास्तव एक शिक्षिका हूँ, और खेल में बच्चों की चरित्र विकास की बात करें तो बिल्कुल खेल हमें दबाव में खुद को संभालना सिखाता है। मैदान में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब कुछ ही पलों में फैसला लेना होता है, उस समय खिलाड़ी घबराने की बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना सीखता है। यही आदत आगे जीवन में के संघर्षों में भी बहुत काम आती है। खेल हमें ये समझाता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती, कभी हार मिलती है तो कभी जीत। इसीलिए मुश्किल समय में टूटने की बजाय लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। एक खिलाड़ी दबाव में भी फोकस बनाए रखना सीखता है, और यही क्वालिटी पढ़ाई, नौकरी, परिवार और जीवन के हर क्षेत्र में इंसान को मजबूत बनाती है। इसीलिए कहा जाता है कि खेल सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन और व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाता है। और आपके हम नवा से जुड़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू।
0: तो जुड़ी हुई थी अभी हमारे साथ में शशि श्रीवास्तव जी। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने शेयर करी कि खेल का चरित्र विकास में क्या महत्व है, और इसी महत्व के साथ हम प्रोग्राम में बढ़ेंगे आगे, एंजॉय कराएंगे अपने लिसनर्स को एक और प्यारा सा गाना, और गाना आप तक पहुंच रहा है।

0: तो सीमा, जैसा कि भाई गर्मियों का मौसम चल रहा है और इन गर्मियों में हम बात करते हैं कुछ इंडोर प्लांट्स की। गर्मियों का मौसम आते ही तेज धूप, बढ़ता तापमान और गर्म हवाएं केवल इंसानों को ही नहीं बल्कि घर के अंदर लगे पौधों को भी प्रभावित करती हैं। इंडोर प्लांट्स यानी घर के भीतर रखे जाने वाले पौधे हमारे घर को सुंदर बनाने के साथ साथ वातावरण को शुद्ध करने, मानसिक शांति देने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का काम भी करते हैं।
1: लेकिन गर्मियों में इन पौधों की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिक गर्मी, सूखी हवा और पानी की कमी से ये जल्दी मुरझा सकते हैं। इंडोर प्लांट्स केवल सजावट का साधन नहीं है बल्कि ये हमारे जीवन में कई प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं, जैसे वायु शुद्धिकरण, मानसिक शांति, घर की सुंदरता और तापमान का संतुलन।
0: बिल्कुल सीमा, वैसे देखा जाए तो इंडोर प्लांट्स ही नहीं, जो भी पौधे होते हैं गर्मियों में उन सब की देखभाल बहुत ही जरूरी होती है। तो गर्मी का मौसम पौधों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अत्यधिक तापमान के कारण पत्तियां पीली पड़ सकती हैं, मिट्टी जल्दी सूख जाती है, पौधों की नमी कम हो जाती है, कुछ पौधे झुलस सकते हैं और तेज धूप जो है वो पत्तियों को जला सकती है। इसलिए गर्मियों में पौधों की देखभाल सामान्य दिनों की तुलना में अधिक करनी पड़ती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मियों में इंडोर प्लांट्स की देखभाल कैसे करें? तो हम बता दें कि सही मात्रा में पानी दें, सुबह या शाम के समय पानी दें, मिट्टी सूखी लगे तभी पानी दें और गमले में पानी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। सीधे सूर्य के प्रकाश से इसको बचाएं। पौधों पर पानी का इस

0: स्प्रे करें, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखें, क्योंकि अच्छी मिट्टी पौधों को स्वस्थ रखती है और कमरे का वेंटिलेशन भी सही रखती है।
1: बिल्कुल। और गर्मियों के लिए उपयुक्त इंडोर प्लांट्स कौन कौन से हैं, हम इस बारे में भी अपने श्रोताओं को बता देते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है मनी प्लांट का। इसे कम देखभाल की जरूरत होती है और ये गर्मियों में भी आसानी से जीवित रहता है, कम रोशनी में भी बढ़ता है, हवा को शुद्ध करता है और पानी में भी उगाया जा सकता है।
0: तो ये तो हमारे इंडोर प्लांट्स की बात चल रही, इसी में ही हम लेके आए हैं स्नेक प्लांट। और ये पौधा गर्मी सहने की क्षमता रखता है, रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, कम पानी में जीवित रहता है, ऑफिस और बेडरूम के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसके साथ ही एक और प्लांट की बात करेंगे जो आमतौर पर हमारे घरों में होता है, एलोवेरा। जी हाँ, गर्मियों का बेहद उपयोगी पौधा है, त्वचा के लिए लाभकारी तो होता ही है, कम पानी में बढ़ता है और औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है।
1: बिल्कुल सही कहा, पीस लिली। ये पौधा घर को सुंदर बनाने के साथ वातावरण को भी शुद्ध करता है। और साथ में अरेका पाम की बात करें तो ये गर्मियों में घर को ताजगी देने वाला पौधा माना जाता है।
0: और गर्मियों में जब बाहर का तापमान अधिक हो जाता है तब घर के भीतर पौधे रखने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर जो है पॉजिटिविटी आती है, तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है, वातावरण में नमी बनी रहती है, आंखों को भी आराम मिलता है और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। तो ये है भाई घर के अंदर जो हम इंडोर प्लांट लगाते हैं उनकी ये पॉजिटिविटी है।
1: बिल्कुल। और घर में लगाने के फायदे भी हैं। इंडोर पौधे जो हैं बच्चों को प्रकृति से जोड़ते हैं और उनमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं। वहीं बुजुर्गों के लिए पौधों की देखभाल एक अच्छा मानसिक व्यायाम भी साबित होता है। और तो यदि हर घर में कुछ इंडोर पौधे लगाए जाएं तो ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। वायु प्रदूषण कम करने में सहायता मिलती है, हरियाली बढ़ाने में योगदान और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी ये पौधे जो होते हैं वो हेल्प करते हैं।
0: तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यदि हम अपने घर में थोड़ी सी हरियाली शामिल करें तो ये न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा बल्कि प्रकृति के साथ हमारे संबंध भी मजबूत करेगा।
1: बिल्कुल सीमा, तो तुमने अपने घर में इंडोर प्लांट्स लगा रखे हैं कि नहीं लगा
0: रखे हैं? जी बिल्कुल लगा रखे हैं। और
1: बहुत अच्छी बात है। और हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो अगर उनने अपने घर में नहीं लगाए हैं तो वो जरूर लगाएं, है ना?
0: बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए ये सारी चीज़ें जो है हमारी लाइफ को पॉजिटिविटी से भर देती हैं और वैसे भी पर्यावरण को बचाने का एक छोटा सा स्टेप है ये, तो इन पेड़ों के प्रति और गर्मी को जो है वो कम करने के लिए इंडोर प्लांट्स बिल्कुल लगाएं अपने घरों के अंदर। और अभी फिलहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, खूबसूरत सा गाना ले चलेंगे आपको कुछ प्रकृति की ओर, कुछ ऐसा ही गाना प्ले करने के लिए। ऋतु जी है एकदम तैयार।

0: तो सीमा, गाना जो है वो बहुत ही मतलब पुराना गाना है, लेकिन सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब मुझे, मेरा फेवरेट सॉन्ग है, इसलिए मैंने आज इसे बजाया। और अब हम पहुंच चुके हैं ज्ञान विज्ञान सेगमेंट पर। तो हम ज्ञान विज्ञान सेगमेंट, आज हम सेगमेंट में आज हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात करने जा रहे हैं आपके साथ, और ये बात जुड़ी है हमारे किचन से।
1: जी हाँ, हमारे लिसनर्स के लिए इससे जुड़ी पहले मज़ेदार यहाँ पे पहेली है, वो हम साझा करना चाहेंगे कि काटो मुझे तो आंखें नम, बने जो सब्जी कमाल कदम, रसोई में हूँ रोज का मेहमान, ढाई अक्षर का मेरा नाम। अब आप बताइए कि क्या।
0: अच्छा, ये मुझसे पूछा जा रहा है?
1: जी सोचिए
0: तो
1: सोचिए।
0: नहीं, मैंने बिल्कुल सोच रखा है, और जिसके बारे में तुम बात कर रही हो वो है प्याज।
1: क्या बात है, एकदम सही जवाब है आपका
0: तो
1: ऋतु
0: अब बात किचन के इसी साथी से जुड़ी है कि
1: जी।
0: प्याज काटने पर क्यों आते हैं आंखों से आंसू। कई लोग सोचते हैं कि ये भावनाओं का असर है, लेकिन असल में ये विज्ञान का कमाल है।
1: दरअसल प्याज में एक कुदरती सुरक्षा चक्र होता है, जैसे ही हम इसे काटते हैं इसकी कोशिकाओं से एक खास एंजाइम बाहर निकलता है जो एक गैस का रूप लेकर हवा में फैल जाता है, जिसे सिन प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड कहते हैं।
0: क्या बात है भाई, जब ये गैस हमारी आंखों की नमी के संपर्क में आती है तो इससे निकलने वाला सल्फ्यूरिक एसिड आंखों की नसों को परेशान करता है, तो दिमाग को अलर्ट मिलता है कि आंखों को खतरा है। आंखों की इस जलन को दूर करने और आंखों को साफ करने के लिए टियर ग्लैंड्स सक्रिय हो जाते हैं, जिससे कि आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
1: जी, कुल मिलाकर हम कहें तो प्याज काटते वक्त आंखों से आंसू आना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो प्याज में मौजूद रसायनों के कारण होती है, जिससे बचने के लिए हमारी आंखें जो हैं रिफ्लेक्स टियर पैदा करती हैं, जिससे कि जलन पैदा करने वाला पदार्थ जो है वो धुल जाता है। और प्याज काटते समय आंखों से आंसू आना कोई दुख की बात नहीं होती है, बल्कि शरीर का ये एक तरीका है आंखों को सुरक्षित करने का।
0: तो रसोई स्वाद के साथ छोटी सी प्रयोगशाला भी है, जहाँ हर दिन विज्ञान और जीवन का मेल होता है। कुछ आसान असरदार हैक्स हैं प्याज काटते समय आंसू ना आए इसके लिए।
1: हाँ, तो शेयर
0: तो
1: कर लीजिए हमारे श्रोताओं के
0: बिल्कुल,
1: साथ।
0: और प्याज को छीलकर 20 से 2 हिस्से कर लें और 5 मिनट के लिए ठंडे पानी में डाल दें, तो पानी सल्फर गैस सोक कर लेता है, जिससे आंखों में जलन नहीं होती है।
1: हाँ, इसी और एक और हैक हम यहाँ पे शेयर करेंगे। चिल फैक्टर है कि प्याज काटने के 15 मिनट पहले आप उसे अगर फ्रीजर में रख देते हैं तो इसकी सल्फर गैस जो है वो सुस्त पड़ जाती है, और इसकी जड़ को अगर आखिर में काटे जिससे सल्फर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तो अंत तक जुड़ा रहने दे तो भी आंखों में आंसू कम आते हैं।
0: तो वही सीमा, हमारे जो श्रोता हैं वो समझ गए होंगे कि मतलब जान गए होंगे कि प्याज काटने पर निकलने वाले आंसुओं का साइंटिफिक रिएक्शन जो है वो हमने आज अपने श्रोताओं को बता दिया है ना। और अब वो सुनते हैं एक बढ़िया सा सॉन्ग।

0: और सीमा, अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट सेगमेंट पर, मतलब की रेसिपी।
1: जी हाँ, जिसका हमारे श्रोताओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज क्या लेके आए हैं, शेयर कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ में।
0: सीमा, आज हम लेकर आए हैं मूंग दाल का चीला, और इसके लिए हमें सामग्री चाहिए: एक कप धुली मूंग दाल, दो हरी मिर्च, एक टुकड़ा अदरक, एक बारीक प्याज कटा हुआ, हरा धनिया, नमक स्वादानुसार, आधा चम्मच जीरा, तेल या घी सेंकने के लिए।
1: और अब बनाने की विधि हम आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर लेते हैं। मूंग दाल को 3-4 घंटे के लिए भिगो दीजिए। दाल से पानी निकालकर हरी मिर्च अदरक के साथ पीस लें। बैटर ज़्यादा जो है वो पतला ना हो पाए, इसमें नमक, जीरा, हींग, प्याज और हरा धनिया मिला देना है। तवा गरम करें और हल्का सा उस पर आपको ऑयल ग्रीस करना है, और बैटर फैलाकर इसको जो है पतला सा चीला बना लेना है। दोनों तरफ सुनहरा होने तक, क्रिस्पी होने तक सेकिए इसको। इसको फिर आप सर्व कर सकते हैं हरी धनिया की चटनी के साथ। और इसके फायदे क्या हैं ये भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। बेहद ही फायदे से भरा है आज का ये चीला। प्रोटीन से भरपूर होता है, ये शरीर को ऊर्जा देता है, पेट के लिए हल्का होता है और आसानी से पचने वाला नाश्ता ये बन जाता है। तो लंबे समय तक पेट भरा महसूस होता है, इसलिए बार बार भूख कम लगती है। तो बस ट्राई कीजिए आज ये मूंग दाल का चीला।
0: बिल्कुल सीमा, मैं भी ट्राई कर लूंगी और हमारे श्रोता भी ट्राई करेंगे। फिलहाल चलते चलते सुनवा देते हैं अपने श्रोताओं को एक और खूबसूरत सा ट्रैक।
2: अच्छा, तो हम चलते हैं।

0: और इसी के साथ ही प्रोग्राम में हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, जहां प्रोग्राम का वक्त हो चुका है पूरा। तो अभी के लिए फिलहाल मैं चलूंगी और रितु जी रहेंगे आपके साथ में दिन में 3 बजे म्यूजिकल प्रोग्राम को लेकर।
1: तो बस हम अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। नमस्कार
0: नमस्कार।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान की ये दूसरी मुलाकात होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रपति आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। गाजियाबाद में आज आयोजित एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में गृहमंत्री ने कहा कि देश में कहीं भी कोई आपदा आए या आने के संकेत मिले तब एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना उसके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ के कर्मी जब भी राहत और बचाव कार्यों के लिए दुनिया में कहीं भी जाते हैं उन्हें हमेशा लोगों का प्यार और विश्वास मिलता है। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। संशोधित दरें आज सुबह से लागू हो गई हैं। जानकारों का कहना है कि बढ़ती लागत को आंशिक रूप से संतुलित करने के लिए कंपनी ने दूध कीमतों में ये बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी है। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल रात एक रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: बरकत है ये औरत के कदमों की कि दरो दीवार को लोग घर कहते हैं। ये काजल जिन आँखों में आकर समर जाता है, ये माथा जो बिंदिया की किस्मत निखार जाता है। रसोइयों से उड़ती ममता की खुशबुएं त्योहारों और उत्सवों पर सजती महफिलें, संघर्ष की मिट्टी में खिलते मुस्कुराहट के फूल, दुनिया को खूबसूरत बनाने वाली खुद को न जाना भूल। हाँ, तुम हो शत्रुवा।

दोपहर के सुनहरी बेला में आपका दिल से स्वागत है। आपके साथ आज मैं हूँ आपकी दोस्त राधा, जो लेकर हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम शत्रुपा। ये शो है आपका, यानी हर उस महिला की आवाज जो घर संभालती है, रिश्ते निभाती है, सपनों को सजाती है, हर दिन जिंदगी को नए रंग से भरती है। तो अगले एक घंटे तक हम और आप साथ रहेंगे कार्यक्रम शत्रुपा में। तो चलिए अभी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जो आ रहा है आपके रेडियो सेट पे।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: दोस्तों आज है दिन गुरुवार और शत्रुपा में आज हम आपसे बातें करेंगे बागवानी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि पौधों की मिट्टी को भी सांस लेने की जरूरत होती है? अगर मिट्टी बहुत सख्त हो जाए तो जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं। इसलिए महीने में एक बार गमले की मिट्टी को हल्का हल्का ढीला जरूर करना चाहिए। आपके पौधे ज्यादा खुश और हरे भरे दिखेंगे। जैसे पौधों को चाहिए खुली हवा, वैसे ही दिल को चाहिए प्यारे प्यारे नगमे, है ना? तो भाई देर ना करते हुए आपको मैं गाना सुनाती हूँ जिससे आपका मूड जो है ना बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो चलिए सुनते हैं इस सॉन्ग को।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब अली।
3: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, और कार्यक्रम चल रहा है शत्रुपा, जहां आज आपके साथ हूं मैं राधा। और जो घड़ी है ना, बता रहा है कि 12:18 और ये 30:31 हो चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनको चाय जो होती है ना, हर वक्त पीने का मन होता है, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे सुबह हो, मतलब चाय लवर होते हैं। तो अगर आप चाय पीते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि चाय पत्ती है ना, उसको मत फेंकिए। जी हाँ, उसे धोकर सुखा लें और मिट्टी जो है, पौधे की मिट्टी है, उसमें मिला दें। आप सोचेंगे ऐसा क्यों भाई, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे मिट्टी में ना पोषण बढ़ जाता है और पौधे की ग्रोथ बेहतर होती है। यानी कि आपकी सुबह की चाय अब आपके पौधों को भी मुस्कान देगी, है ना अच्छी बात। भाई पौधों को मुस्कान मिल रही है तो हम चाहते हैं ना कि आपके चेहरे पे भी मुस्कान आए, और मुस्कान के लिए क्या करना होगा भाई, सॉन्ग सुनवाते हैं आपको प्यारा सा।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कीप लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, घड़ी में 12:25 हो चुके हैं और कार्यक्रम चल रहा है शत्रुपा। अच्छा ये बताइए कि आप सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी जग जाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लेट उठते हैं। भाई उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लेट मत उठिए। पता है जब आप सुबह उठते हो ना तो पूरा दिन आपके पास होता है, सोचिए आप कितना कुछ कर सकते हैं, है ना। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लेट से उठते हैं तो सारी जो चीजें हैं दिनचर्या उनका अस्त व्यस्त हो जाता है, जिसकी वजह से उनके पास वक्त नहीं होता। पौधे तो लगाते हैं लेकिन उनके पास वक्त नहीं होता है कि दिन में पौधों को पानी दे, इसलिए वो रात को या फिर हो सकता है वो जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो रात में पौधों को पानी देते हैं। तो क्या रात में पौधों को पानी देना सही है? जी नहीं, रात में पौधों को पानी नहीं देना चाहिए, ऐसा करने से फंगस लग जाते हैं। और पौधों को ना सुबह सुबह ही पानी देना सबसे अच्छा माना जाता है, इससे पौधे दिन भर फ्रेश रहते हैं। जी हाँ, तो जब बात हो रही है फ्रेश रहने की

0: आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं बागवानी से संबंधित बात। जब बागवानी की हो रही है तो एक्सपर्ट से भी बात करना बहुत जरूरी है कि वो हमें बताएं कि बहुत सारी चीजें हमें नहीं मालूम होती है, जिसे सुनने के बाद से हमारे श्रोताओं को काफी कुछ जानने को मिल जाएगा, सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम अपनी जो हमारी एक्सपर्ट है उनसे हम बातचीत करते हैं। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम शत्रुपा में। मैम सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आजकल हम देख रहे हैं कि जोरों शोरों पे ना लोग किचन गार्डनिंग अपना रहे हैं, लेकिन बहुतों को नहीं पता है कि किचन गार्डनिंग क्या होती है। तो हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि मैम कि किचन गार्डनिंग होती क्या है, और अगर कम जगह हो तो कैसे उसे शुरू कर सकते हैं।
1: देखिए, किचन गार्डनिंग एक बहुत अच्छी चीज है। मतलब मुझे लगता है घर में रह रही हर गृहिणी जिसके पास थोड़ा थोड़ा वक्त हो, थोड़ा वक्त निकालती है और थोड़ी जगह बहुत ज्यादा है इस काम के लिए। किचन गार्डनिंग आप कहीं भी छोटा सा आपका आंगन हो, छत नहीं है, बालकोनी हो, या जहाँ हवा आ रही हो उस जगह पे आप शुरू कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको उसके लिए, छोटी सी जगह चाहिए और आप बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उगा सकते हैं। गमले हैं, ग्रो बैग्स हैं, घर में पड़े वेस्ट मटेरियल हैं जिसके इस्तेमाल से आप इसको शुरू कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, आपको ताजी शुद्ध घर की सब्जियां मिलेंगी, सब्जियां फल जो भी आप लगाएं कुछ भी लगा सकते हैं आप इसके।
0: जी मैम, तो कभी कभी क्या होता है ना कि लोग ये नहीं समझ पाते कि कितनी खाद डालनी है, कितनी मिट्टी डालनी है, संतुलन कितना होना चाहिए।
1: देखिए, संतुलन की बात हम करें, आप छोटी चीज में लगा रहे हैं, अगर आप छोटे गमले ले रहे हैं या छोटा आपका जो भी ग्रो बैग है उसके अनुसार आपको जो है मिट्टी या जो भी चीजें आप उसमें मिला रहे हैं, आजकल बहुत सारी कोकोपीट चली हुई है उन्हें आप यूज कर रहे होते हैं तो उसको उसी तरह से इस्तेमाल करें। खाद मिट्टी या जिस चीज का भी आप प्रयोग कर रहे हैं वो इस तरह से लिया जाए कि भाई ना मिट्टी कम हो और ना ही उसमें आप जो भी पौधे लगा रहे हैं उसको जरूरत के अनुसार मिलना चाहिए। आप ये आराम से देख सकते हैं, छोटा सा पौधा है, आप मान लीजिए मेथी लगा रहे हैं, आज का गर्मी का मौसम है, मेथी लगा रहे हैं तो आपको उसी के अनुसार लगना पड़ेगा। गमला आपका छोटा है आप उसमें उतना ही इस्तेमाल करिए, मिक्सचर आधा आधा रख के रखिए कि ड्रेनेज हो जाए, क्योंकि पानी इकट्ठा होगा तो पौधा आपका बिल्कुल भी उसमें जीवित नहीं रह पाएगा। तो ड्रेन होना बहुत जरूरी है। मिट्टी कितनी लेनी, कोकोपीट कितना लेना, इसका मिश्रण आप अपने अनुसार लगा सकते हैं कि आधा हमने ये ले लिया तो आधा हम उसका इस्तेमाल कर ले।
0: जी मैम, बात जब प्राकृतिक
1: जितनी जगह हो
0: गमले के अनुसार। जी मैम, बात जब आप खाद की कर ही रही हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक खाद जो हमें घर में जो चीजें मौजूद हैं उनसे कैसे बना सकते हैं।
1: प्राकृतिक खाद बहुत इजी है, आपके पास कुछ नहीं है आप नीम ले सकते हो, नीम हर जगह अवेलेबल है, नीम का तेल आप ले सकते हो, कीटनाशक से बचाएगा सबसे पहली चीज। और गर्मी अगर हम बात करें तो भाई केले के छिलके, चाय पत्ती, केले के छिलके का फर्टाइल बहुत अच्छा बनता है, आप उसको देखें थोड़े दिन के लिए पानी में रख दें और हिलाते रहे और जब वो फर्टाइल तैयार हो जाए 3 से 4 एक हफ्ते के अंदर तो आप उसका छिड़काव कर सकते हैं महीने में 2 बार या जिस तरीके से भी आपके लग रहा है आपको जरूरत है आपके पौधे को इस्तेमाल की आप उसमें छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपके पौधे जो होंगे वो हेल्दी रहेंगे और अच्छी इनको ग्रो भी मिलेगा, बढ़ने के लिए भी वो आसानी में रहेगा।
0: और मैम अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग पौधे लगा भी देते हैं और वो ग्रोथ भी करता है लेकिन फिर अचानक से वो सूख जाता है, कीड़े लग जाते हैं, तो इससे बचने के लिए कोई घरेलू उपाय।
1: घरेलू उपाय यही है कि आप नीम का पानी, मैंने बताया ना नीम हर चीज का तोड़ है और सबसे बढ़िया आसान तरीके से आपको हर जगह मिल जाएगी, नीम का पानी बना लें, नीम का तेल का छिड़काव में हफ्ते में 2 बार शुरुआत में आप देख लीजिए कि ज्यादा खराब है, पत्तियां सूख गई है, कीड़े लगी हुई है तो उनको छांट के अलग कर दें, खरपतवार जो गमले में एक्स्ट्रा लग जाते हैं उनको हटा दें। सबसे पहले ये चीज बहुत ध्यान देनी है आपको, बहुत जरूरी है कि जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा जो है सूखी पत्ती ना रह जाए, कीड़ा लगा पत्ती ना रह जाए, उसको तुरंत आप हटा दें, वहां से निकाल के उसको दूर कर दें और उस पर नीम का छिड़काव करें। और साथ ही साथ जो भी आपके पास बाजार में बहुत अच्छे आपको वो मिल जाते हैं, क्या बोलते हैं, कीटनाशक वो भी ले सकते हैं। और घर में बनाना है तो घर में आपके लिए नीम ही बहुत है, आपके लिए नीम की जो नीम का तेल है आप उसको पानी में मिला के उसके बाद छिड़काव करें, वो काफी है आपके घरेलू पौधे के लिए। बहुत बड़ी आप जैविक खेती नहीं कर सकते लेकिन घर में जो आप कर रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल के लिए इतना काफी है।
0: मैम इतनी अच्छी जानकारी दी आपने, मुझे उम्मीद है जो हमारी सखियां सुन रही हैं उन्हें काफी लाभ मिलेगा हमारे कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया आपका, और सभी से मैं ये निवेदन करूंगी कि घर में किचन गार्डनिंग जरूर करें।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

जी 12:40 तैतालीस मिनट हो चुके हैं और कार्यक्रम चल रहा है शत्रुपा, जहां आज आपके साथ है आपकी दोस्त राधा। और जैसा कि हमारा ये जो कार्यक्रम है, हम महिलाओं पे, लड़कियों का ये कार्यक्रम है, तो जो हम लड़कियां होती ना, हम महिलाएं जो होती ना, हम ऑलरेडी खूबसूरत होते हैं, है ना। हमें और कुछ करने की जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन अगर कोई घरेलू उपाय अगर हम लगा लें ताकि खूबसूरती में 4 चांद बढ़ जाए, तो क्या गलत होगा? नहीं ना। तो जो एलोवेरा है, जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, भाई आप यूज करते ही होंगे, अगर नहीं करते होंगे तो यूज करिए। एलोवेरा जो होता है ना, वो स्किन के लिए अच्छा भी होता है, और गर्मी में आप लगाते हैं तो आपका जो फेस है हाइड्रेट रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है एलोवेरा लगाने के बाद से। लेकिन क्या आपको पता है, एलोवेरा सिर्फ चेहरे के लिए नहीं, पौधों के लिए भी फायदेमंद होता है। अगर आप एलोवेरा जो जेल होता है उसको पानी में मिलाकर पौधों में डालते हैं ना, तो उससे आपके पौधे हेल्दी रहते हैं। मजा आया ना सुनके, मतलब हम भी हेल्दी रहेंगे, हमारी स्किन भी और हमारे पौधे भी। भाई पौधे हेल्दी रहेंगे तो हम भी हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहने के लिए क्या जरूरी है, हेल्दी रहने के लिए जरूरी है कि अभी सुनवाते हैं आपको प्यारा सा गीत, है ना।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब यारी।
3: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

100.7 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शत्रुपा, जहां आज आपके साथ हूं मैं आपकी दोस्त राधा। दोस्तों, आपको पता है परिवार भी एक पौधे की तरह होता है जिसे समय पर प्यार चाहिए, देखभाल चाहिए। जैसे पौधों को रोज पानी देना होता है, वैसे ही रिश्तों को

भी रोज पानी प्यार देना होता है। जी हाँ, समय देना पड़ता है। अगर आपने रिश्तों में प्यार नहीं दिया, समय नहीं दिया, रिश्ते की देखभाल नहीं की, तो वो सूख जाएगा। जैसे पौधे सूख जाते हैं, वैसे रिश्ते भी आपके खराब हो जाते हैं।

भी रोज पानी प्यार देना होता है। जी हाँ, समय देना पड़ता है। अगर आपने रिश्तों में प्यार नहीं दिया, समय नहीं दिया, रिश्ते की देखभाल नहीं की, तो वो सूख जाएगा। जैसे पौधे सूख जाते हैं, वैसे रिश्ते भी आपके खराब हो जाते हैं। परिवार का महत्व जीवन में बहुत बड़ा है। और कल है 15 मई, और कल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाएगा। परिवार, माता पिता कितने जरूरी हैं। घर से घर में हम जब आते हैं तो सबसे पहले कौन सी आवाज लगाते हैं? मम्मी पापा, है ना? माँ बाप, जीवन का अनमोल तोहफा।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: आज के शत्रुपा कार्यक्रम में इतना ही। आज के कार्यक्रम से मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ न कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। और मिलते हैं अगले कार्यक्रम जो कि है होठों पे तेरी बात में।

नमस्कार, दोपहर के 1 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कल एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आजमगढ़ के जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी और पटल सहायक सत्येंद्र बहादुर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन भुगतान में 51,46,000 रूपये की गंभीर वित्तीय अनियमितता का आरोप है। समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम वरुण ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। आरोपी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अमरोहा, इटावा व अमेठी में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के समीप औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने के लिए अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण के लिए सरकार ने 1,46,25,96,000 रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत औद्योगिक कॉरिडोर क्षेत्रों में सड़क, विद्युत, पेयजल, सीवरेज जल निकासी और अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास कराया जाएगा। आइए, समाज कल्याण विभाग ने प्रदेश में संचालित 8 आवासीय निशुल्क आईएएस व पीसीएस परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश के लिए सम्मिलित प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। समाज कल्याण निदेशक संजीव सिंह ने बताया

ऑनलाइन आवेदन 18 मई से 18 जून तक विभागीय वेबसाइट पर किए जा सकेंगे। प्रवेश परीक्षा 5 जुलाई को होगी। परीक्षा परिणाम 28 जुलाई तक आने की संभावना है। नया शैक्षणिक सत्र 1 अगस्त 2026 से शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कोचिंग के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपए या उससे कम हो। ऊर्जा उत्पादन और सोलर पैनल सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए चित्रकूट में 85 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जिससे जिले को ऊर्जा के संकट से नहीं गुजरना पड़ेगा। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग की पहल से अवाड़ा एनर्जी ने चित्रकूट में इस प्रोजेक्ट को लगाने की तैयारी कर ली है। ये परियोजना करीब 200 एकड़ सरकारी लीज भूमि पर स्थापित होगी। निर्माण कार्य इसी वर्ष शुरू होने की संभावना है और वर्ष 2027 तक इसके चालू होने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि का स्वागत किया है। प्रदेश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि ये निर्णय किसानों की आर्थिक समृद्धि की दिशा में एक बड़ा कदम है। कृषि मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्थन मूल्य में इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी से प्रदेश के किसानों की आय में भारी वृद्धि होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे किया जाएगा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे। और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।

ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है होठों पे तेरी बात, और बहुत सी बातें होनी है आपसे, आपके अपने खास कार्यक्रम होठों पे तेरी बात में, जहां आज मैं हूं आपके साथ में आपकी दोस्त राधा। बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें। तो इलाकाई खबरों के बाद में हम करते हैं ढेर सारी बातें और पूछते हैं आज का सवाल, और मुझे है आपके मेल का इंतजार। थोड़ी देर में सुनिए इलाकाई खबरें।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मुनक्कदा तब्दीली हिंद के नवे साल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज हमारे पास 7 मेट्रो शहर है। हिंदुस्तान की पहली रैपिड ट्रेन दिल्ली और मेरठ के दरमियान चली। अमनो अमान के हवाले से उत्तर प्रदेश के मुकर्रर करदा अहदाफ सबके सामने हैं। वजीर आला ने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में जहां भी जाएं आपको तरक्की, सलामती, रोजगार और जरई तरक्की का एक नया मॉडल नजर आएगा। तमाम 75 अजला में बैक वक्त तरक्की हो रही है।
1: भारत का पहला MRO वहां हम बना रहे हैं। लॉजिस्टिक का भारत का सबसे बड़ा हब वहां बनने जा रहा है। क्या नहीं है आज वहां पे कर सकती। 7 सिटी हमारी ऐसी है जहां आज के दिन पे मेट्रो का चलन हो। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच, इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ का है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन, चाहे वह नेपाल के साथ हो, बिहार के साथ हो, झारखंड के साथ हो, छत्तीसगढ़ के साथ हो, मध्य प्रदेश के साथ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो या दिल्ली, सबकी कनेक्टिविटी ये अब।
0: गाजियाबाद में मुनक्कदा प्रोग्राम में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के प्रेसिडेंट कलर अवार्ड तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज NDRF की खिदमत के लिए जो अलामत दी गई है वो NDRF के साथ SDRF पंचायत से लेकर रियासत तक पूरी रियासती मशीनरी, NCC, NSS और हजारों की तादाद में खिदमत में लगे हुए लोगों को दी गई है। उन्होंने कहा कि NDRF के जवानों को देखकर लोग खुद को महफूज महसूस करते हैं। मरकजी काबिना ने 2026-27 के लिए मार्केटिंग सीजन के लिए खरीफ की 14 फसलों के लिए कम से कम सहारा कीमत में इजाफे को मंजूरी दे दी है। इत्तलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में काबिना की मीटिंग के बाद कहा कि हुकूमत ने किसानों के लिए मुनाफा बख्श कीमतों को यकीनी बनाने के लिए खरीफ की फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कम अज कम सहारा कीमत में इजाफा करने के मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस से न सिर्फ किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और जरई तनु की हौसला अफजाई होगी बल्कि खुशहाल किसान, मजबूत हिंदुस्तान के अज़्म को भी तकवीयत मिलेगी। रियासत भर के किसानों ने खरीफ के फसलों के लिए MSP में इजाफे पर खुशी का इजहार किया है। मगरबी एशियाई तनाजा से पैदा होने वाले तनाई के आलमी बुहरान के तनाजुर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मरकजी और रियासती हुकूमत ने ईंधन की बचत के इकदाम को तेज कर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईंधन के अलामती कीमतों में इजाफे की वजह से हालिया घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले के साइज में नुमाया कमी की। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी अपने काफिले के साइज निस्फ से कम कर दिया है। इस तनाजुर में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के लोगों से वजीर आजम की कॉल में शामिल होने की अपील की। वजीर आला ने उन पर जोर कि वो ईंधन की खपत को कम करें और सोने की गैर जरूरी खरीदारी से गुरेज करें। उन्होंने 12 मई की शाम को एक आला सतही मीटिंग में हिदायत दी कि वजीर आला और वुजरा वगैरह के बेड़े में फौरी तौर पर 50% की कमी की जाए। दरअसल असेंबली स्पीकर सतीश महाना ने असेंबली की पार्लिमानी कमेटियों के पहले से तयशुदा तमाम मुतालती दौरे के प्रोग्रामों को अगले अहकाम तक मुलतवी कर दिया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपनी तौसी शुदा काबिना की पहली मीटिंग की। मीटिंग के दौरान वजीर आला ने किफायत शारी तवानाई के तहफुज और जिम्मेदाराना वर्क कल्चर को फरोग देने के लिए अहम हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी सूरत हाल के पेश नजर ईंधन की बचत न सिर्फ एक मुआशी जरूरत है बल्कि कौमी जिम्मेदारी भी है। वजीर आला ने हिदायत दी कि सेक्रेटरियट और डायरेक्टरेट में एयर कंडीशनर के दर्जे हरारत 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के दरमियान बरकरार रखा जाए। कुदरती रोशनी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और बिजली का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक किया जाए। डेयरी कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर के इजाफे का ऐलान किया। तरमीम शुदा कीमतें आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में गुजशत 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने के हादसात में तकरीबन 89 अफराद हलाक हो गए। बाकी तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कल 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के नतायज का ऐलान किया। तलबा सरकारी वेबसाइट डीजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना रोल नंबर दर्ज करके अपने नतायज दे सकते हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से लाकर खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow.
4: जी हाँ, 1:15 हो चुके हैं और आपका पसंदीदा कार्यक्रम शुरू हो चुका है, होठों पे तेरी बात, जहां आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त राधा। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि हम जितना जुड़ते जा रहे हैं उतना ही हम खुद से दूर होते जा रहे हैं। और आज होठों पे तेरी बात में वो बात मैं आपके होठों पे लाने वाली हूं जो मुझे लगता है कि ऐसा सवाल है जिसे सुनकर आपको अच्छा भी लगेगा और इसका जवाब देने में आपको मजा भी आएगा। तो आज मैं ये जानना चाहती हूं कि अगर आपको पूरा दिन, यानी एक पूरा दिन यानी 24 घंटे तक बिना मोबाइल फोन के रहना पड़े तो आप कैसा महसूस करेंगे? खालीपन, सुकून, बेचैनी या खुद से मुलाकात? है ना भाई, मोबाइल फोन कितना जरूरी है हम सब जानते हैं, लेकिन वाकई बहुत जरूरी है। तो ये सवाल मेरा आज का है और अगर आपको जवाब देना है तो आप कहाँ जवाब देंगे भाई? और बताइए कि अगर आपको पूरा एक दिन 24 घंटे बिना फोन के रहना पड़े तो आपको कैसा लगेगा?

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये भी लखनऊ ही है जनाब।
5: समझे जनाब यारी।
4: जहां हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो।

0: दक्कन लखनऊ की।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
0: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: घड़ी में 1:22 हो रहा है और कार्यक्रम है होठों पे तेरी बात, जहां आज आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त राधा। और आज का जो सवाल है, जो होठों पे आपकी बात आने के लिए जो सवाल है, वो ये है कि अगर आपको पूरा एक दिन यानी कि 24 घंटे बिना मोबाइल फोन के रहना हुआ तो आपकी लाइफ पे इसका क्या असर होगा। तो हमारे पास मेल भी शुरू हो गए आने, लेकिन अभी जो अगला मेल, जो मैं पहला सबसे पहला कार्यक्रम का जो मेल पढ़ रही हूँ, वो सुधाकर जाधव जी का है, जो ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद जिला जालना मराठावाड़ा महाराष्ट्र से इन्होंने लिखा है। वाओ, अच्छा, इनके साथ और भी लोग हैं, श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख और कुमारी सानवी देशमुख और समस्त राजीव जाधव देशमुख परिवार। अच्छा, इन्होंने ना बहुत प्यारा सा एक प्लांट यानी कि एक पेड़ भी बना के भेजा है, गुलाब का फूल भी भेजा है, और इन्होंने लिखा है कि प्रेम पूर्वक नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और आगे लिखते हैं कि मैडम, आज होठों पे तेरी बात इस प्रोग्राम में मैं थोड़ा हटकर अभिप्राय दे रहा हूँ कि आज गुरुवार को रात 12:35 को मेरे को ना नाती हुई है यानी लड़की हुई है, तो मेरे को नात होने की वजह से हमने हॉस्पिटल में जोर से उसका वेलकम किया, स्वागत किया। भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने स्वागत किया, वेलकम किया। तो और भी मेल हमारे पास आ रहे हैं, जैसा कि अभी हमारे पास आया है रामेश्वर जी का, होठों पे तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता बहन राधा जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। बहन राधा जी, हम आपका प्रोग्राम बराबर सुन रहे हैं, हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम होठों पे तेरी बात हमें बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद कि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा, हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी। इन्होंने लिखा है ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से। अच्छा, तो इन्होंने और तो कुछ नहीं लिखा, तारीफ की है, कोई बात नहीं, तारीफ उसके लिए शुक्रिया। हम जो सवाल हमने पूछा है देखते हैं, ये आया है हमारे पास रामराज जी का मेल। श्री गणेशाय नमः, होठों पे तेरी बात जिला रायबरेली गांव पहाड़ी पुर से रामराज राजू भानु पप्पू पासी मनीष नीरज मधु भुइया मिर्जा इमरान बेग, पहली बार आपको कार्यक्रम में सुन रहा हूँ, ईमेल कर रहा हूँ। हमारे यहाँ बारिश ओले आंधी तूफान कल बहुत तेजी से आए थे, हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेल किया। लेकिन जो मेरा आज का टॉपिक है कि अगर आपको एक दिन बिना फोन के रहना पड़ा तो आप कैसे महसूस करेंगे, अगर उसके बारे में भी आप लिखकर भेजेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और भाई, कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जो आ रहा है आपकी रेडियो सेट पे।

0: को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

0: रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। जी हाँ, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, और कार्यक्रम है होठों पे तेरी बात, जहां आज का विषय है कि अगर आपको पूरे एक दिन यानी 24 घंटे बिना फोन के रहना पड़ा तो फिर आप कैसा महसूस करेंगे। ये बात हमने बाहर जाके भी लोगों से पूछा, तो सुनिए कि वो क्या सोचते हैं।
1: मेरा नाम सुहेल शर्मा है और मैं एक टीचर हूँ। आपका कुछ

0: जैसे कि क्या आप फोन के बगैर एक दिन रह सकते हैं, तो हम रह सकते हैं फोन के बगैर, क्योंकि आजकल के लोग जो हैं वो फोन पे ही अपनी लाइफ को डिपेंड कर दे रहे हैं। उनकी लाइफ जो है फोन से स्टार्ट होती है और फोन से ही खत्म भी होती है। फोन के बगैर भी पहले के लोग रहते थे, जैसे कि एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे से हंसी ठिठोली करना, बड़ों के साथ बैठना, ये सब चीजें आज के समय में खत्म हो जा रहा। हम अपने बच्चों को, रोते हैं बच्चे तो हम फोन पकड़ा देते हैं उनको, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को स्वयं समय देना चाहिए उनको, ताकि वो फोन की दुनिया से बाहर निकले और एक बाहर का जो कलरफुल दुनिया है उसका एंजॉय करे। है मैं सीए की तैयारी कर रही हूँ, और जैसे कि राधा मैम ने पूछा क्या क्या एक दिन बिना फ़ोन के रह सकते, तो बिना फ़ोन के नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस करना पड़ता तो वो फ़ोन से ही करना पड़ता है, और जैसे या ऑनलाइन शॉपिंग करो या ऑनलाइन कुछ भी मंगवाओ तो वो तो फ़ोन से मंगवाना पड़ता, तो वो तो फ़ोन से मंगवाना पड़ता है, और जैसे पेमेंट भी करना रहता है तो वो फ़ोन से ही हो जाता है, तो बिना फ़ोन के तो नहीं कोई रह सकता। राधा मैम, मैम बिना फोन के तो हम तो नहीं रह पाएंगे, जीवन तो बहुत मुश्किल रहेगा बिना फोन का।
1: तो जैसा कि आपने देखा कि
0: मैं सीए की तैयारी कर रही हूँ,
1: तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने क्या कहा कि कुछ लोग तो रह सकते हैं फोन के और कुछ बिना फोन के नहीं रह सकते हैं। तो मिली जुली बातें हैं, लेकिन अभी भी मुझे आपके मेल का इंतजार है कि आप क्या कहते हैं। तो एक प्यारा सा जो मेल है मेरे सामने आया है वो लिखा है बसंत कुमार सिन्हा जी ने। वो लिखते हैं कि आदरणीय प्रसारक मैडम राधा जी आपको नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार हमारा। मैम आगे लिखते हैं कि मुझे आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और ये रोज रेडियो सुनते हैं और इनको सारे जो हमारे आरजेस है वो बहुत ज्यादा उनको अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं, हमारे आरजे सारे आपको अच्छे लगते हैं। और इन्होंने लिखा है कि जो आपका आज का सवाल है कि बिना मोबाइल के, तो राधा जी एक दिन क्या, मैं तो 40 दिन बिना मोबाइल के मैंने गुजारा किया है। अच्छा, और रेडियो प्रोग्राम सुनते रहे और कुछ कारण से दूर भी हो गए, अब मोबाइल फिर मेरे पास आ गया है, फिर रेडियो की दुनिया से मैं जुड़ चुका हूं और इनको अच्छा लगता है हमारा कार्यक्रम। और ये इन्होंने लिखा है दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता, नन्हे मुन्ने अनिरुद्ध बाबू, और इन्होंने थैंक्स भी लिख दिया है कि थैंक यू नाम शामिल करने के लिए, दिल से शुक्रिया दीदी जी। अच्छा, आपको पता था कि मेल आपका शामिल हो जाएगा, तो भाई और भी हमें मेल भेजिए। और जैसा कि हम देख रहे हैं कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ बिना फोन के वो रह सकते हैं, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगी लाइफ। तो फिर आप क्या सोचते हैं, बिल्कुल हमें बताइए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। तभी अभी सुनिए ये प्यारा सा सॉन्ग जो आ रहा है आपका रेडियो सेट पे।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कीप लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: जी हाँ, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। और कार्यक्रम चल रहा है होटो पे तेरी बात। 1:40 हो चुके हैं और आपके मेल भी हमारे पास आने शुरू हो चुके हैं। जो ये मेल हमारे पास आया है वो है मीनाक्षी इंडियन जी का है, और इन्होंने लिखा है कि मैम, ये इन्होंने त्रिवेणी नगर लखनऊ से लिखा है। मैम लिखती हैं कि आपको हमारा प्यार भर नमस्कार, आपको भी नमस्कार। मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा, बस आपको उस दिन संदेश नहीं भेज पाएंगे क्योंकि मैं आपको रेडियो पर सुन लेती हूँ और ये हमें मैसेज करती हैं, मेल करती हैं, तो बस इतने ही से के लिए ही। बस सच बताइएगा मीनाक्षी जी, क्या सिर्फ इतने के लिए ही आपको फोन की जरूरत होती है? तो भाई जाहिर सी बात है कि फोन तो जरूरी है, लेकिन कभी कभी हमें थोड़ा समय अपनों के लिए भी निकालना चाहिए ताकि हम अपनों से बातचीत कर सके, है ना। ये मेल है गुलफ्सा सिद्दीकी जी का। गुड आफ्टरनून राधा मैम, मैं गुलफ्सा सिद्दीकी संडीला से। अगर मुझे बिना मोबाइल के एक दिन गुजारना पड़ा तो मैं बहुत आसानी से गुजार लूंगी क्योंकि मैं मोबाइल कम ही चलाती हूँ। अगर ऐसा हो भी जाए तो घर के बहुत सारे काम होते हैं जो बहुत दिनों से पड़े होते हैं, वो जरूर हो जाएंगे। बात तो आपकी सही है कि बहुत सारे काम घर के होते हैं, लेकिन अच्छा ऐसा भी होता है ना कि हम पहले का दौर देखिए ना, पहले के दौर में जो टेलीफोन था वो बहुत कम लोग के घर में होता था, और जिनके घर नहीं होता वो पीसीओ पे जाते थे।

पीसीओ है ना, और कॉइन्स डालते थे, बात करते थे। लेकिन अभी ये मोबाइल देखिए कितनी सुविधा, डिजिटल जमाना है कि हमारे पॉकेट में है, और ये मोबाइल सिर्फ बात ही नहीं करते, मतलब एक समझिए कि वो जादू की छड़ी जैसा है ना, कि अगर हमें फोन, अगर फोन से हमें अगर किसी को कॉल तो करना, कॉल कर ही सकते हैं, साथ में हम उसे देख भी सकते हैं, हम कुछ भी खरीदना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, कुछ भी खाने का मन मंगवाना, मतलब हर चीज जो है हम फोन से मंगवा सकते हैं ना। लेकिन जैसा कि अभी हमने अपने श्रोताओं से बातचीत की, तो नैन्सी जी ने और शैल जी ने भी बोला कि एक ने तो बोला कि हाँ हम रह सकते हो, एक ने बोला कि नहीं, आजकल बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना फोन के, इतने ज्यादा वो एडिक्ट हो चुके हैं कि वो खाना खाते हैं तो उनको फोन चाहिए, अगर वो रोने लगते हैं तो पेरेंट्स भाई चुप हो जाओ और फोन ले लो, तो ये अच्छी बात है क्या? तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वही है कि अगर एक दिन के लिए यानी 24 घंटे के लिए आपको बिना फोन के रहना पड़े तो आपकी लाइफ कैसी रहेगी। और जल्दी से हमें मेल भेजिए, हमारे पास मेल आ चुके हैं और बहुत सारे मेल आने चाहिए। भाई ये सवाल बहुत ही अच्छा है, भाई आपकी जिंदगी पे क्या असर होगा मुझे जानना है, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है होठों पे तेरी बात। तो हमें मेल करने के लिए हमारी मेल आईडी नोट कर लीजिए, fmakashwani@lucknow@gmail.com। तो देर ना करते हुए सुनिए और एंजॉय करिए इस प्यारे से गीत को।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब अली।
3: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की। स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: घड़ी में 1:50 हो चुके हैं और कार्यक्रम चल रहा है होटो पे तेरी बात। और जहां आज मैं आपके साथ हूं, आपकी दोस्त राधा, और आपके बहुत प्यारे प्यारे मेल्स भी हमारे पास आ गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। जो अगला मेल हमारे पास आया है वो आया है जावेद अख्तर जी का, और वो लिखते हैं, गुड आफ्टरनून राधा मैम, जितना खूबसूरत नाम उतनी ही मीठी आवाज, नटखट चंचल भरा अंदाज, थैंक यू सो मच जावेद जी आपकी तारीफ करने के लिए। ये कहते हैं कि मेरा ये कहना है कि अगर 24 घंटे बिना मोबाइल के रहना पड़े तो हम बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आजकल टेक्निकल

में हमें मोबाइल की बहुत जरूरत पड़ती है। बात तो सही आपकी, अगर आज मोबाइल नहीं होता तो हम एफएम रेनबो कैसे सुन पाते और ना ही आपको हम मेल कर पाते। अच्छा, ये तो बात आपने बहुत सही कही, और सही मायने में मोबाइल हर चीज, मैंने बोला ना कि वो जादू छड़ी है जो हर एक क्लिक पे हमें हर चीज मिल जाता है, लगभग लगभग सारी चीजें मिल ही जाती हैं। और इन्होंने लिखा है, रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से शमशुल कमर राही बेगम, रुखसार रकीबा शाहीन तुबा आफरीन। तो बात तो आपकी सही है कि अगर बिना फोन के रहना पड़ा तो कठिनाई तो है ना। अभी एक और हम मेल लेते हैं, सत्यम जोशी जी का। ये कहते हैं, सत्यम जोशी मंगलपुर का

आजमगढ़ से शमशुल कमर राही बेगम, रुखसार रकीबा शाहीन तुबा आफरीन। तो बात तो आपकी सही है कि अगर बिना फोन के रहना पड़ा तो कठिनाई तो है ना। अभी एक और हम मिल लेते हैं सत्यम जोशी जी का। ये कहते हैं सत्यम जोशी मंगलपुर कानपुर देहात से, मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक है उसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हूं मैं। अच्छा, वो कैसे? आगे लिखते हैं कि कल ही मेरा फोन स्कूल में छूट गया था तो पूरा दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे शरीर से आत्मा निकल गई हो। अच्छा, मतलब ऐसा लगने लगा आपको, बट एक बात अच्छी लगी कि मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मतलब समय ही नहीं कट रहा था। अच्छा सत्यम जोशी जी, बहुत ही मजेदार आपने मतलब बात कही, और बात तो सही है आपकी। जब अगर, लेकिन आपने बताया स्कूल में छूट गया था, इसका मतलब या तो स्टूडेंट हो या तो टीचर हो। अगर स्टूडेंट हो तो भी आपके पास बहुत सारा काम है, अगर आप टीचर हो तो भी आपके पास बहुत सारा काम है, तो काम तो बहुत सारे रहते हैं, फिर ऐसा क्यों लगा कि बहुत सारा वक्त है आपके पास जो कट नहीं रहा था। और अगर आपके पास वक्त सारा बहुत सारा था तो आप रेडियो सुनिए, बहुत सी बातें आपको सीखने को मिलेंगी, है ना। तो जो अगला मेल आया है वो आया है एम के राज जी का। न्यू आरजे राधा जी को शुभ दोपहरिया। जी आपको भी शुभ दोपहरिया। मैं मुनेश कुमार राज, गांव भानपुर हर हुआ जिला लखीमपुर खीरी से। आपकी कार्यक्रम प्रस्तुति हर घंटे लाजवाब है और रोज लाइव आया करिए, थैंक यू सो मच। मोबाइल है जीवन का अंग, अगर ये ना मिलेगा तो हो जाएंगे तंग। ओ भाई, दिल की बात है कहनी जरूरी, पर होठों पे चुप्पी लगे मजबूरी। कह दो जो दिल में छुपा है आज, कल ना रहे ये मौका ना रहे ये राज। प्यार की भाषा सबसे न्यारी, एक मुस्कान लगे सबसे प्यारी। बातें होठों से नहीं आंखों से होती हैं, सच्चे जज्बात वहीं से बोती है। आपका श्रोता मुनेश कुमार राज, ग्राम भानपुर हरुआ जिला लखीमपुर खीरी से। भाई बात तो आपने बहुत अच्छी कही राज जी, और ये जो लिखा था आपने ना, आप लिखते भी अच्छा है। तो प्रोग्राम आपको अच्छा लगा इसके लिए भाई शुक्रिया। और भाई बातें हो गई हमारी कि क्या आप सोचते हैं, लेकिन अभी क्या जरूरी है, अभी जरूरी है कि प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं, तो एंजॉय करिए इस प्यारे से गीत को।

दोस्तों आपसे बात करते करते जो समय है ना, बिल्कुल धीरे धीरे अपने वाइंड अप की ओर आ गया है भाई, समाप्ति की ओर आ चुका है। तो आज आपसे बात करके कि भाई बिना फोन के आप कैसे रह सकते हैं अगर 24 घंटे रहना पड़ा, तो मिली जुली जो बातें आपकी हमारे पास आई कि हाँ कुछ लोग कहते हैं रह भी सकते हैं, कुछ लोगों ने कहा नहीं रह भी रह सकते हैं। तो बात तो सही है कि फोन जरूरी भी है, लेकिन उतना ही उपयोग करें जितना आपको आपके स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचाए, है ना। तो अब अगले कार्यक्रम में आपसे मिलते हैं जिसका नाम है हॉटमेल, जहां आपकी पसंद के गाने बजाए जाएंगे।

0: conserve fuel. In a memorandum issued yesterday, the state government directed all departments to ensure that only 50% of Group C and Group D employees attend office each day, while the remaining staff will work from home on a rotational basis. The crucial talks between US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping is underway in Beijing. Iran war, global energy crisis, tariffs, trade tensions, Taiwan and artificial intelligence are likely to dominate the agenda. Earlier in his opening remarks, President Xi called for China and the US to be partners, not rivals. In his opening remarks, US President Trump described his Chinese counterpart as a great leader and said the relationship between the two superpowers will be better than ever before. The US President arrived in Beijing last evening for the high-stakes summit with Chinese President. The US President has brought along several top business and technology executives on his visit to China. Among the prominent executives accompanying the President are NVIDIA CEO Jensen Huang, Apple CEO Tim Cook, Tesla and SpaceX chief Elon Musk. In badminton, India's PV Sindhu and top men's doubles pair of Sattvic Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the quarterfinals of Thailand Open with impressive victories today. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Denmark's Amalie Schultz in women's singles. World number 12 Sindhu will now face reigning world champion Akane Yamaguchi of Japan in the quarterfinals. In men's singles, 7 seed Lakshya Sen defeated Chinese Taipei Su Li Yang to enter the last 8. Meanwhile, top seeded Indian men's doubles pair Sattvic and Chirag defeated Malaysia's Brian Jeremy Gunting and Mohammad Haikal to book their place in the last 8. News just in. Election Commission today announced Special Intensive Revision SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. The states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana and Uttarakhand. The UTs are NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India asserts BRICS expected to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. Two-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satheesan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Sattvic Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanaklata. भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
0: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा

0: की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को यह मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई।

0: प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजय नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: स्कूल गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश, आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, ये सारे भी साथ में हैं। शाहरून नूर अंसारी, कोई भी गीत सुनवा दीजिए दीदी जी, धन्यवाद। ग्राम और पोस्ट हरहरपुर मटककली जिला बरेली से शाहरून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरिशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया मेल करने के लिए। और ये आया है मेल हमारे पास में मोहम्मद अमीन जी का, मोहम्मद अमीन विलेज बिदहा पोस्ट बहरोली गंगागंज लखनऊ। अच्छा इन्होंने बोला है फिल्म से ये गाना सुनवा दीजिए। मेरा मेल क्यों नहीं शामिल कर रही हैं? अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि हम आपका मेल नहीं शामिल कर रहे हैं? ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं, हम कोशिश करते हैं सबका मेल शामिल करने का। अच्छा, समय तो होता है 1 घंटे का, तो उसमें सोचिए हम सबका कैसे शामिल कर पाएंगे और सबकी फरमाइश भी कैसे पूरी कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कोई भी हमसे नाराज ना हो। अगर फिर भी कुछ लोग छूट जा रहे हैं, उसके लिए दिल से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सॉरी बोलती हूँ कि अगर आपका गाना मैं बजाने की कोशिश करी नहीं बजा तो नेक्स्ट प्रोग्राम में बजा देंगे। मेरा मेल क्यों नहीं शामिल? अच्छा, आपकी शिकायत, मुझे उम्मीद है कि ये क्या लिखा है परवीन।

मोहम्मद फैज भरी रिंकी पिंकी जी को सुनना चाहते हैं। रिंकी पिंकी जी को आप यहाँ कैसे सुन पाएंगे? आप उनसे बात कर लीजिए। ये मेल है सीबा बानू जी का। हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम उमरा अंसारी, हुस्बा अंसारी, श्रीनगर, नहीं, सिरीनगर, लखीमपुर से मेल कर रही हूँ। अच्छा, इनको इस फिल्म का ये गाना सुनना है। प्लीज प्लीज प्लीज सुनवा दीजिए। भाई गाने बहुत सारे हैं और हमने क्यू भी लगा रखा है। आप में से ही किसी की एक पसंद का गाना बजने वाला है, तो अगर जिनका गाना है ये, तो अगर उनका मन हो तो थैंक यू बोल सकते हैं, थैंक यू मेल भेज सकते हैं। तो अभी फिलहाल एंजॉय करिए इस सॉन्ग को।

0: जी हाँ, कार्यक्रम चल रहा है हॉट मेल, जहाँ आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त राधा। और हमारे पास ना, पता है, मतलब प्यारे प्यारे तो मेल आ ही रहे हैं, और कुछ हमें मतलब ऐसे गुस्से वाले मेल आ रहे हैं ना, कि मतलब अभी देखिए मैं इनके स्टाइल में पढ़ती हूँ। जैसे इन्होंने भेजा है, अब बासी जी ने भेजा है,
1: हद हो गई राधा जी, पूरे 40 मिनट हो गए हैं, अभी तक आपने मेल देखा ही नहीं।
0: ओ अब्बासी जी, मतलब देखिए हम सबका मेल देख रहे हैं, अगर आपका मेल थोड़ा लेट में देखे तो नाराज मत होइए ना प्लीज। और इन्होंने बोला है कि हमें मैम इस फिल्म का ये गाना सुनवा दीजिए, ऊपर कोट, अच्छा ये इनका एड्रेस है, ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अच्छा देखिए अब्बासी जी, आपने कितने अच्छे से अपना मेल कलरफुल भेजा है, फूल भी भेजा है, तो नाराजगी इतनी ज्यादा मत करिए ना, हम सबके मेल को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ना, आपका भी मेल शामिल हो गया, तो हम धीरे धीरे देखिए सबके मेल शामिल करेंगे। प्लीज हमारे श्रोता, कोई भी हमसे नाराज मत होइए प्लीज। ये स्वर्ण सिंह ने लिखा है, स्वर्ण सिंह ने लिखा है, नमस्कार जी, गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गीत कोई भी सुना दो, हमारा नाम जरूर शामिल करो, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलिए, हमने आपका नाम शामिल कर लिया। और ये है जाकिर जी ने भेजा है, हॉटमेल कार्यक्रम प्रस्तुत कर्ता जी को नमस्कार, आज के कार्यक्रम में हमारा नाम भी शामिल कर लीजिए, धन्यवाद। और इन्होंने ना बहुत प्यारी प्यारी ग्रीनरी, मतलब वाकई ये भी हमने मॉर्निंग में शत्रुपम बात की, बागवानी की, तो इन्होंने ढेर सारे पौधे, पत्तियां, फूल, मतलब एकदम हरियाली हरियाली, आंखों को बहुत सुकून मिला देख के। भाई गर्मी इतनी है, और ऐसे में अगर आपने हरियाली भेजी है ना, सच में बड़ा अच्छा लग रहा है। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब, बाजार रोड, मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें मेल करने के लिए। रामराज जी लिखते हैं, अच्छा ये आपका तो मेल, चलिए कोई बात नहीं, रामराज जी ने लिखा है कि जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से, रामराज, राजू भानु, पवन कुमार यादव, बच्चू पप्पू, पासी, मनीष, नीरज, मधु, मिर्जा, इमरान बेग, हमको कोई भी गाना सुनवा दीजिए, हमारी तरफ से आपको प्यार भरा धन्यवाद। बिल्कुल हम आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे कि आपको शामिल करें। ये तुलसी मस्कीन जी ने लिखा है, प्रिय होस्ट राधा जी, हमसे लगता हो नारा हमें लगता है आप हमसे नाराज हो, अभी तक नो रिस्पॉन्स, इन्हीं सॉन्ग में तो मेल ले ही लो। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सबके मेल पढ़ें, सबकी फरमाइश पूरी करें, लेकिन अगर कोई छूट जा रहा है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो चलिए अभी एक जो गाना आ रहा है, आप ही लोगों में से किसी की पसंद का गाना है, और अगर सुन के एंजॉय कर रहे हैं तो साथ में एक थैंक यू मेल भी भेज दीजिएगा।

जी हाँ, 2:43 हो चुके हैं और कार्यक्रम चल रहा है हॉट मेल। आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त राधा, और जहाँ मैं चाहती हूँ कि आप सभी की फरमाइश पूरी कर सकूँ, लेकिन कुछ लोग नाराज भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बहन, अपनी दोस्त, अपनी आरजे की प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि हम एक घंटे में सबकी गीत की फरमाइश तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है। देखिए, जो लंबे लंबे गीत है, बहुत लोगों की जो फरमाइश है, तो भाई उनको आनंद भी आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सबकी फरमाइश मैं पूरी कर सकूँ। चलिए पढ़ते हैं अगला मेल। हमारे पास जो है वो प्रकाश बोरगांवकर का है। आदरणीय प्रसारक जी को प्यार भर नमस्कार, इसका ये गाना हमें सुनवा दीजिए। ये लिखते हैं छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद, विराज, स्वीट, अंशुमन, बेबी, ओवी, आपका दिल से शुक्रिया। भाई मेल करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राधे कुमार विद्यार्थी जी ने हमें लिखा है गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से। अच्छा, राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, बुल्की वाली और फलना जी। अच्छा, चलिए हमने आपके मेल को शामिल कर लिया। मेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कौशल प्रजापति लिखते हैं, नमस्ते मैडम जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मैम कौशल प्रजापति यशोदा नगर कानपुर से मैं लिख रहा हूँ, कैसी हैं मैडम जी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। काफी दिन बाद मैसेज किया है, प्लीज मैडम जी, बिल्कुल आपका जो मैसेज है काफी दिनों बाद आपने शामिल भेजा है, तो हमने शामिल भी देखी कर लिया है। और इन्हें इस फिल्म का ये गाना सुनना है, मैं अपनी शॉप पर हूँ, सभी दोस्तों को डेडिकेट करता हूँ, प्लीज मैडम जी ये गाना प्लीज सुनवा दीजिए। तो चलिए बिल्कुल, हम जितने मेल हमने अभी पढ़े हैं उनमें से किसी एक ही फरमाइश का गाना जो है ना, तो चलिए हम सुनवा देते हैं। तो इंजॉय करिए इस प्यारे से गीत को जो आ रहा है आपके रेडियो सेट पे।

जी हमारे पास आपके मेल ढेर सारे आ रहे हैं और जो समय धीरे धीरे जो है ना मतलब वाइंड अप की ओर है, तो मेरी कोशिश है कि इस समय मैं आपके मेल्स भी पढ़ लूं और आपके गाने भी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके गाने की फरमाइश पूरी करूं। अभी जो हमारे पास मिला है जॉन डिकेस्ट्रो जी का आया है, इन्होंने लिखा है ठीक है, गुड आफ्टरनून मैम, और इन्हें गुड आफ्टरनून आपको, जनकपुरी सहारनपुर से इन्होंने लिखा है, दिल बना के बढ़िया सुंदर सजा हो जाके भेजा है। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो, और इन्होंने बोला है मैं इस फिल्म का ये गाना हमें मैम सुनवा दीजिए। और अभी आया है ताज मोहब्बत जी का, आदरणीय मैडम जी आपको हमारी ओर से प्यार भरा आदाब, आपको भी आदाब, आप हमें किसी भी गीत में शामिल करें। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राही, मेहराज जहान, आजाद नगर, लक्सार, हरिद्वार, उत्तराखंड से। मैडम जी हम भी कब से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी हमारा मेल शामिल हो और हम अपना नाम सुने और खुशी से झूम उठे। तो देखिए हमने आपको खुशी से झूमने का मौका दिया ना, आप खुश हो जाइए। ताज मोहम्मद जी आपका गाना जो है हमने प्ले कर दिया है। एम के राजी न्यू चाहिए तो हम पढ़ चुके हैं। ये सतीश अनेजा जी का है, नमस्कार राधा बहन जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इन्होंने लिखा है चंडीगढ़ सिटी, सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, और इन्होंने थैंक यू भी लिख दिया है। तो थैंक यू, हमने आपका मेल तो पढ़ लिया, पूरी कोशिश करेंगे कि गाने की फरमाइश भी हम पूरी कर सकें। ये आया हमारे पास मेल जो है, ये आया है संदीप जी का आया है, फिल्म इस फिल्म का हमें ये गाना सुनना है, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर, कमल साहनी, पिंगला वाला चौक, गोरिया, जलंधर, पंजाब से। अच्छा मतलब कितने दूर दूर से मेल आए हैं भाई। देखिए समय जो है ना बिल्कुल धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो हम जल्दी से आपकी पसंद का गाना सुनवा दें, है ना।

0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जी हाँ, कार्यक्रम चल रहा है होठों पे तेरी बात, और धीरे धीरे जो है हम कार्यक्रम के वाइंड अप की ओर आ चुके हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से सबके नाम तो पढ़ ही दे। हमारे पास बहुत सारे जो मेल आए हैं उसमें से दिलीप दिलीप रामेकर और शंभु दयाल, रणधीर गुप्ता, अब्दुल गफ्फार, मास्टर खीलू परवेज, मोहम्मद अमीन, लाल गिरी और स्वर्ण सिंह, संदीप मक्कर और रोजी डिकैस्ट्रो, शहरून नूर अंसारी, वारिस अली खान, ताज मोहम्मद, एम के राज और सतीश अनेजा, जोन डिकैस्ट्रो, उदय भान जी, अहमद फूलवाले, विराज मौर्या, अहमद फूलवाले, नवी हसन। अच्छा ऐसा है ना, नवी हसन, बिट्टू। अच्छा ऐसा है कि आप एक ही व्यक्ति ना कई मैसेज उन्होंने भेज रखा है, तो इसमें क्या हो रहा है ना कि जो नए मैसेज हैं वो रह जा रहे हैं। तो अगर आपने एक मेल कर दिया है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, ढेर सारे मेल एक साथ भेजते रहेंगे ना तो जो नए मेल हैं वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। बिट्टू गंगनेजा, मोहम्मद अमीन, नवी हसन, सतीश अनेजा और उत्तम कुमार भगत, मुकेश कश्यप, संजय साहू, है ना, ये सारे आप लोगों ने गाने की जो फरमाइश की है। तो चलिए हम वो गाना, इस प्रोग्राम का अंतिम गाना, क्योंकि जो कार्यक्रम जो है वो समाप्ति की ओर है और अगला कार्यक्रम हम लेकर आएंगे आपके लिए सतरंगी दुनिया, तो इस आखिरी गीत को एंजॉय करिए हॉट मिल में।

102.2 की फ्रिक्वेंसी पर आपने ट्यून इन किया है एफएम रेनबो कानपुर को। गुड आफ्टरनून दोस्तों, म्यूजिक आर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। रितु निगम के साथ एंजॉय कीजिए आज के इस प्रोग्राम को। म्यूजिक आर प्रोग्राम की आज की थीम है गर्मी में सेहत का साथ। इस गर्मी के मौसम में आप अपने और अपनों की सेहत का ख्याल कैसे रख रहे हैं, अपनी बात साझा कीजिए हमसे इस ईमेल आईडी पर AIRKANSOMEDIA@gmail.com।

दोस्तों, गर्मी का मौसम एक ऐसा मौसम जो हमें आम की मिठास देता है, छुट्टियों की खुशी देता है, लेकिन साथ ही लाता है थकान, पसीना, चिड़चापन और कई बार बीमारियां भी। जरा सोचिए, दोपहर की तेज धूप, सड़कें तप रही हैं और हम बाहर निकलते हैं तो कुछ ही देर में पसीना, प्यास और थकान महसूस होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा शरीर लगातार पानी खो रहा होता है और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो डिहाइड्रेशन, लू, कमजोरी, ये सब हमें घेर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। आज के म्यूजिकार प्रोग्राम में हम बताएंगे इस मौसम में क्या खाएं, कैसे रहें, कौन से घरेलू उपाय अपनाएं और कैसे इस गर्मी को भी एंजॉय करें। फिलहाल एंजॉय कीजिए ये ट्रैक।

दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि गर्मी में सबसे जरूरी चीज क्या है तो आपका जवाब होगा पानी। ये सही भी है। हमारा शरीर लगभग 60% और 70% पानी से बना है। गर्मी में पसीने के जरिए हम लगातार पानी खोते रहते हैं। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों। एक व्यक्ति रोज ऑफिस जाता था लेकिन पानी कम पीता था। धीरे धीरे उसे सिरदर्द, थकान और चक्कर आने लगे। डॉक्टर ने सिर्फ एक सलाह दी, पानी बढ़ाओ, और कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगा। मतलब ये है कि पानी पीने की आदत डालनी होगी। हर एक घंटे में थोड़ा पानी, सुबह उठते ही एक गिलास पानी, और बाहर जाते समय पानी की बॉटल साथ में रखिए। क्या आप ऐसा करते हैं, हमें ज़रूर बताइए। हमारी ईमेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com।

दोस्तों, गर्मी में हमारा पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर हो जाता है। अगर हम भारी खाना खाएंगे तो क्या होगा? आलस, गैस, एसिडिटी, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो फिर सवाल उठता है कि क्या खाएं? दही, छाछ, हरी सब्जियां, सलाद खाइए, और क्या ना खाएं तो ज्यादा तला भुना, मसालेदार, बासी खाना बिल्कुल मत खाइए। याद रखिए, जितना हल्का खाना उतना फिट शरीर। और वेल गाइज, शरीर को फिट रखने के लिए म्यूजिक सुनना भी जरूरी है, तो सुनिए ये ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
5: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
4: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप? तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45

0: हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmiliaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:15 बजे सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर। मेल मिलाप।

म्यूजिक आर प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर। आज के प्रोग्राम की थीम है गर्मी में सेहत का साथ। इस पर आपके क्या विचार हैं बताइए हमें, आपकी बात को हम अपने श्रोताओं से साझा करेंगे अभी म्यूजिक आर प्रोग्राम में। हमारी ईमेल आईडी है airkansomedia@gmail.com।

0: दोस्तों, गर्मी में ठंडे पेय पदार्थ सबसे बड़े हीरो होते हैं। आम पना लू से बचाता है, तरबूज जूस से पानी की कमी पूरी होती है, एनर्जी आती है, छाछ पाचन के लिए बेस्ट, और सत्तू का शरबत भी बहुत ही हेल्थी होता है। एक दिलचस्प बात यह है कि हमारे पुराने समय में फ्रिज नहीं था, फिर भी लोग हेल्दी रहते थे। क्यों? क्योंकि वे प्राकृतिक पेय पदार्थ लेते थे और स्वस्थ रहते थे। स्वस्थ रहने के लिए गाना सुनना भी दोस्तों बहुत ही जरूरी है, तो लीजिए इंजॉय कीजिए।
1: ले लो ना नारियल।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
6: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
7: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
6: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप? तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3 बजे

0: 45 मिनट पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर। पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:15 बजे सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर
2: मेल मिलाप।

म्यूजिक का प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर अपनी रेडियो दोस्त ऋतु के साथ। दोस्तों, गर्मी में सबसे खतरनाक चीज क्या है आप सोचकर बताइए, तब तक मैं सुनवाती हूँ आपको ये ब्यूटीफुल ट्रैक।

तो दोस्तों हमने पूछा था कि गर्मी में सबसे खतरनाक चीज क्या है, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इसका जवाब लिखा है, लू यानी हीट स्ट्रोक। और ये बिल्कुल सही जवाब है। हमारे जिन जिन श्रोताओं ने सही जवाब दिया है उन सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों हम आपको बता दें कि लू के जो लक्षण हैं वो हैं चक्कर आना, तेज़ बुखार और कमज़ोरी। इसके लिए करना ये है कि सिर ढक कर रखें, खूब पानी पिएं और हो सके तो दोपहर में बाहर ना निकलें। दोस्तों प्रकृति हमें हर मौसम में वही देती है जो हमें चाहिए, तो गर्मी में आने वाले फल तरबूज, खरबूज, आम, अंगूर आदि का सेवन कीजिए, क्योंकि इनमें पानी और विटामिन ज़्यादा होते हैं। और अब ये सॉन्ग पहुँच रहा है आप तक।

वेल गाइज, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त नींद लेना भी बहुत जरूरी है। हल्का व्यायाम करें, तनाव से दूर रहें, क्योंकि शरीर को जितना आराम मिलेगा उतना ही वो गर्मी को सह पाएगा। फिलहाल आपके टेंशन को दूर करने आ रहा है ये ट्रैक।

तो दोस्तों, सेहत कोई एक दिन में नहीं बनती है, ये रोज की छोटी छोटी आदतों का नतीजा होती है। तो आज हमने म्यूजिक आवर प्रोग्राम में ये जाना कि पानी की अहमियत, सही खान पान और बचाव के तरीके। याद रखिए, स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए एंजॉय कीजिए गर्मी के मौसम को और इस आने वाले ट्रैक को भी। लेकिन मुझे यानी ऋतु को दीजिए इजाजत म्यूजिक आवर प्रोग्राम से। नमस्कार।

102.2 की फ्रिक्वेंसी पर आपने ट्यून इन किया है एफएम रेनबो कानपुर को। हमारे अगले प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स के लिए हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली केंद्र। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी। और दोस्तों, हर हफ्ते हमें रहता है इंतजार एक ऐसी शख्सियत से मिलने का इस कार्यक्रम में, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने अपना जीवन सेना के लिए समर्पित कर दिया और साथ ही साथ हम सबके लिए अनुभवों की एक मिसाल बन गए। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हमारी अतिथि हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे, जिन्होंने लगभग डेढ़ दशक तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी है। रिटायरमेंट के बाद वे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं, साथ ही साइबर सुरक्षा इंफोसेक्स से जुड़े कार्यों में भी आप योगदान दे रही हैं। प्रतीक्षा ठाकरे का नाम विशेष रूप से उन महिला सैन्य अधिकारियों में लिया जाता है जिन्होंने भारतीय वायुसेना में नेतृत्व, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी विशिष्टता और विशेषज्ञता रक्षा सेवाओं, नेतृत्व, सुरक्षा और तकनीकी प्रबंधन में रही है। हम आपका स्वागत करते हैं प्रतीक्षा जी, और संदेश टू सोल्जर्स में आज आपने समय निकालकर जो यहाँ शिरकत की इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपके हृदय से आभारी हैं।
1: धन्यवाद विनीता जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का हिस्सा बनना वास्तव में मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है, जहां मुझे पूरे भारत के सैनिकों तक अपना संदेश पहुंचाने का अवसर मिल रहा है।
0: जी शुक्रिया, इसलिए भी कि आपने आकाशवाणी में ना केवल आकर हम लोगों को अनुभवों का खजाना सौंपा है, बल्कि इसलिए भी कि आप इसके लिए हमारे ही आभार जता रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही आपसे कहना चाहती हूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आप इतनी यंग हैं, और ऐसे में जब हम आपके साथ रिटायर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आता, क्योंकि रिटायर्ड तो आमतौर पे व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद होता है, तो आप इतनी छोटी सी उम्र में रिटायर्ड कैसे हैं?
1: बात आपकी सही है, क्योंकि मैं भी रिटायर्ड ये शब्द थोड़े से बुजुर्ग लोगों के साथ एसोसिएट करती थी, बट क्योंकि मैंने अपने लाइफ के प्राइम 14 साल एयरफोर्स को समर्पित किए हैं और उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, इसी वजह से वो रिटायर्ड शब्द है, और वो मेरे लिए है पक्का, और डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर द रैंक बट इट इज फॉर मी फ्रॉम द एयरफोर्स।
0: दैट्स सो ब्यूटिफुल। अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे लगा कि आपको एयरफोर्स में आना है, कौन था इसके पीछे या किससे आपको प्रेरणा मिली?
1: विनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, बट ये ऐसी एक चीज है जो मुझे विरासत में मिली है जी। क्योंकि अगर मैं शुरुआत करूं तो मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी थे जो भारत के आजादी के लिए लड़े। उसके बाद परंपरा बढ़ाई गई मेरे फादर ने, जो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और 25 साल की सेवा जो उन्होंने देश के लिए की, उसके बाद वो रिटायर्ड हुए एज कर्नल। और परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जिसने सिर्फ यूनिफॉर्म वर्दी पहनने का सपना ही नहीं देखा, बल्कि उसको जीने का सपना भी देखा।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए दोस्तों मैंने आप सभी से ये बात कही कि आज की हमारी अतिथि अनुभवों का खजाना है, और इतना कुछ है इनके पास हमें बताने के लिए, क्योंकि आपके परिवार में प्रारंभ से ही फोर्सेस के लिए बहुत रुझान रहा है ना। तो भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में जब आप आई तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था?
1: अच्छा विनीता जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी जी, मेरे बचपन की तरफ, जहां पे मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था। जैसे उस टाइम पे जब मैं छोटी थी उस टाइम मेजरली दो प्रोफेशन ज्यादा नामचीन हुआ करते थे, एक था डॉक्टर, दूसरा था इंजीनियर, की ये दो प्रोफेशन है तो आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है, नहीं तो नहीं। जो मैं अभी सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, और भी बहुत अच्छे प्रोफेशन हैं, बट हालांकि उस टाइम मेरा सपना था डॉक्टर बनने का। और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने घर पे एक ही प्रोफेशन देखा था, वो था देश सेवा का जी। तो तब मैंने ठाना कि अच्छा डॉक्टर बनूंगी तो डिफेंस फोर्सेस में ही डॉक्टर बनूंगी, ताकि मेरे दो सपने पूरे हो सके, एक तो देश की सेवा और देश के नागरिकों की सेवा। तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई करती चली गई, अच्छा किया, बायो में मेरा काफी रुझान था, काफी इंटरेस्ट था, तो बायो लिया। जब मैंने प्री मेडिकल एग्जाम दिया तब मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं एमबीबीएस कर पाऊं। हालांकि इतने नंबर थे कि मुझे डेंटल में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं, करना है तो एमबीबीएस ही करना है। तो जब मैं कॉलेज में एंटर होने वाली थी, उस टाइम मेरा ट्वेल्थ होने के बाद, मेरे फादर तब तक रिटायर्ड हो चुके थे और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे।
0: अच्छा।
1: हालांकि उन्होंने और मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि तुमने ये करना है या वो प्रोफेशन चुनना है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर के मन में था कि मेरी बेटी भी इंजीनियर बने उन्हीं की तरह। तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूं, तो उन्होंने बोला मेडिकल के तरफ अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर लो, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, वहां से भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगी। इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था। सो वहां से शुरुआत हुई कि ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्जाम दी, मुझे एडमिशन मिला नागपुर यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच उस टाइम की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एडमिशन ली, एंड फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इन इंजीनियरिंग। तब तक लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि आधा सपना तो मेरा रह गया है जो है डॉक्टर बनने का।
0: हाँ।
1: लेकिन जो बचा आधा था शायद वो भी कहीं छूटता नजर आ रहा था मुझे। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी विनीता जी कि ये हम जो कहते हैं कि हमने सपना छोड़ दिया, वो बात नहीं होती, सपना हमें नहीं छोड़ता, ये बात होती है।
0: सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बात कही है आपने।
1: सो कहीं ना कहीं वो सपना मुझे ही चेस कर रहा था कि नहीं, तुम अगर डॉक्टर नहीं बनी हो तो डिफेंस फोर्सेस में तो पक्का जाओगी। सो दैट वॉज द पॉइंट जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में रिक्रूटमेंट के लिए आए। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे तो मैं भी गई उनके साथ कि चलो जाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर तक हमारा प्लेसमेंट हो चुका था वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज में। सो लाइफ तो सेट थी। एज अ यंग पर्सन मुझे लगता था लाइफ में और क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हो गया, आपकी नौकरी लग चुकी है, पैसे कमाना है एंड लाइफ में मजे ही मजे हैं, ये होता था उस टाइम। एंड अभी भी काफी यंग लोगों का दिमाग में माइंडसेट ये होता है, बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया कि वो सपना था मेरे मन में कि वर्दी तो पहननी है, यूनिफॉर्म वॉज माई ड्रीम। सो वैसे करके देन रिक्रूटमेंट के लिए हम गए, एयरफोर्स ने एग्जाम्स कंडक्ट की, उस टाइम फास्ट ट्रैक एग्जाम एक होता था, उसमें एग्जाम हुई, क्लियर किया, एंड द नेक्स्ट थिंग जो मेरे ध्यान में है, मेरे जहन में है कि हम मैसूर पहुंचे, मैं और मेरे फ्रेंड्स एसएसबी देने के लिए। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, एसएसबी के जो वो 5 दिन होते हैं, मतलब वो लाइफ के आर द बेस्ट डेज, दैट इज द गोल्डन पीरियड। और एक संदेश जो मैं अभी देना चाहूंगी देश के सब यंग बच्चों को कि रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन यू शुड एंजॉय, यू शुड एक्सपीरियंस दोज 5 days ऑफ एसएसबी। वो आपको आपके खुद के बारे में इतना सिखाता है जो और कहीं आपको सीखने नहीं मिलेगा।
0: अमेजिंग। और ना सिर्फ सीखने को बहुत कुछ मिलता है बल्कि ये आपका वो सपना पूरा करता है कि आपके तन पर यूनिफॉर्म हो, मन में जज्बा हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम उठें।
1: जी बिल्कुल।
0: और साथ के साथ आपके आपके कदम तो जमीन पर नहीं, आपके कदम तो आसमान के लिए है ना। तो आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना ही नहीं देखा बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन भी की। इसके आगे की यात्रा की बात आपसे बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके इस आसमानी यात्रा की शुरुआत के लिए ये गाना विशेष रूप से आपके लिए समर्पित है।

0: क्या दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और प्रतीक्षा जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूं इस गाने के बाद पर्टिकुलरली, कि क्या कभी कोई ऐसा है जिसने ये गाना आपको डेडिकेट किया है या कोई आपके लिए ये गाना गाता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है मेरे हस्बैंड जो खुद एयरफोर्स में है।
0: ओह नाइस, अच्छा अच्छा, वो भी एयरफोर्स में?
1: जी हाँ, वो अभी सर्विंग है, विंग कमांडर अभिषेक लूथरा मेरे हस्बैंड है। एंड बिल्कुल ये गाना वो कभी हमारे लिए गाते हैं, कभी हम उनके लिए गाते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताएं, आप एयरफोर्स ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे बदल दिया, क्या उसका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव तो नहीं ही है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या आपकी पर्सनालिटी पे आया? क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी अपने बारे में बताया प्रतीक्षा जी, मुझे लगता है कि आप तो पहले से ही काफी फोकस्ड और डेडिकेटेड रही, तो एयरफोर्स ने भी कुछ आप में बदला?
1: बिल्कुल, लेकिन एयरफोर्स जाने से पहले जो एक एडवाइस मेरे फादर ने मुझे दिया था, मतलब जस्ट मैं निकल रही थी एयरफोर्स अकेडमी डुंडिगल के लिए, और एक चीज जो आखिरी में उन्होंने मुझे जाते वक्त कही थी कि बेटा ये वर्दी है, ये कोई कपड़ा नहीं है, इसकी इज्जत करना, बिकॉज ये तुम्हें सम्मान और एक पहचान देगी। और उस लास्ट थॉट्स, लास्ट सेंटेंसेस के बाद जब मैं एयरफोर्स अकेडमी पहुंची, सो एक वो अलग दुनिया थी। जैसे मैंने आपको बताया मेरे फादर आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग में होता क्या है। और जब मैंने उनको वापस जाके पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला वो एक्सपीरियंस तुम्हारा खुद का था और मैं चाहता था कि वो एक्सपीरियंस तुम लो और उसको अपनी तरीके से ढालो, ना कि कोई पहले से दिमाग में कोई चीज लेके चलना, वो ठीक बात नहीं है।
0: सो अमेजिंग। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपने ये जो बात कही है ना, ये उन सभी फादर्स को सुनना चाहिए जो अपने बच्चों के स्कूल बैग्स अपने कंधों में रखकर उनको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आते हैं। दे शुड लर्न कि प्रतीक्षा जी के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद अपनी नजरों से अपने एक्सपीरियंस के साथ समझनी है, वही तुम्हारे काम आएगी। ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा अब ट्रेनिंग की बात आपने कही है, तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौती, सबसे मुश्किल घड़ी आपके लिए कौन सी रही?
1: वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एज एक्स फौजी अगर मैं ये बोलूं तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम जो सबसे मुश्किल चीज थी मेरे लिए थी वो थी रनिंग।
0: रनिंग?
1: जी हाँ, ऑल्दो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन जो अकेडमी में जिस लेवल की रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, उससे मैं डर जाती थी शुरुआत में। बहरहाल ट्रेनिंग होती ही इसके लिए कि आपको पहले ट्रेनिंग में मेंटली टफ बनाया जाता है, उसके बाद आप फिजिकली टफ तो बन ही जाते हो। सो वो एक शुरुआत की चुनौती थी जो मैंने कर ली थी, वो पार कर ली थी मैंने। लेकिन हाँ जी, अगर आप पूछेंगे तो एक रनिंग एक मेरा बहुत बड़ा खौफ था।
0: इसीलिए आपने जमीन छोड़कर आसमान चुना।
1: हो सकता है।
0: अच्छा एक बात और बताइए, विंग कमांडर बनने की जो आपकी जर्नी थी, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स रहे आपके लिए?
1: जी विंग कमांडर की जर्नी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, बिल्कुल भी आसान नहीं है। डिफेंस फोर्सेस में जाना ही आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये एक और चीज बताना देश के सैनिकों को और जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कि डिफेंस केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो आपको पूरी तरह अपने में ढालनी पड़ती है, बिल्कुल आपको आपकी पास्ट लाइफ जो आप एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले जो चल रही थी, जो आपको लाइफ, आपको पूरी तरह छोड़नी पड़ती है। क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ही ये है कि एक डिसिप्लिन लाना, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट जो आपको आपके काम की तरफ देनी पड़ती है। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं उस जर्नी में टू बिकम अ विंग कमांडर, स्टार्टिंग विद पोस्टिंग्स, आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग जाना होता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं और आपको एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको बंदूक चलानी होती है, आपको फिजिकल फिट रहना पड़ता है, तो सारी चीजें आपके लाइफ में एक साथ हो रही होती है। सो दैट इज दैट कम्स फ्रॉम योर मेंटल फिटनेस एज वेल एज फिजिकल फिटनेस. तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में ही आपको तैयार किया जाता है ताकि आगे के लाइफ में आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें.
0: अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, हम डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है आपकी नजर में क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी सबकी जिंदगी में, चाहे वो फोर्सेस में हो या सिविलियंस हो, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए. लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तब हम इसे बहुत हाईलाइटेड रूप में देखते हैं, तो एज पर यू इसकी क्या इंपॉर्टेंस है?
1: जी देखिए, डिसिप्लिन, आपने जैसा बोला कि डिसिप्लिन हर एक के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट डिसिप्लिन आप, मुझे नहीं लगता आप कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं. एंड सक्सेस का पैरामीटर हर एक के लाइफ का अलग होता है. सो डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए आर्म फोर्सेस बना ही इसलिए ताकि वॉर टाइम में हम काम कर सके और देश को प्रोटेक्ट कर सके. सो उसके लिए पहला स्टेप ही, पहला कदम ही डिसिप्लिन है. अगर आप अपने काम में, आप अपने लाइफ में हर एक चीज को लेके डिसिप्लिन है तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आएगा. और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सेकेंड सेकेंड का भी बहुत फर्क पड़ता है. अगर आप वॉर टाइम सिनेरियो देखेंगे तो हर एक सेकेंड का बहुत बहुत मेजर इंपॉर्टेंस होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन, ऑन ग्राउंड, इन एयर, फ्लाइंग, एवरीथिंग. हर एक जगह पे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सो इसीलिए जैसे आपने कहा बहुत हाईलाइट किया जाता है क्योंकि डिफेंस फोर्सेस चलती ही इन दो चक्कों पे है, वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट. कोई भी एक चीज अगर खराब हुई तो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी.
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने. अच्छा, आप उन खास लोगों में से हैं, या कहना चाहिए कि उन महिला सैन्य अधिकारियों में से हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में लीडरशिप, डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सीलेंस का एग्जाम्पल दिया है. तो इस नजरिए से मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपने लीडरशिप का सबसे बड़ा पार्ट खुद क्या सीखा है, मतलब आपकी नजर में लीडरशिप की कौन सा ऐसा लेसन है जिसने आपकी पर्सनैलिटी को वो बनाया है जो आज आप हैं और बड़े फक्र से सब आपका नाम लेते हैं.
1: जी, लीडरशिप में मैं तीन चीजें आपको बताना चाहूंगी. एक है पेशेंस एंड पेशेंटली लिसनिंग, खुद धैर्य रखना और धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनना, ये बहुत जरूरी है. दूसरी बात आती है ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल. आप अपनी टीम को अगर आप बोल रहे कुछ करने के लिए, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा. अगर आप बोल रहे इंटेग्रिटी होनी चाहिए तो आपको इंटेग्रिटी दिखानी होगी, आपको एथिकली एक्ट करना पड़ेगा. वो होता है लीड बाय एग्जांपल. और तीसरी चीज है आपकी टीम. आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो आपकी टीम का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी होती है. दैट इज व्हाट इज लीडरशिप फॉर मी.
0: अमेजिंग, इतनी खूबसूरत डेफिनेशन आपने लीडरशिप की दी है. तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लीडर ना सिर्फ डिफेंस फोर्सेस में या इंडियन एयरफोर्स में रही हैं, बल्कि अब जो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, आपने वहां भी लीडरशिप की एक मिसाल कायम की होगी, मैं ऐसा मान के चलती हूँ. तो ये तो खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई आपने, ये कहकर कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इम्पोर्टेंस रही है. बट अदरवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफेंस की

0: फील्ड में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं? ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं कि ना सिर्फ एक महिला होने का गौरव आप रखती हैं, बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में आप जानी जाती हैं। आप रिटायर्ड हुई हैं, लेकिन आज भी लोग आपका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है इस फील्ड में, रक्षा सेवाओं में खासकर?
1: जी देखिए, महिला या मर्द, मुझे लगता है दोनों में कोई फर्क नहीं है। फॉर दैट मैटर, इवन डिफेंस फोर्सेस में कोई जेंडर बायस नहीं है जी, क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर मैं आपको मेरी ट्रेनिंग के डेज में लेके जाऊं, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक महिला होके मैंने नहीं की है, या किसी और मेल ऑफिसर ने हमारे साथ जो थे ट्रेनिंग में उन्होंने ज्यादा की है या हमने कम की है। तो अगर ट्रेनिंग में भेदभाव नहीं है, तो आगे भी कोई भेदभाव नहीं होता है। सो एज ए वुमेन, अगर आप मुझे पूछे, तो बहुत जरूरी है कि आप आपके मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो बंधन होता है वो हमारे दिमाग में होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। वो जो एक सेल्फ डाउट होता है वो हमारे अंदर होता है, ना कि बाहर। बाहर सबको दुनिया एक समान देख रही है, और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस सबको एक समान ही देख रही है। तो एज अ वुमेन, मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए। आप उतनी ही केपेबल हो जितना एक मेल ऑफिसर होते हैं।
0: जी बेहतरीन। मुझे लगता है कि कोई जेंडर बायस एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेस में नहीं है, ये बात आपकी इस स्टेटमेंट ने तो साबित कर ही दी है। तो अगर किसी के मन में ये वहम हो कि औरत है ये कैसे कर पाएगी, या महिलाएं कैसे इस फील्ड में जा सकती हैं, या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये औरतों के लिए नहीं है, उन सब की बात का एक बहुत ही करारा जवाब आपने अपने इस स्टेटमेंट के द्वारा दिया है। हैट्स ऑफ टू यू, आई रियली गिव यू अप्लॉज फॉर दिस आंसर। और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने इंडियन एयरफोर्स को अपनी भूमिका से बहुत गौरवान्वित किया है, तो ये बादलों का गाना तो आपके लिए बनता है।

संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। मैं बहुत सारी बातें कर रही हूं प्रतीक्षा जी से, बहुत कुछ अच्छा जानने को भी मिल रहा है और काफी कुछ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो एक बात जो मैं आप सबकी तरफ से प्रतीक्षा जी से पूछना चाहती हूं वो ये है कि आपके लिए अब तक अगर पूछा जाए तो आपकी जिंदगी का सबसे गौरव भरा पल कौन सा था, आपका प्राउडेस्ट मोमेंट ऐसा कौन सा था?

0: होता है, वो परेड होती है लगभग 14 किलोमीटर लंबी परेड, जो आपको पूरे कंटिंजेंट के साथ ताल में ताल मिला के रिदम में आपको मार्च करते हुए जाना होता है
1: पूरे 14 किलोमीटर।
0: बिल्कुल, तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होती, वो एक गौरव होता है और एक अनुशासन होता है कि आप आपकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चले, और वो भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन होता है पूरे विश्व के सामने।
1: True.
0: So, जब हम राजपथ पे चले तब मार्च किया कंटिंजेंट के साथ, और फिर वो पल आया जहां हमने भारत के सुप्रीम कमांडर जो राष्ट्रपति थे उस समय के, श्री प्रणब मुखर्जी जी, और उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी थे श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में एज चीफ गेस्ट फॉर दैट ईयर, मिस्टर बराक ओबामा। सो एक वो जो सलामी थी
1: जी,
0: वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक हर लड़की की मेहनत थी, हर महिला का सपना था, और उसके साथ हमको पता था पूरे देश का विश्वास है हमारे साथ। बट आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि वो एक सिर्फ पल नहीं था, बट वो एक हर महिला, हर लड़की, इस देश की हर लड़की का एक वो सपना था कि उस राजपथ पे मैं चलूं।

0: क्योंकि उस दिन मैंने एक और बात सीखी थी कि सीमाएं बाहर नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो हमारे दिमाग में होती है। और जब आप वर्दी पहनते हैं तो आप खुद को प्रूव नहीं करते, लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। तो मुझे लगा वो उस तरफ हमने एक छोटा सा योगदान दिया था।
1: कितनी सुंदर बात आपने कही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक मिसाल बनते हैं, आप उनके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं जिस पर चलकर वो आपसे भी आगे निकल पाएं, आपके सपनों को और अधिक बुलंदियों पे पहुंचा सके। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत सुंदर विचार हैं आपके। प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, ये जब आपने अपना अनुभव बताया रिपब्लिक डे परेड पर, तो उस वक्त जब आप राजपथ पर थी, आपको अपने बचपन के उस सपने को पूरा होते देखने की खुशी तो होगी ही, साथ में ये भी फीलिंग थी कि आपने अपने पापा को प्राउड किया है आज।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर से उस चीज पे जाना चाहूंगी जहां मैंने बोला कि आप सपना छोड़ सकते हो लेकिन सपना आपको नहीं छोड़ता है।
1: हाँ, कितनी
0: क्योंकि
1: सुंदर बात।
0: एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, जब मैं स्कूल में थी तब मैं एनसीसी में थी, और तब भी मुझे मौका मिला था रिपब्लिक डे परेड पे जाने का,
1: हाँ,
0: लेकिन तब दिमाग में था कि मेरी स्टडीज मिस हो जाएंगी, मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, क्योंकि तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तब मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी मैम को बोला था कि मैम मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी। तो वो सपना मेरा शायद अधूरा रह गया था जो एयरफोर्स ने पूरा किया है।
1: हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बात है ये कि आपने बचपन के सपने को बड़े होकर जिया, और ना सिर्फ जिया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया। बहुत ही सुंदर। अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात बताइए, आप तो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रही हैं, तो बहुत थ्रिल माना जाता है इस डिफेंस फोर्स को, तो आपका भी कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल। और थ्रिलिंग तो डेफिनेटली है, एयरफोर्स इज फुल ऑफ थ्रिल। और उस थ्रिल में मैंने एक जो काम किया था वो था पैरा जंपिंग का। पैरा
1: वाह।
0: जंपिंग एक ऐसा अनुभव रहा है मेरी लाइफ में जिसने मुझे बाहर से तो बदला ही है, जैसे एयरफोर्स ने मुझे बाहर से बदला है, लेकिन पैरा जंपिंग ने मुझे अंदर से बदल दिया।
1: क्या बात है।
0: उसका अनुभव ऐसा रहा कि Mi-17 हेलीकॉप्टर से आपको 5 जंप्स करनी होती है, तब आप ट्रेन पैरा जंपर बनते हैं।
1: और ये जो 5 जंप करनी होती हैं, ये किसी टाइम पीरियड में करनी होती है?
0: जी ये 2-3 दिन के पीरियड में करनी होती है, क्योंकि मॉर्निंग जंप्स होती है, आपकी नाइट जंप्स होती है, सो वो सब मिला के 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती
1: सिर्फ
0: है।
1: दो तीन दिन में?
0: जी हाँ।
1: माय गॉड।
0: और उसके पहले अगेन हर एक चीज की ट्रेनिंग तो होती ही है, तो वो ट्रेनिंग के बाद फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप जंप करें। और वो लगभग 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई से जंप की जाती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता है, वो अपने अंदर का जो डर है वो निकालने के लिए होता है। और आपको मैं एक और चीज बताऊंगी, उस टाइम तक मुझे ऊंचाई का डर था, थोड़ा सा तो डर रहता था मुझे। और जब मेरी पहली जंप थी, मैं इतनी एक्साइटेड थी उस पहले जंप के लिए, क्योंकि वो होता है ना, इट्स एन अननोन टेरिटरी, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। तो पहली जंप तो बहुत मजेदार थी और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत अनुभव था वो, कि आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है, बस एक एड्रेनलिन रश होता है, एक एक्साइटमेंट होती है।
1: जी
0: क्योंकि जैसे कहते हैं, कभी कभी अनजानी चीज भी डराती नहीं है लेकिन आपको उड़ना सिखाती है।
1: हाँ,
0: लेकिन दूसरा जंप जो था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि पहले जंप में हुआ क्या था। तो दूसरी जंप में मुझे ऑनेस्टली बताओ डर लगा था, और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सुसाइड मिशन पे निकली हूं।
1: ओह माय गॉड।
0: बट तीसरे जंप के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, और एक मैजिकल फीलिंग थी उस टाइम पे, क्योंकि आप जब जंप कर जाते हो आप वहां पे होते हो जहां पे और कोई शोर नहीं है, कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आप हो, चारों तरफ सन्नाटा है, और आपकी अपनी सांस से आप सुन पा रहे हो।
1: इनर स्ट्रेंथ
0: इनर
1: बेसिकली।
0: स्ट्रेंथ, वो एक ऐसा पल है जब आपको लगता है कि एक पक्षी होना कैसे लगता है, दैट इज एक्चुअल फ्रीडम। एंड वो एक पॉइंट होता है जहां आप खुद से कनेक्ट करते हो।
1: कितना सुंदर एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, और सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं अगर आप देख सकें तो। मतलब ऐसा जब आप ये भी एक्सप्लेन कर रही थी, ये बता

0: नहीं थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम आपके साथ खड़े हुए और आपके साथ ही जंप करने के लिए नीचे झांक रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं. तो ये आपका डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही खूबसूरत है. आई मस्ट से कि आप बताती बहुत अच्छा है अपने अनुभव. और एक और बात बताइए, देखिए अभी आपने अभी तक जो भी बात बताई वो आपकी सक्सेस स्टोरीज थी
1: जी.
0: क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ा हो? और अगर ऐसा हुआ तो फेलियर का डर और फेलियर से उबरना, मतलब उस डर को पीछे छोड़ना या उस डर से बाहर निकलना, ये आपका तरीका क्या है इसके लिए?
1: एक कहीं मैंने ये बड़ी अच्छी चीज पढ़ी थी कि असफलता अंत नहीं होता, ये बस एक नया रास्ता दिखाना और उसका दिखाने का तरीका होता है
0: जी.
1: सो फेलियर्स तो बिल्कुल आए हैं लाइफ में, बहुत फेलियर्स है और वो जिंदगी ही क्या जहां पे फेलियर्स ना हो. लेकिन आपको लाइफ सिखाती है कि आप गिरिए, आप उठिए, आप अपने कपड़े झाड़िए, साफ कीजिए और आगे बढ़िए. ये जिंदगी है.
0: बहुत सुंदर.
1: तो आप जैसे बता पूछ रही हैं कि फेलियर्स काफी आए हैं, लेकिन हाँ इनिशियली एक जो सेटबैक लगता है आपको, एक थोड़ा सा धक्का सा लगता है, आपने उस पीरियड से जल्दी उबर जाना चाहिए. अगर आप उस फेज में ज्यादा दिन तक रहे या ज्यादा टाइम तक रहे, फिर वो फेलियर आपको खा जाएगा. एंड वही मेंटल टफनेस डिफेंस फोर्सेस हर एक इंसान को सिखाती है. रादर डिफेंस फोर्सेस तो सिखाती है, लेकिन एक संदेश जो मैं सबको देना चाहूंगी कि ये आपने खुद में भी डेवलप करना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे. जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके लाइफ में फेलियर्स तो आए हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उन फेलियर्स से उबर के आगे बढ़ना सीख लेते हैं वो एक्चुअल लाइफ है.
0: बिल्कुल. बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर. मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ थोड़ी देर भी बैठ जाता होगा ना प्रतीक्षा जी, वो एक बेहतर इंसान बनकर ही बाहर निकलता होगा. आई एम श्योर फॉर दैट, बिकॉज यू हैव सच पॉजिटिव वाइब्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आप में जो हर किसी को, जो भी आपके संपर्क में आता है उसको प्रेरित ही करता है, मोटिवेट ही करता है. अच्छा, आपकी इस जब भी हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आपकी सेवा काल के दौरान ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो और मोटिवेट किया हो?
1: इमोशनल किया हो
0: जी,
1: ऐसे तो काफी इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूंगी कि कुछ चीजें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, जो स्टार्ट किए हैं बहुत ज्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, और फिर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अलग अलग उसके रीजंस हैं. कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट सर्विस है, आपका बजट होता है, काफी सारी चीजें होती है. तो किसी भी रीजन के वजह से शायद वो आगे ना बढ़े, तो तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने, मतलब मेरे नजरिए से मैंने उसमें अपनी लाइफ झोंक दी थी, लेकिन अगर उसका जो आउटकम मैंने एक्सपेक्ट किया था वो अगर नहीं मिला तो बुरा तो लगता है
0: जी.
1: लेकिन ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड वही सेटबैक्स है जिसको आपको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ते चले जाना है.
0: इसी बात पर हम एक गाना सुनते हैं जो मोटिवेट भी करता है और इमोशनल भी कर देता है. केसरी फिल्म का गाना जो आपको बेहद पसंद है, संदेश टू सोल्जर्स में आज आप हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी के साथ.

0: संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ, और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी, जिनकी बातें ना केवल मोटिवेट करती हैं बल्कि सुनकर ऐसा लग रहा है, ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है कि आज ही एयरफोर्स ज्वाइन कर ली जाए। तो मेरे मन में जब ये विचार आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जितने युवा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनके मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रतीक्षा जी कि अगर युवा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, पहली बात, और दूसरा एफकैट और सीडीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपकी क्या सजेशन है युवाओं के लिए।
1: जी विनीता जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम, ये मंच उसी के लिए है ताकि हम जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो फौज ज्वाइन करना चाह रहे हैं हम उनको अच्छा संदेश दें ताकि वो ज्वाइन कर सके। सो तैयारी के हिसाब से देखिए, मैं एक चीज शुरुआत में कहना चाहूंगी कि अगर आपका लक्ष्य नौकरी है तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए सही जगह नहीं है, लेकिन अगर आपका सपना देश सेवा है हाँ, तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है।
0: ओके, आई गॉट दैट।
1: सो तैयारी के हिसाब से पहले तो पक्का आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि आपने ये चीजें सुनी होंगी कि फौज में पढ़ाई नहीं है, जबकि मैं बताना चाहूंगी फौज में बहुत ज्यादा पढ़ाई है, और जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं जो जनरल ब्रिगेडियर बन जाते हैं वो भी पढ़ाई करते रहते हैं। तो पढ़ाई का कोई पीछा नहीं छूटता है अगर आपने फौज ज्वाइन कर लिया, तो ये एक दिमाग में जरूर रखिए कि पढ़ाई तो रहेगी रहेगी। तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से आप अपना ट्वेल्थ पास कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आजकल जो अलग अलग तरीके के एग्जाम्स हैं, एफकैट है, जैसे एयरफोर्स के लिए एफकैट है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और तो इसमें इनिशियली आपके जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पे एग्जाम होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं या इंजीनियरिंग ब्रांच में आप आना चाहते हैं एयरफोर्स में, सो आपके इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं, प्लस थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान होता है उसके बारे में भी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेस में जा रहे हैं एंड उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक एग्जाम होता है। तो

0: ऑल इन ऑल पूरी तरीके से आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उससे आपका कोई निजात नहीं है. उसके अलावा एक आपको मेंटल टफनेस आपको खुद में करना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी. क्योंकि अगर आप मेंटली टफ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि इमोशनल लोगों की जगह नहीं है, नहीं, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं. आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप मेंटली टफ है तभी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे जो मोस्टली फिजिकल होती है. जो इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो ज्यादातर फिजिकल और कम पढ़ाई, और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तब उसमें ज्यादा पढ़ाई होती है. लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपकी कभी नहीं रुकती. मेरे लास्ट डे तक भी, जहां मैंने 14 साल कंप्लीट किए एयरफोर्स में, आखिरी दिन तक फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी. पीटी, परेड, रनिंग, जिससे मैं बहुत डरती थी, वो मैंने आखिरी दम तक किया है एयरफोर्स के, और अभी भी करती हूँ, और इसीलिए फिजिकली फिट रहती हूँ. तो ये कुछ प्रिपरेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको अगेन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा. आपकी लाइफ में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको खुद को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है. अगर आपने वो सपना देखा है तो आप वो सपना जिएंगे, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं. सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते.
1: कलाम साहब ने ये बात कही
0: जी,
1: बहुत सुंदर. और ये जो आपने एक संदेश दिया है सभी युवाओं को, मुझे लगता है कि हालांकि अभी बहुत कुछ मुझे आपसे बात करनी है, जानना है, लेकिन एक ये छोटा सा गाना मैं जरूर चलाना चाहूंगी आपकी इस बात पर
0: जी.
1: कि जब आप कह रहे हैं कि मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है एंड वाइस वर्सा, तो ये एक गीत सभी युवाओं के लिए प्रतीक्षा जी की तरफ से.

0: रेंजर्स का लास्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए, आपका यहां पर होना प्रतीक्षा जी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे आज हमसे संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रही हैं। बहुत कुछ सजेशंस उन्होंने दी, बहुत कुछ मोटिवेशन दिया, लेकिन एक बात जाने बगैर भला हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। आप स्वयं एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपने विशेष प्रयास किए हैं अपनी जगह बनाने के लिए। तो सेना में करियर बनाने के लिए युवतियों के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को तो सभी संदेश देते हैं, विशेष रूप से युवतियों को आप क्या कहना चाहती हैं?
1: युवतियों को मैं एक चीज जो मेरे जहन में बसी है और जो मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी, लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी। नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए, हर दुनिया में

0: लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए, ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी? नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए, हर दुनिया में हर फील्ड में लड़की है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे लड़की नहीं है, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वैसे ही मिलिट्री में भी, डिफेंस फोर्सेस में भी सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आप में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि हाँ, ये मैं करूंगी। देखिए, फेलियर्स तो आएंगे, वो
1: बिल्कुल
0: सबके लाइफ में आते हैं, वो जेंडर देख के नहीं आते हैं। सो फेलियर आते हैं, फेस इट, गिरिए, उठिए, कपड़े झाड़िए और चलते बनिए।
1: मुझे आपकी ये वाली बात तो बहुत ही पसंद आई है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता भी है, गिर भी पड़ते हैं तो भी रुकना नहीं है, कपड़े झाड़िए और आगे चलिए। तो सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, इस बात से डेफिनेटली प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, आप अब क्योंकि रिटायर हो चुकी हैं, क्या आपके लाइफ में रिटायरमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं क्या?
0: जी, सबसे बड़ा चेंज तो वो है, जो सुबह उठते से ही जो मैं यूनिफॉर्म पहनती थी, वो एक बहुत बड़ा चेंज है, और वो मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि रोज वो यूनिफॉर्म पहन के यूनिट जाते हैं, तो वो एक चीज मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। उसके अलावा देखिए, वर्क वाइज तो अभी भी मैं वर्किंग हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है आर्म फोर्सेस से, जितना मैं वहां अप्लाई कर सकती हूँ करती हूँ, तो कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन एक जो ऑरा होता है, और आजकल की जो जेंजी लैंग्वेज में कहते हैं वाइब, वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगती है, क्योंकि बाहर कॉरपोरेट में काफी लोग अकेले अकेले से काम करते हैं, जबकि डिफेंस फोर्सेस में इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। सो आई जेन्युइनली मिस दैट टीम वर्क एंड द वाइब ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
1: ओह स्वीट, ये जो वाइब आपने बताई है ना, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जब सब मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने आप वो काम भी बहुत अच्छा होता है, और एक वाइब तो पॉजिटिविटी की रहती ही है। अच्छा, महिला अधिकारियों के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या ऐसे अवसर हैं कि वो भी आपकी तरह अपने आप को एक प्राउड ऑफिसर कह सकती हैं?
0: पहली बात होगी, किसी चीज के लिए मना मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी चीज, कोई काम करने के लिए, और तब भी आप हाँ बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी को भापें,
1: जी
0: और किसी भी चीज के लिए मना मत कीजिए, किसी भी चीज से डरिए मत कि ये होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए आप काम करिए, और आप में वो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। तो वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो बाधाएं होती है, जो जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, वो हमारे दिमाग में होती है, बाहर कोई नहीं बना रहा हमारे लिए वो बाउंड्रीज, हम खुद ही बनाते हैं। तो अगर आपने वो बाउंड्रीज पार कर ली, आपने वो जो लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली, तो वर्ल्ड इज ऑन योर फिंगर टिप्स, आप दुनिया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत छोड़िए अपना।
1: तो आपको ये लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी, स्पेशली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, वो अगर कॉन्फिडेंस का गहना पहन ले तो उन्हें फिर किसी और गहने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
0: बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल वही गहना पहनना है हमने, और कोई पहने ना पहने, लेकिन कॉन्फिडेंस का गहना हमेशा होना चाहिए हमारे पास।
1: थैंक यू सो मच प्रतीक्षा ठाकरे जी, आज आप संदेश सोल्जर्स में आई हैं और आपने अपने इतने खूबसूरत अनुभव और उससे भी बढ़कर प्रेरक विचार हम सबके साथ बांटे हैं। मुझे लगता है कि डिफेंस फोर्सेस का इससे खूबसूरत उपहार हमारे श्रोताओं के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो समय निकालने के लिए आपका आभार, अपनी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका आभार, और चलते चलते एक सल्यूट तो आपके लिए बनता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए। आई होप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा आज यहाँ।
0: धन्यवाद विनीता जी, यहाँ पहली बात तो मुझे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए, और आखिरी में बस एक लाइन कहूंगी कि देश सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक ऑनर है, और जो ये ऑनर पा लेता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका, और दोस्तों सुनते रहिए

0: संदेश टू सोल्जर्स, हम सभी दिल से सलाम करते हैं अपने सोल्जर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से प्रतीक्षा ठाकरे जी का। धन्यवाद। जय हिंद।
1: जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: स्टे ट्यून्ड टू 100.7
2: नमस्कार आकाशवाणी
1: लखनऊ की।
3: नमस्कार, शाम के बजे हैं 5। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि धान का समर्थन मूल्य 2,369 रुपये से बढ़ाकर 2,441 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देशभर में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिमी एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देशभर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है और किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति में कमी की कोई सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं और एलपीजी कनेक्टिविटी में भी वृद्धि हुई है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज बरेली में नाथ कॉरिडोर में कराए जा रहे विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से पर्यटन को प्रदेश में नई ऊर्जा मिल रही है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ईंधन बचाने की अपील पर कहा कि ये राष्ट्रीय हित का मामला है और राष्ट्रीय हित के कामों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। रेलवे ने कानपुर गंगा नदी के पुल पर गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा कर लिया है। इस कारण आज से प्रतिदिन 8 घंटे के मेगा ब्लॉक को समाप्त कर दिया गया है। रेलवे ने 2 अप्रैल से 13 मई तक कार्य के चलते सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक कानपुर से लखनऊ आने वाली डाउन लाइन का मेगा ब्लॉक लिया था। इस कारण मुंबई, पुणे, झांसी व आगरा सहित कई रूटों से आने वाली ट्रेनों को कानपुर में निरस्त कर दिया गया था। कुछ ट्रेनों को प्रयागराज होकर सीधे रवाना किया जा रहा था। शताब्दी एक्सप्रेस मुरादाबाद के रास्ते प्रतिदिन लगभग 2 घंटे की देरी से आ रही थी। अम्बेडकर नगर के सभी 899 ग्राम पंचायतों में पर्यावरण और उससे जुड़े मामलों को लेकर कल सुबह 9 से 10 बजे तक ग्रीन चौपाल का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने जिले के सभी ग्राम प्रधानों से ग्रीन चौपाल के सफल आयोजन की अपील की है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। अगला बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबोज घंटे तरन्नुम के साथ।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: वेल, 5:03 हो चुके हैं। प्रोग्राम टॉप 10 लेकर हाजिर है तरन्नुम, लेकिन आज टॉप 10 में पूरे 10 गाने अब तक हम नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि पहुंचाएंगे

बहुत ही खूबसूरत सी वार्ता जिसे की है प्रवीण कुमार ने और है वरिष्ठ पत्रकार शैलेश शुक्ला। लेकिन कुछ ही देर में, उससे पहले कुछ ऐसे ट्रैक हम आप तक पहुंचाएंगे जो अपने जमाने में काफी हिट हुए, काफी नाम किया और हर गली, हर मोबाइल, हर मोहल्ले में वो सुनाई दिए, जिसमें से है नंबर 1 पे ये ट्रैक।

जी हाँ, इस ट्रैक ने तो भाई आपके जो पैर है ना उनको थिरकने पे मजबूर कर दिया होगा, लेकिन नेक्स्ट जो ट्रैक है जो कुछ ही देर में आप तक पहुंचने वाला है, इसमें जो आवाज है वो है सोनू निगम की और अलका याग्निक की, और स्क्रीन पर इस गाने की एनर्जी को और भी खास बनाया था ऋतिक रोशन और करीना कपूर खान ने। अब अगर हम इस गाने की बात करें तो सिर्फ एक सॉन्ग नहीं था बल्कि

2000s की यादों का एक कलरफुल पैकेज है, डांस, रोमांस और फुल मस्ती का साथ। जब भी ये ट्रैक बजता है, फीट ऑटोमेटिकली डांस फ्लोर की तरफ चल पड़ते हैं। तो बस क्या कहें, आप अपने मूड को करिए रिफ्रेश और एंजॉय कीजिए ये धमाकेदार ट्रैक। ट्रैक कौन सा है, प्ले करते हैं, सुनिए।

0: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
1: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
2: जोर का झटका है जोरों से लगा।
0: अंदाज है सबसे निराला,
1: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
0: ओ गॉड, स्टे ट्यून्ड टू चैनल सतरंगी रे।

और अब आप तक जो नेक्स्ट सॉन्ग पहुंचने वाला है, और क्योंकि 2000 जब सन आया था और ये जो गाने थे ये उस दौर के क्या सुपरहिट गाने हुआ करते थे, मतलब हर इंसान इसमें बस डूबा नजर आता था। और जैसे ही ये गाने सुनाई देते थे तो लोग बस एकदम कह सकते हैं ना, थोड़े सेंटी हो जाते थे। और कुछ गाने ऐसे थे, सच में ऐसे थे कि जिनकी म्यूजिक पे काम किया गया था, जिनके अल्फाजों पे काम किया गया था, जिनका पिक्चराइजेशन पे काम किया गया था, मतलब एकदम फुल डोज जिसे कह सकते हैं वो पेश किया गया था। और अब जिस गाने की हम फरमाइश, मतलब आपने नहीं की है, दिल से मेरी फरमाइश थी कि ये ट्रैक हम आप तक पहुँचाएँ, और वो ट्रैक ऐसा जिसे अपनी एनर्जेटिक म्यूजिक और क्यूट केमिस्ट्री की वजह से फैंस ने बहुत प्यार दिया। इस गाने की मस्ती, रोमांस और कैची बीट्स आज भी प्लेलिस्ट को फ्रेश बना देते हैं। तो अगर आप भी किसी की यादों में हल्का सा खो गए हैं या चुपके से किसी को अपना दिल दे बैठे हैं, तो फिर ये जो नेक्स्ट ट्रैक है ना, ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यस, दिल डूबा फ्रॉम द मूवी खाकी।

और आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे पत्रकार से वार्ता यानी रोंदेवू के अंतर्गत वरिष्ठ पत्रकार शैलेश शुक्ला से प्रवीण कुमार की बातचीत। सुनते रहिए द हार्टबीट ऑफ लखनऊ।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में। मैं हूं प्रवीण। इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं पत्रकारिता की दुनिया, उसकी चुनौतियों और समाज में उसकी भूमिका के बारे में। दोस्तों, हम रोज खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं और टीवी पर देखते भी हैं, अब तो न्यूज पोर्टल पर भी देखते हैं। पत्रकार के पीछे का संघर्ष क्या है? समाचारों के चयन के दौरान उनके दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है? कैसे कुछ खबरों को लेते हैं जबकि शेष को छोड़ देते हैं? यह सब होता कैसे है? न्यूज पोर्टल में खबरों का चयन किस आधार पर किया जाता है? ऐसे तमाम प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं हम कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में। साथ ही कुछ समसामयिक मुद्दों पर उनके विचार भी जानने की कोशिश करते हैं। तो पत्रकार से संवाद के इस अंक में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शैलेश शुक्ला जी, स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद प्रवीण जी।
0: श्रोताओं, आपको बताते चले कि शैलेश जी करीब 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और फिलहाल एक अग्रणी न्यूज पोर्टल में कार्यरत हैं। तो शैलेश जी, सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि पत्रकारिता के इस दुनिया में कदम रखने का वह पहला विचार या प्रेरणा कहाँ से आई? बचपन का सपना था या किसी खास घटना का असर?
1: मैं कारगिल युद्ध के समय पे मुझे जो है काफी कुछ रुचि जगी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को पढ़ने और उनके बारे में जानने, डिफेंस से जुड़ी हुई खबरों को समझने, और उससे मैं काफी प्रेरित हुआ। फिर मैं इलाहाबाद आया और यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया और पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई करना शुरू किया। इस बीच में मैं करीब 5-6 साल लगातार पेपर पढ़ता रहा और पेपर से मेरी जो जुड़ाव है वो बहुत ही गहरा हो गया। मुद्दों को समझना, उनके बारे में तर्क वितर्क करना, एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करना, आकाशवाणी और दूरदर्शन के जो समाचार आते थे उनको सुनना काफी पसंद करने लगा। तो जब मैं इलाहाबाद आया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपने एक फ्रेशर्स के कार्यक्रम में मैंने न्यूज पढ़ी, जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से समाज में न्यूज दिखाया जा रहा है। उस समय न्यूज के नाम पर ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जाती थी और अंदर कुछ और रहता था, तो काफी मतलब वो एक हास्य न्यूज था और उसको काफी लोगों ने पसंद किया। तो मेरे अंदर वहां से प्रेरणा जगी कि क्यों ना मैं, समाज में पत्रकारों के प्रति एक गलत भावना बन रही है, ब्रेकिंग न्यूज के नाम पे कुछ भी गलत दे दिया जाता है, तो मैं उसको सुधारूं और एक जो पढ़े लिखे तबके है उसको टारगेट करने की कोशिश करूं। और इसीलिए मैंने जो है पत्रकारिता की पढ़ाई किया मखलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से, फिर मैंने अपने करियर की शुरुआत की।
0: जी, यानी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म ने आपको पत्रकारिता की ओर आकर्षित किया।
1: जी,
0: तो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई?
1: मेरी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर जिले से हुई है, वहाँ पे मेरा गाँव है बिलकथुआ, और मेरे पिता जो है वो टीचर है, अभी वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने काफी मुझे प्रेरित किया पढ़ाई लिखाई के प्रति। मेरे दादाजी जो है वो आकाशवाणी पे आ चुके हैं, 1960 के दशक में मेरे खेती के कार्यक्रम को आकाशवाणी ने उसको कवर किया था। मतलब लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने की हमेशा से जो है वो ललक रही थी और मैंने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया। फिर इलाहाबाद जब आया तो वहां पे जो है मेरे अंदर थोड़ा पत्रकारिता की तरफ रुझान बढ़ता गया, इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई किया, फिर मैंने उसके बाद एमजे किया, मास्टर इन जर्नलिज्म किया, और फिर मैंने अपने करियर को आगे बढ़ाया। और इसके बाद से लगातार मेरा जो रुझान रहा वो विदेश की खबरों पे ज्यादा रहा। इसके बीच में मैं कुछ दिनों तक यूपी की खबरों पे फोकस किया, मैं बनारस में रहा, पेपर में ज्वाइन किया वाराणसी में, वहां पे मैं सिटी डेस्क पे था, उसके बाद मैं फ्रंट पेज पे आया, मुझे वो काफी पसंद आया। ये जो दौर था पूरा 2009 से लेकर 2017 तक का गोल्डन पीरियड था वेबसाइट्स के लिए, लोगों के पास नए नए मोबाइल फोन आ रहे थे, डाटा का दाम था वो भी काफी कम हो गया, तो लोग मोबाइल पे न्यूज पढ़ना शुरू किए, तुरंत न्यूज मिलने लगी लोगों को, तो ये मुझे काफी अच्छा लगता था। जब मैं बनारस में आया तो यहाँ मुझे सबसे अच्छा जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि अवसर मिला वो चुनावी कवरेज था, वो करने को मिला। 2013 में पहली रैली कवर किया भदोही के पास में हुई थी और वहां से मेरे अंदर जो है एक जुनून आया कि क्यों ना मैं इस पत्रकारिता को अपने और आगे बढ़ाऊं। और उसके बाद मैंने पूर्वांचल के कई जिलों में जो है रैली कवर की और वो सारी चीजें मैंने अपनी वेबसाइट को दिया, और उस इनपुट का असर ये रहा कि कई बार मुझे अप्रिसिएशन भी दिया गया मेरे संपादक के जरिए, मेरे जनरल मैनेजर के जरिए। ये मेरे लिए प्रेरणादायक रहा और फिर मैंने और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की।
0: बिल्कुल, यानी करियर की शुरुआत तो आपकी हो गई इस तरह से जैसा कि आपने बताया, लेकिन क्या आपको आज भी वह अपनी पहली स्टोरी याद है जिसने आपको एक नई पहचान दी या पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको एस्टेब्लिश किया?
1: एक चीज हुई थी, अभी पूरा जो मीडिया है वो एक्स यानी कि पहले का जो ट्विटर है उससे काफी खबरें बना रहा है। साल 2009 में 10 में करीब मेरे एडिटर थे उस समय, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं रिएक्शन आ रहे हैं उस पे न्यूज बनाना शुरू करूं। तो उससे क्या हुआ, मेरे अंदर न्यूज

0: समझ डेवलप हुई। हमारे उस समय के जो पॉलिटिकल एडिटर थे उन्होंने मुझे काफी प्रेरित किया, उनकी कॉपियां पढ़ता, उन्होंने मेरी कॉपियों को काफी पढ़ा, तो मुझे काफी प्रेरित किया कि ऐसे खबरों को पेश किया जाए और उनमें एंगल क्या हो और 5W1H का ध्यान रखना, ऑथेंटिसिटी का भी ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी था। उससे जो मुझे न्यूज को सूंघने की जो आदत थी वो मेरे अंदर आ गई और आज भी मैं जो है दुनिया के 20 से 25 न्यूज पेपर्स को पढ़ता हूँ, 4 से 5 बड़ी जो न्यूज एजेंसीज हैं उनकी न्यूज को देखता रहता हूँ और अभी मैं पिछले 6 साल से करीब मैं विदेश डेस्क का प्रभारी हूँ ऑनलाइन में। और जो ट्रेनिंग हुई और वो जो मैंने खबरें बनाई उसका मुझे बहुत फायदा होता है। मैं एक मिनट में समझ लेता हूँ कि किस खबर में मुझे क्या चीजें उठानी है, किस चीज पे एंगल पे फोकस करना है, जनता के लिए क्या जरूरी है, भारत के लिए क्या जरूरी है। तो ये चीजें मुझे जो है उस समय से सीखने को मिली और आज भी उसका मुझे लाभ मिलता है।
1: बिल्कुल, आपने जैसा कि बताया कि विदेश से जुड़े हुए खबरों को बनाना या उसकी स्टोरी को बनाना आपको ज्यादा पसंद है, तो ये खबरें को लेने का स्रोत क्या होता है, कैसे आप उनको एस्टेब्लिश करते हैं कि सत्य हैं या असत्य हैं, विशेष करके आज के युग में जब कई सारे फेक न्यूज चल रहे हैं।
0: प्रवीण जी, ये जो दौर चल रहा है ये डीप फेक का दौर आ गया है। अब इसमें यह है कि आदमी का वीडियो बना करके, उसकी वॉइस भी बना करके एक नकली वीडियो बना दिया जा रहा है, पता ही नहीं चल पाता जो सामने वाला देख रहा है असली है या नकली है। इसी वजह से हम लोगों ने ट्रेनिंग किया जिसमें फेक न्यूज की, उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें बताई कि किस तरीके से फेक न्यूज को पहचाना जा सकता है। और जहां तक रही बात सोर्सेस की, तो हमारे सोर्स जो हैं उनमें न्यूज एजेंसी है, जैसे जो न्यूज एजेंसी हैं ये हमें काफी खबरें देती रहती हैं, तो हर देश का जो मीडिया है वो लगातार हमें खबरें देता रहता है और हमें उसको पहचानना कि हमारे एंगल से क्या जरूरी है, भारत के लिए क्या जरूरी है, एक लार्जर ऑडियंस है वो क्या पढ़ना चाह रही है। तो ये जो एजेंसियां हैं ये बहुत ही ऑथेंटिक खबरें देती हैं और हम इसको लेने के बाद भी एक दो बार क्रॉस चेक करते हैं दूसरी एजेंसियों पे, उनको देखते हैं कि ये क्या दे रही हैं। तो जो हमारा सोर्स होता है वो बहुत ही कोशिश करते हैं कि उसको ऑथेंटिक रखा जाए। तीसरा स्रोत ये होता है कि जैसे आज दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं तो ये अपनी बात खुद ही जो है लिखते रहते हैं, हम वहां से सीधा उनका इनपुट उठाते हैं और जो भी बातचीत रहती है या जो भी उनका बयान रहता है हम वहां से लेते हैं। तो जो ऑथेंटिक सूचना है वो जनता तक पहुंचती है। साथ ही साथ हमारी कोशिश ये रहती है जो भी किसी नेता का बयान है उसके पीछे की क्या कहानी है, लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, भारत पे क्या असर पड़ेगा, इन सब मुद्दों को अपने पाठकों को हम बताते हैं, जिससे क्या है कि एक कंप्लीट नॉलेज है वो हमारे पाठकों को मिलती है और उनको वैश्विक मामलों की एक समझ डेवलप होती है।
1: बिल्कुल, यह तो बात होगी पत्रकारिता की, और क्या आपकी निजी रुचि है?
0: मुझे जो है वो पढ़ना और पढ़ाना काफी पसंद है। मुझे मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि अपने वीडियोस के जरिए जो बड़े मुद्दे रहते हैं मैं लोगों को समझाऊं कि क्या है और उसके पीछे की क्या कहानी है। इसके अलावा मुझे गाने सुनने भी पसंद है तो मैं कई बार गाने भी सुनता रहता हूँ।
1: बिल्कुल, तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: मुझे काफी पसंद है कहीं दूर जब दिन ढल जाए, मैं इसको सुनना पसंद करता हूँ।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में। और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शैलेश जी। हम पत्रकारिता और इससे जुड़े सरोकारों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन दिनों जो पत्रकारिता की बात करें तो अच्छी खबर लिखने के लिए भाषा पे पकड़ बेहद जरूरी होता है, विशेष करके जब आप अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देख करके लिख रहे हों, उनके बेस पे लिख रहे हों, तो भाषा पे पकड़ के लिए आप क्या कुछ किया?
1: देखिए, जो भाषा है उसको समझना आज के समय में बहुत जरूरी है। कई बार चीजें कही जा रही हैं और उसके पीछे का मतलब बहुत कुछ दूसरा होता है। तस्वीर से जो भाषा है इसको आपको समझ के लिखना पड़ेगा। दूसरा ये है अंग्रेजी, अगर आप हिंदी में पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको अंग्रेजी पे अच्छी पकड़ रखनी ही पड़ेगी, चाहे वो आप स्थानीय स्तर पे कर रहे हों या आप वैश्विक स्तर पे पत्रकारिता कर रहे हों। तो भाषा की समझ जो है वो आपको मदद करती है। किसी विषय पे मान लीजिए आप स्थानीय स्तर प्रदूषण पे खबर लिखनी है तो आप उसके बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे तो अच्छी जानकारी आपको इंटरनेट पे अंग्रेजी में काफी मिल जाएगी। तो आप उसको जब समझ पाएंगे तभी आप प्रदूषण के बारे में खबर लिख पाएंगे कि ये प्रदूषण क्या है और इसका क्या असर पड़ता है, किसी एक्सपर्ट का कोट डाल सकते हैं। तो भाषा जो है आना जरूरी है। अभी जो नई पीढ़ी आ रही है उसके साथ दिक्कत ये आ रही है कि वो भाषा पे फोकस नहीं कर रहे हैं, उनको हिंदी में टाइपिंग नहीं आती है, तो ये दिक्कतें हैं। अगर कोई नया आना चाह रहा है इस पत्रकारिता के क्षेत्र में, वो भी खासकर हिंदी की पत्रकारिता में, तो उसको हिंदी में कम से कम लिखना आना चाहिए, उसमें टाइपिंग करना आना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा कि एक और पहलू ये है कि ऐसी भाषा लिखी जाए जो आम जन के बोल

0: चाल की भाषा हो जिसमें सब लोग समझ सके, चाहे वो जनरेशन जेड का आदमी हो और वो चाहे आपके बुजुर्ग हो, सब उस भाषा को समझ सके। तो ऐसी भाषा का हमें इस्तेमाल करना चाहिए जो सबको समझ में आए और जनता उसको इस्तेमाल कर रही हो। हमारी हिंदी जो है वो कई तरीके की बोलियों में बटी हुई है। बिहार में कुछ और तरीके की भाषा है, राजस्थान में कुछ और है, पता लगा कि हरियाणा में कुछ और तरीके से बोला जा रहा है। हमें लार्जर ऑडियंस के लिए अगर खबर लिखनी है या बोलना है तो उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो सभी लोग बोलते हैं, मानकों के हिसाब से हो।
1: तो भाषा को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए?
0: मेरा मानना है कि किताबें पढ़नी चाहिए और अच्छे जो लेखक हैं उनकी किताबों से आपको ऐसी चीजें पढ़ने को मिलेंगी कि जो आपकी कमियों को दूर करेंगी, आपके शब्द भंडार को बढ़ाएंगी और आपको एक नया पर्सपेक्टिव देंगी कि किसी भी मुद्दे को किस तरीके से पेश किया जा सकता है। तो किताबों को पढ़ना, साथ ही साथ आकाशवाणी है इसमें मैं देखता हूँ कि हिंदी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से कोई भी न्यूज दी जाती है तो उसमें हिंदी बहुत ही अच्छी होती है, तो एक जो मानक हिंदी है उसका आकाशवाणी में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको अपनी हिंदी सुधारनी है तो आकाशवाणी को सुनना चाहिए, किताबों को पढ़ना चाहिए, अखबारों को पढ़ना चाहिए, इससे आपकी समझ विकसित होती है।
1: बिल्कुल, आज के डिजिटल युग में खबरें बिल्कुल एक क्लिक पे उपलब्ध हैं, लेकिन जब आपने पत्रकारिता की शुरुआत की थी कैसा बदलाव देखते हैं उस दौर की पत्रकारिता और इस दौर की पत्रकारिता में?
0: देखिए, उस समय जो है जब मैंने करियर शुरू किया 2009 के आसपास, तो उस समय जो न्यूज एजेंसीज होती हैं या रिपोर्टर होते थे यही जो है खबरों के स्रोत होते थे। ये अब जो दौर आया है अब खबरों के बहुत सारे स्रोत हो गए हैं। आप देखिए ट्रेन में ऐसे ऐसे वीडियो आ जाते हैं जो आपको लगता ही नहीं कि ये किसी पत्रकार ने शूट किया है या किसी आम आदमी ने। इसी को कहा जा रहा है एक सिटीजन जर्नलिज्म जो है वो बढ़ रहा है। ये जो 2009 से 2026 का मैं जो देख रहा हूँ इसमें क्या हो रहा है कि मिसयूज भी हो रहा है और अच्छा भी हो रहा है। इससे क्या है कि सूचनाएं लोकतांत्रिक हो गई हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस का कार्टेल था कि कुछ खबरों को दबा दिया जाता था, कुछ खबरों को वो अपने हिसाब से पेश करते थे, लेकिन अब जो ये नया दौर आया है इसमें आप देखिए यूट्यूब पे या एक्स पे या फेसबुक पे हर आदमी अपने विचार व्यक्त कर रहा है। तो इस तरीके के जो फर्जी सूचनाएं हैं इनकी एक बाढ़ सी आ गई है। तो जनता के पास कचरा वाली नॉलेज जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि जो ये नया दौर है ये खतरनाक भी है और अच्छा भी है।
1: यानी कहीं ना कहीं व्यूज के लिए भी ऐसा किया जाता है
0: जी,
1: लेकिन कई बार ये भी देखने में आ रहा है कि युवा पीढ़ी में पढ़ने और सुनने की आदतें बदल रही हैं। उन्हें समाचारों से जोड़े रखने के लिए, ऑथेंटिक खबरों से जोड़ने के लिए क्या कुछ हमारे चैनल या अखबार या फिर आपके न्यूज पोर्टल क्या कुछ खास कर रहे हैं?
0: देखिए ये चीजें हम लोग भी फेस कर रहे हैं और अब हमारा मुकाबला हर आदमी से होता है। अब कोई फर्जी सूचना दे दे रहा है उसको बहुत सारे व्यूज मिल जाते हैं और पैसे भी मिल जाते हैं। अभी जो नए कोर अपडेट आए हैं उसके हिसाब से ऑथेंटिक वेबसाइटों को आगे बढ़ाना शुरू किया है जो सही सूचनाएं दे रही थी। और हमारे स्तर पे ये प्रयास हो रहा है जो डिजिटल मीडिया है ऑथेंटिक वेबसाइट्स के जो है वो पेजेज जो होते हैं उनको वेरीफाइड कराया जा रहा है और उनसे ऑथेंटिक सूचनाओं को दिया जा रहा है। हर खबर को 2 से 3 बार उसको चेक किया जाता है। वेबसाइट्स आ गई हैं जो फर्जी सूचनाओं को प्रसार पे तुरंत काम कर रही है। अगर कोई सूचना ऐसी आ रही है तो उस पे तुरंत लोग फैक्ट चेक कर रहे हैं।
1: बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले एक और गाना सुनना चाहेंगे।
0: मुझे थोड़ा देशभक्ति के गाने भी काफी पसंद है तो मैं एक गाना सुनना चाहूंगा, ऐ जाते हुए लम्हों। ये गाना मुझे काफी पसंद है।

0: से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में। मैं हूं प्रवीण और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शैलेश शुक्ला जी, और हम बातें कर रहे हैं पत्रकारिता और इससे जुड़े सरोकारों के बारे में। तो शैलेश जी, पत्रकारिता में कई सारे बदलाव आ रहे हैं, AI का क्या प्रभाव देखते हैं?
1: देखिए, AI जो है वो काफी कुछ बदलने जा रहा है, और मैं जनता से या श्रोताओं से भी कहूंगा कि AI को लेकर के थोड़ा सजग रहें और खुद को AI के लिए तैयार करें। स्थिति ये है कि मीडिया हो या IT सेक्टर हो या कोई ऐसा समाज का सेक्टर नहीं बच रहा है जहां पर AI का असर नहीं आ रहा है। AI जो है वो पत्रकारिता में कई तरीके से प्रभाव डाल रहा है। जैसे पहले जो डिजिटल पत्रकारिता में हम लोग खबरें बनाते थे, उनको प्रसारित किया जाता था, और पहले जो सूचनाएं हम लोग देते थे या जो भी खबरें हम देते थे उसको गूगल पे लोग सर्च करके पढ़ते थे, अब वो चीजें खत्म हो रही। AI से जो सूचनाएं हैं उनके लिए कोई भी खबर आती है तो हमें रिसर्च करना काफी आसान हो गया है। ये फायदा हुआ है। अगर आपको मान लीजिए कोई भी विषय पे सर्च करते थे, पहले 4 से 5 वेबसाइटों को पढ़ना होता था, अब ऐसा नहीं है। AI से आप वीडियो

0: ये जो सूचनाएं हैं उनके लिए कोई भी खबर आती है तो हमें रिसर्च करना काफी आसान हो गया है, ये फायदा हुआ है। अगर आपको मान लीजिए कोई भी विषय पे सर्च करते थे पहले 4 से 5 वेबसाइटों को पढ़ना होता था, अब ऐसा नहीं है। AI से आप वीडियो भी बनवा सकते हैं, आप AI से फोटो जनरेट करवा सकते हैं, AI से आप वॉइस भी बनवा सकते हैं किसी भी चीज का। तो इसका बहुत तेजी से इस्तेमाल मीडिया में होने लगा है। AI एंकर आ गए हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल जो है AI एंकर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मीडिया आने वाले 2-3 सालों में काफी बदलने जा रहा है। मेन चीज रहेगा कि आपका ब्रांड कितना मजबूत। अभी भी आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं जो न्यूज देते थे, पहले वो केवल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, अब उन्होंने यूट्यूब पे बकायदा अपना चैनल बना लिया है और लोगों को सूचनाएं दे रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, ये ह्यूमंस को खत्म नहीं कर पाएगा। हमें अपने आप को ऑथेंटिक सूचनाओं पे, ऑथेंटिक स्टोरीज पे काम करना पड़ेगा। तो अब जो जमाना आएगा पत्रकारिता का, उसमें आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, और जो डेस्क वर्क करते थे उनके लिए भी अब ये रहेगा कि उनको अपनी जो तार्किक क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा कि कोई सूचना उनके पास आ रही है तो उसका असर क्या होगा और उसके पीछे की क्या कहानी है, ये सब बताना आना चाहिए।
1: बिल्कुल, जो कि सिर्फ मानव ही कर सकता है। AI एक हमारे मददगार हो सकता है, लेकिन पूरे एंगल को समझना, उसके बैकग्राउंड को समझना और लोगों के हित में क्या हो सकती है सूचना, उसे सिलेक्ट करने का काम सिर्फ मानव ही कर सकता है। वह खबर जिसे कवर करना आपका सपना हो, वैसे तो आपने बहुत सारे खबरें कवर की हैं।
0: मौका मिले तो मैं एक बार अपने विदेश मंत्री का इंटरव्यू करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि उनका जो एक पर्सपेक्टिव था पिछले 4 से 5 सालों में, जो भी उन्होंने बातें कही उसका पूरी दुनिया में असर हुआ। वो एक ऐसे नेता उभरे जिन्होंने इंडिया का जो ब्रांड था उसको काफी आगे बढ़ाया। हम जहां भी वैश्विक मंचों पे देखते हैं वो बहुत ही सटीक तरीके से और फैक्ट के साथ जवाब देते हैं, और अगर कभी भविष्य में मौका मिलेगा तो मैं उनका इंटरव्यू जरूर करना चाहूंगा।
1: जी, चलते चलते जानना चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी जो पत्रकारिता को अपना करियर बनाना चाहती है या जो लोग सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन में सक्रिय हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा?
0: देखिए, मुझे जो लगता है गिग वर्क्स को बढ़ावा मिलेगा। किसी भी पत्रकार को अब वर्सटाइल होना पड़ेगा, उसको एडिटिंग भी आना चाहिए, उसको न्यूज कवरेज भी आना चाहिए और उसको वॉइस ओवर भी आना चाहिए, उसको हर तरीके से पारंगत होना पड़ेगा, तभी वो आने वाले दौर में खुद को जो है प्रासंगिक बना पाएगा। और दूसरा ये कि मुद्दों की समझ बहुत जरूरी है। आज जो जमाना आ रहा है उसमें पढ़ने लिखने वाले लोग कम होते जा रहे हैं, वो बस केवल चाहते हैं कि फटाफट उनको जो है सफलता मिल जाए, जबकि ऐसा नहीं है। हमें किसी भी सफलता को हासिल करने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। चीजों को जब आप समय देंगे तो मुद्दों को समझ पाएंगे, आप उसको अच्छे तरीके से पेश कर पाएंगे। आप कुछ समय के लिए हो सकता है वायरल हो जाएं, लेकिन अगर लंबे समय तक काम करना है तो आपको एक पत्रकारिता का जो बेसिक वसूल है 5W1H, उनको आपको याद रखना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, आपने आकाशवाणी के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी प्रवीण जी, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। मैं आकाशवाणी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: श्रोताओं, आज के इस अंक में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक और पत्रकार से, जानेंगे उनके अनुभव और विचार। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।

नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे पूरा कराने का निर्देश दिया है, जिससे मुआवजा जारी किया जा सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए। सभी जिलों को हर 3 घंटे में स्थिति का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्प अवधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि देश में कहीं भी कोई आपदा आए या आने के संकेत मिले, तब NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना उसके लिए गर्व की बात है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपदा के समय NDRF, SDRF, पंचायतों, राज्य निकायों, NCC, NSS और हजारों आपदा मित्रों के प्रयासों की भी सराहना की है। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील के क्रम में आज अपने सरकारी आवास से विधानसभा स्थित कार्यालय तक साइकिल से पहुंचे। श्री खन्ना ने कहा कि डीजल एवं पेट्रोल जैसे ईंधनों की बचत करना प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीय दायित्व है, क्योंकि देश में लगभग 85-86% पेट्रोलियम उत्पादों का आयात विदेशों से करना पड़ता है, जिस पर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय होती है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि अभ्यर्थियों एवं विभिन्न संस्थाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि को 17 मई 2026 तक के लिए पुनः विस्तारित किया गया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। संत रहिए FM रेनबोज़ घंटे तरन्नुम के साथ।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: जाने वो कैसे मुकद्दर की किताब लिख देता है, जाने वो कैसे मुकद्दर की किताब लिख देता है, सांसें गिनती की और ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है। उनसियत का सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। 6:04 प्रोग्राम शाम आवर तरन्नुम में आपके साथ सुनते रहे।

अक्सर ऐसा होता है जब हम रिलैक्स में मूड में होते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, तो भैया आप रजनीगंधा सुनिए ना, आंखें बंद कीजिए, रजनीगंधा सुनिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, आज भी रजनीगंधा आएगा आप तक। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग रजनीगंधा भी सुन रहे हैं और साथ ही साथ फ़ोन भी चला रहे हैं, आंखें हैं तो बेचारी थक जाती हैं। अब सुबह से आप उठे हुए हैं और रात में भी आप 1-2-3 बजे तक फ़ोन लिए बैठे हैं, तो सांवरे से बांवरे से जो नैना है आपके, ये थक नहीं जाएंगे, बताइए। ऐसे में क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस बदलते हुए मौसम में आपको नींद लाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपको रिलैक्स करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर एक छोटी सी आपको टिप बताएं, अगर एक बिल्कुल छोटा सा, तो धागा मिश्री होती है और सौंफ होती है, मोटी सौंफ भी चलेगी और महीन वाली सौंफ भी आपके पास चलेगी। अगर आप उसको एक पाउडर बना के ले लीजिए, नहीं तो आप ऐसे खा लीजिए। अक्सर आपने देखा होगा जब हम किसी होटल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपको देखिए कि वो एक पतला सा चमचा रखे होते हैं, स्पून होता है, उसमें आपको मिश्री और सौंफ बार बार इंडिकेट करता है कि भाई ये सब चीज़ें खा लो, ये सब चीज़ें छोड़ दो जो और चीज़ें लोग खाते रहते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और आजकल के बदलते हुए मौसम में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लें, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको अगर हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें, तो ये जो बीमारियां हैं ये बहुत दूर जा सकती हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई ये गर्मी आ रही है, ऐसे में शरबत अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, उसको पी लेते हैं, फ्रिज में गया ठंडा ठंडा पानी पी लिया, लेकिन जो ठंडी तासीर वाली चीज़ें हैं उनको हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना। देखिए सौंफ की बात की, इसकी जो तासीर होती है यानी जो इसकी क्वालिटी होती है वो ठंडक देना होता है हमारी शरीर को, हमारी बॉडी को। दूसरी चीज़ क्या है कि शरबत में अगर हम बात करें, बेल का शरबत, यानी गर्मियों में जितनी भी पेट से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, कब्ज़ होता है, एसिडिटी होती है और मोशन होते हैं, लूज मोशन होते हैं, और पेट की गर्मी के लिए रामबाण है ये बेल का शरबत। और अगर आप इसको लेते हैं, रोज़ लेते हैं, तो लू से आप बचे रहते हैं, हाइड्रेटेड रहते हैं, आपका जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल रहता है और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। और अगर आप रोज़ इसका इस्तेमाल करेंगे तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। बहुत महंगा नहीं है, घर में आप इसको ला के बना सकते हैं। बच्चों के सामने जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, बच्चे जब ये सब देखेंगे, तो पर ये बात एक कहानी नहीं बन जाएगी। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि भाई ये बेल का शरबत क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है। बच्चे आपसे ये सवाल नहीं करेंगे, बल्कि बच्चे ये कहेंगे कि भाई अगर आप शरबत पी रहे हैं बेल का, तो फिर हमें भी दीजिए एक गिलास। फिलहाल एक ट्रैक आप तक।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: दिल दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है।
3: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
4: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
3: ओनली 100.7 FM रेनबो।

0: और झुमका।
1: अब देखिए लोग कहते हैं कि भाई एक जिंदगी है, क्या है जिंदगी कट जाएगी, अरे अब बहुत कट गई जिंदगी, इतनी सी बाकी है जिंदगी वो भी कट जाएगी, अब क्या करना है, ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन भाई जिंदगी है तो जिंदगी के साथ कम से कम 100 झमेले हैं। 100 झमेले का मतलब ये है कि भाई खाना भी खाना है, अब लाइट है तो लाइट भी जलानी है, लाइट का बिल भी देना है, खाना खरीद के लाना है, खरीदने के लिए पैसे चाहिए हैं, पैसे के लिए मेहनत करनी है, मेहनत के लिए क्या करना है कि आपको इधर उधर हाथ पैर जो कहते हैं ना लोग मारते हैं वो सारी चीज़ें करनी है, यानी मेहनत मशक्क़त से जो पैसे मिलते हैं ना उसमें जो बरकत होती है, उसमें जो कह सकते हैं कि एक ख़ास बात होती है, वो आपको ऐसे ही कोई पैसे दे दे, मतलब आप रोज़ किसी के दरवाजे पे खड़े भैया 200 रुपये दे दो, भैया 1000 रुपये दे दो, एक बार दो बार कोई दे देगा लेकिन बार बार अगर आप किसी से मांगते हैं या एक बार भी अगर आपने मांग लिया तो ये जो मांग है ना ये फिर हमेशा बढ़ती चली जाती है। इसलिए क्यों ना भाई ऐसा किया जाए कि आप खुद कुछ मेहनत कीजिए, खुद कुछ ऐसा काम कीजिए कि भले थोड़े पैसे ही सही, ख्वाहिशें तो कहा जाता है ना कि कहावत है कि ख्वाहिशें तो बादशाह की भी अधूरी रह जाती हैं, राजाओं की भी अधूरी रह जाती हैं, लेकिन ज़रूरतें जो हैं वो एक फ़कीर होता है, भिक्षुक होता है, उसकी भी पूरी हो जाती हैं। तो अब डिपेंड ये करता है कि आपकी ख्वाहिशें हैं या आपकी ज़रूरत है। ज़रूरत आपको ज़रूर उतना मिलता है, ऊपर वाला उतना देता है जितनी की ज़रूरत होती है, ये बिल्कुल सही 100% बात सही है। लेकिन भाई ये भी है कि अगर आप ज़िंदगी में बहुत अच्छा चाहते हैं, हर इंसान चाहता है कि भाई उसको देखो कितना पैसा उसके पास, उसको देखो गाड़ी कितनी अच्छी, उसको देखो उसके कपड़े कितने अच्छे, ये सारी चीज़ें अगर आप सोच रहे हैं तो फिर भाई मेहनत कीजिए कि सामने वाला कितनी मेहनत कर रहा है। फिलहाल अब ज़िंदगी में क्या है, लाइट की ज़रूरत है और बिजली, मतलब आसमान वाली बिजली उससे भी बच के रहना है, लेकिन जो ये वाली बिजली है इससे बच के हम आप नहीं रह सकते, इसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि अब आदत हम लोगों को ऐसी है कि बिजली अगर ज़रा सी देर के लिए भी चली जाए या बिजली कनेक्शन ना मिले या बिजली का बिल ना जमा हो तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो अब मुद्दे पर आते हैं और आपको बताते हैं कि शहर से लेकर गाँव तक फ्राइडे से यानी कल से 15 मई से 8 दिवसीय मेगा बिजली शिविर लगाया जाएगा। और इसमें क्या होगा, इस कैंप में जो गलत बिल हैं उनको सही करने से लेकर नए कनेक्शन देने तक का काम होगा। अब क्या है कि इस शिविर में राजधानी के यानी लखनऊ के जितने भी खंड हैं उनके इलाकों में 15 से 22 मई तक ये शिविर जो हैं वो आयोजित किए जाएंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी और बहुत ही कह सकते हैं कि राहत भरी खबर है, और दिल अगर सुकून में आ जाए यानी दिल को अगर ठंडक पहुंच जाए तो कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, दिल अगर आपका मुतमईन है, सेटिस्फाई है आप, तो फिर कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं दे सकती है। फिलहाल एक बहुत ही अच्छा सा ट्रैक है जो थोड़ा सा डांस नंबर है और 6:24 हो रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है शाम अवध तरन्नुम में आपके साथ, सुनते रहिए द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन, रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस, RBLI की लाइफ इंश्योरेंस।

0: इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: क्या बात है, आजकल टाइम से घर?
2: हाँ हाँ, बस एक फटाफट से अब मसाले वाली चाय जल्दी से पिला दो।
1: अरे ठीक है बाबा, लेकिन इतनी जल्दी में क्यों है?
2: अरे 7 बजे FM रेनबो पर कॉल जो करनी है।
3: जी हाँ, FM रेनबो लेकर आया है हर रोज शाम 7 बजे से हेलो FM कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए। तो कर डालिए अपने दिल की बात अपने पसंदीदा गाने के साथ।

अब से कुछ ही साल पहले तक लड़कियां अपना बड़ा ध्यान रखती थी, मतलब खुद से वो फेस पैक बनाती थी, खुद से वो अपनी कलाइयों को देखती थी, खुद से वो बेसन का लेप लगा रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी अपने बालों में दही लगा रही हैं, कभी अपने आईने में जाके चेहरे को देख रही हैं, कभी अपने कपड़ों को निहार रही हैं। और ये भी नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि लड़के भी जो हैं वो थोड़ा सा लड़कियों को देखते थे कि भाई चलो ये लड़की बहुत अच्छी है, बहुत कायदे की है। लड़कियां भी कहती थी कि भाई ये जो लड़का है बहुत काबिल लड़का है, बहुत पढ़ाई लिखाई करती है। लेकिन अब आप देखिए, लोग एक दूसरे को देखते ही नहीं है, लोग सिर्फ मोबाइल को देखते रहते हैं। और स्पेशली जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई ये जो मोबाइल है कितनी सारी चीज़ों की जड़ है, मतलब दुश्मनी की जड़ ये मोबाइल है, घर में जो ग्रह में जो कलेश होते हैं उनकी जड़ क्या ये मोबाइल है, लड़कियों की जो सेहत ख़राब हो रही है उसकी भी जड़ ये मोबाइल है। अब आप कहेंगे कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो IAS बने हैं, PCS बने हैं, जिन्होंने इस मोबाइल से ना जाने कितनी तरक्की की है, कितनी कामयाबी हासिल की है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनका एक टाइम मैनेजमेंट होता था, उनका एक टाइम मैनेज करके चलते हैं कि इतने घंटे हमें स्क्रीन को देना है, इतने घंटे हमें सोना है, इतने घंटे हमें पढ़ाई करनी है और सोशल भी रहना है। ऐसा नहीं है कि आप सोशल में रहें, मतलब आप अगर सामाजिक नहीं हैं, समाज में रह के अगर आप कट के चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का आप नुकसान उठा लेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप आपके आसपास जो लोग हैं उनसे भी आप मेल मुलाकात रखिए, क्योंकि सबसे पहले वही लोग काम आते हैं और उसके बाद आप मोबाइल को देखिए। लेकिन अब क्या है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है जो जीवन शैली है, जो लाइफ स्टाइल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लोग नज़र आते हैं, दूसरों को देखते हैं तो जाहिर सी बात है क्या होता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं हैं तो जो अमीर लोगों की बहुत ज़्यादा महफिलें होती हैं, जो उनकी पार्टीज़ होती हैं, उनसे जहाँ तक हो सके बचिए, मत जाइए आप। अगर आपके पास नहीं है, अब ये थोड़ी ना कि आप उधार ले रहे हैं या आप कहीं हाई क्लास में जा रहे हैं, तो ये किसने कहा है आपको, आप मत कीजिए, आप सिंपल लाइफ जीजिए अगर आपके पास जो पैसे हैं। लेकिन अब स्क्रीन की लत है, उसमें क्या हो गया है कि जो महिलाएं हैं, स्पेशली महिलाओं की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, उसी में से एक है ओवेरियन सिस्ट। और ये जो हो रहा है, ये जो गांठ बन जाती है ओवरी में, इसका सबसे जो पहला के GMU में जो रिसर्च किया गया है 31 से लेके 50 साल की जो महिलाएं हैं उन पे, तो इसके होने से क्या है, कैंसर का खतरा है और आप मम्मी भी नहीं बन सकती हैं, बांझपन होने का खतरा है। इसलिए सोचिए ज़रा, बार बार KGMU बता रहा है, बार बार एक से एक एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं कि आपके जो लाइफ स्टाइल है, बहुत ज़्यादा पैकेट बंद डिब्बे के आप खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड्स आप ले रही हैं, तो सोचिए ज़रा कि आपकी लाइफ में, मान लीजिए बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमें शादीवादी नहीं करनी, हमको अपनी लाइफ पसंद है, लेकिन हर चीज़ का एक तय होता है टाइम, कौन सी चीज़ कहाँ पे कब करनी है, ये सारी चीज़ें कुदरत ने हमें और आपको समझा के भेजी हैं। इसलिए बहुत सारी जल्दी जल्दी चीज़ों को अगर आप हासिल करना चाहते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आप बहुत देर कर देते हैं, जो कि जल्दी करनी चाहिए, तो फिर मुसीबत खड़ी होती है। और चलिए ठीक है भाई, अगर आपको नहीं लाइफ अपनी नहीं चाहते आप कि आप मैरिड लाइफ जिए, नहीं चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन ये कहाँ से बिल्कुल श्योरिटी है कि आपके अंदर ओवेरियन सिस्ट नहीं होगी। तो अपनी सेहत को आपको बनाना है तो इन सारी चीज़ों को बहुत दरकिनार करना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि भाई हमने अपना करियर बना लिया है, हमें शादी करनी है, तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, KGMU के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर आपको मम्मी बनना है तो आप 30 साल के अंदर जितना जल्दी हो सके आप मम्मी बन जाइए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और इससे बचने के लिए क्या है, सबसे पहला उन्होंने बताया है कि सबसे पहला जो काम है वो स्क्रीन टाइम आपको कम करना है। दूसरी चीज़ क्या है, आपका जो वज़न है, आपका जो शरीर है, उसको आपको बैलेंस्ड रखना है, नियंत्रित करना है। और दूसरी चीज़ ये स्क्रीन लत है, लत है, इसको कम कीजिए, लाइफ स्टाइल को सुधारिए, मेंटल स्ट्रेस से बचिए, नमक बहुत ज़्यादा मत लीजिए डाइट में, जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है, चॉकलेट है, इन सारी चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल कीजिए। तो पहले से आपको आगाह किया जा रहा है, पहले से, इससे पहले कि बीमारी बहुत ज़्यादा गहराती जाए, बहुत ज़रूरी है कि आप संभल जाइए। और गहराने से याद आया कि 6:39 हो चुके हैं और अरिजीत गहरा हुआ जो ट्रैक है, यस ये ट्रैक आप तक।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: और आपको वक्त बता दें, 6:44 हो चुके हैं। प्रोग्राम चल रहा है शाम में, तरन्नुम है आपके साथ, सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

और सच में जिस चीज का इंतजार था लोगों को, वो दिन आज आखिर आ ही गया। हम बात कर रहे हैं सीबीएसई ट्वेल्थ में जो बेटियां थी, जो बेटे थे, उनकी जो इंतजार था कि कितने परसेंटेज आएगा, कितना रिजल्ट आएगा, वो सारा इंतजार आज खत्म हो गया। आज सिर्फ पढ़ाई की, इस वक्त हम पढ़ाई की बात करेंगे। और भाई नो डाउट ये जो ट्वेल्थ का रिजल्ट आया है ना, इसमें बेटियों ने जो है वो बाजी मारी है। और 86.30% जो सक्सेस है वो उनको मिली है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लड़कियों के लिए जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। और पढ़ाई की अगर बात करें तो भाई, अगर आपका बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, जो हमारे लिसनर हैं उनका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, तो उनके पास जाके बैठना शुरू कीजिए, उनसे दोस्ती बढ़ाइए जो पढ़ाई करते हैं। वो आपको बताएंगे कि कैसे टाइम टेबल को मेंटेन करना है, कैसे वक्त निकालना है, कौन कौन सी चीज़ों को

फॉलो करना है, कौन कौन सी चीज़ों को स्किप करना है, ये सारी चीज़ें वो आपसे शेयर करेंगे। और पढ़ाई भाई अब ट्वेल्थ हो गया है तो जाहिर सी बात है कि अब एलयू की तरफ लोग रुख करेंगे, कुछ लोग हैं जो अपना और कोई कोर्स करेंगे, कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे। तो लखनऊ विश्वविद्यालय और AKTU में अब आपको बता दें कि सिर्फ हफ्ते में 5 दिन ही पढ़ाई होगी। और ऐसा क्यों किया जाएगा, क्योंकि नो व्हीकल डे जो है वो भी मनाया जाएगा। तो AKTU में एक दिन नो व्हीकल डे है, और साथ ही साथ ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनकी ईंधन बचत की अपील के बाद ये डिसीजन लिया गया है, फैसला लिया गया है कि अब 5 दिन ही पढ़ाई होगी। दूसरी चीज ये है कि भाई आपको अब अपनी बात करें, मतलब ये जो फैसला इन लोगों ने लिया बहुत ही सराहनीय, बहुत ही काबिले तारीफ ये फैसला लिया गया है। लेकिन अगर हम अपनी और आपकी बात करें तो जितना हो सके ये जो फ्यूल है, ये जो पेट्रोल है, डीजल है, इसको बचाने की कोशिश कीजिए। अगर कोई ऐसा आपको नजर आ रहा है, आप अकेले तन्हा जा रहे हैं, आप बाइक पे हैं, आपको लग रहा है कि कोई बहुत ही बुजुर्ग है या कोई ऐसा मतलब काबिल एतमाद जिसे कहते हैं भरोसे के लायक कोई आपको लग रहा है, तो आप उसे लिफ्ट दे सकते हैं, आप उसे कुछ दूर छोड़ सकते हैं। या अगर आप कोई ऐसी कॉलोनी में रहते हैं, आपका बच्चा भी स्कूल जाता है, उनका बच्चा भी स्कूल जाता है, तो एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए, एक ऐसी खूबसूरत मोहब्बत का माहौल बनाया जाए जिससे लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करें। और जो बहुत पहले हुआ करता था कि लोग पूरे पूरे घर की चाबियां, घर के जेवर सब कुछ दे जाते थे मोहल्ले वालों को, और इतना ट्रस्ट होता था कि कुछ भी खाना बन के आ रहा है, इधर से खाना बन के उधर जा रहा है, त्योहार में सब इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी अगर कर ली जाए तो बहुत सारी चीजों से हम और आप जिंदगी से निजात हासिल कर सकते हैं। तो बस एक चीज़ ये भी है, ये भी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे और आपके फ़ायदे के लिए हैं, तो उनको फिर से अपनी ज़िंदगी में शामिल क्यों ना कर लिया जाए।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: 5:56 हो चुके हैं, तो आप तरन्नुम को दीजिए इजाजत प्रोग्राम शाम को वाइंड अप करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो एफएम। डायल कीजिए 2238852 2238842। सो स्टे कनेक्टेड विद रेनबो।

टेन समाचार। प्रदेश में कल बारिश आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की हो गई मौत। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर सर्वे पूरा कराने का दिया निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद स्थित 8वीं एनडीआरएफ बटालियन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि एनडीआरएफ ने 2 दशक के कम समय में ही देश के 140 करोड़ नागरिकों का जीता विश्वास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में एक निजी मीडिया समूह द्वारा आयोजित कॉन्क्लेव में हुए शामिल। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का दायित्व बनता है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विकल्पों को अपनाकर देश के आत्मनिर्भरता अभियान को दे मजबूती। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज जनभवन में प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबद्ध शासकीय और वित्त पोषित महाविद्यालयों की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान राज्यपाल ने कौशल आधारित शिक्षा पर विशेष जोर दिया। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज बरेली में नॉर्थ कॉरिडोर में कराए जा रहे विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से पर्यटन को प्रदेश में नई ऊर्जा मिल रही है। प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु ने आज लखनऊ में प्रदेश के आयुष महाविद्यालय, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की और दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में आज स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 26 का किया गया आयोजन। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया उद्घाटन। रेलवे ने कानपुर गंगा नदी के पुल पर गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा कर लिया है। इस कारण आज से प्रतिदिन 8 घंटे के मेगा ब्लॉक को किया समाप्त। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का आज लखनऊ के बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार किया गया। अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत पूरा सैफई परिवार रहा मौजूद। और बांदा जनपद के कोतवाली क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आज एक निजी वाहन के ट्रक से टकराने के कारण हुए हादसे में 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात्रि 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो तरन्नुम के साथ।

0: और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम, स्वागत, खुश आमदीद। 7:02 प्रोग्राम हेलो एफएम लेकर हाजिर है। तरन्नुम डायल कीजिए 22 38 45 22 37 752 और ये है नंबर जिन पे आप सुन सकते हैं अपने रिक्वेस्टेड नंबर।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
4: ओह लवली, वेल डन।
3: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
4: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
5: RBI कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: पर एक नंबर है जिस पे लाइन पे हमारे साथ कोई हंस बात करते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, बताइए कौन बोल रहे हैं? अल्तमश, आप ऐसा लग रहे हैं जैसे अभी सो कर उठे हैं, क्या कर रहे हैं अभी आप?
1: नहीं मैम, बताएं, आपसे पहली बार बात हो रही, तो
0: अच्छा डर डर लग रहा होगा, घबराहट हो रही होगी, है ना? क्यों डर लग रहा है आपको?
1: नहीं, सोच रहे थे कैसे मिलाएंगे, कैसे बोलेंगे आपसे।
0: तो ऐसे ही मिलाया आपने और ऐसे ही बोल रहे हैं आप, तो ऐसे ही बोलिए आप। क्या करते हैं अल्तमश?
1: मैम आपको हम सुनते थे रोज, लेकिन मैम कॉल कभी नहीं लगाना आपसे बात भी, लेकिन आज लगा रहे थे तो लग गया, तो आपसे बात भी हो गई।
0: अच्छा लग गया, चलिए बहुत बहुत आपको मुबारक हो। क्या करते हैं अल्तमश, पढ़ाई करते हैं?
1: हाँ बस पढ़ाई ही करते हैं।
0: अल्तमश मतलब क्या है इसका?
1: अल्तमश पता नहीं, अल्तमश अली नाम है पूरा।
0: अच्छा अल्तमश अली, अली तो भाई पता है हमें, लेकिन अल्तमश का मतलब क्या है आपने बताया नहीं। अलतश का मतलब ये होता है कि भाई बहुत प्यासे हैं, लेकिन अल्तमश का मतलब नहीं पता हमें, बताइए आप, आपको नहीं पता?
1: मैम हमें भी नहीं पता है।
0: तो किसने रखा आपका नाम, मम्मी पापा?
1: नहीं, हमारी जो बुआ थी उन्होंने ही रखा।
0: बुआ थी मतलब अब नहीं है?
1: नहीं, जैसे हमारे मोहल्ले।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, मोहल्ले में है। अच्छा तो बुआ से पूछ लीजिए कि भाई आपने अल्तमश नाम रखा है तो इसका मतलब क्या है।
1: नहीं मैम, एक धारावाहिक आती थी पता नहीं कौन सी, तो उसी ने देखकर नाम रख दिया, कहते थे कि बहुत अच्छा नाम है और बहुत अच्छा हीरो था।
0: तो आप अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं।
1: नहीं मैम, हम कहाँ खूबसूरत।
0: अरे अब ये थोड़ी ना कहा जाता है, जैसा आपको बनाया है ना ऊपर वाले ने, आप बहुत खूबसूरत इंसान है, पता है आपको, बहुत अच्छे इंसान है। हमेशा आप ये सोचेंगे कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत खूबसूरत हैं और आप बहुत अच्छे हैं, तो हमेशा आप अच्छे अच्छे काम करेंगे। अच्छे अच्छे काम करते हैं आप, लोगों की मदद करते हैं?
1: बहुत मदद करते हैं, बूढ़े लोगों को पानी भी दे देते हैं और सबसे छोटे बच्चों से अच्छे से बोलते हैं।
0: क्या बात है, आप कितने बड़े?
1: हम बड़े मतलब,
0: हाँ मतलब कितनी एज, कितनी आपकी
1: एज है? 16 साल।
0: अरे अरे अभी तो आप बहुत छोटे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप छोटे हैं बड़े हो जाएंगे, अच्छे अच्छे काम करते रहिए। आपने कॉल किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। और गाना जो आपने पसंद किया एकदम यूनिक गाना है, बताइए किसको सुनवाएंगे?
1: ये मैम आप सबसे पहले सुनवाना चाहते हैं।
0: बहुत शुक्रिया।
1: सोच रहे थे कि आप रोज आए और बहुत दिन से आपको से यानी सुना नहीं आपकी आवाज।
0: अच्छा तो आज आपने सुन ली, चलिए बहुत अच्छा लगा। और दोबारा आप कॉल जरूर कीजिएगा, ठीक है? आपकी पसंद का ट्रैक आ रहा है अब तक। वेल 7:10 प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम, और कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। सो स्टे कनेक्टेड विद रेनबो।

0: 7:14 हो चुके हैं हमारे साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पे, उनसे बात करते हैं। हेलो
1: जी, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग टू यू टू। कौन बोल रहे हैं?
1: जगपाल यादव।
0: जगपाल सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं सर? बस हम भी ठीक हैं, कुशल मंगल है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से?
1: जी
0: क्या कहना चाहेंगे?
1: प्रोग्राम आप बहुत अच्छा करती हैं, कई दिन से ट्राई कर रहे थे लेकिन फोन नहीं लग रहा था, लगता था लेकिन कॉल नहीं रिसीव होती।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज देखिए आपकी कॉल रिसीव हो गई।
1: जी रिसीव हुई तो आपसे बात हुई पहली बार।
0: जी हमसे पहली बार बात हो रही है। क्या करते हैं जगपाल जी आप?
1: फार्मर हैं।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किस चीज की फसल उगा रहे हैं अभी आप?
1: गन्ना है, धान लगा हुआ है, काटा नहीं जो लगता।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये गन्ने को जो ये गुड़ बनाते हैं और फिर जो शक्कर बनाते हैं उसे खांड कहते हैं ना, जो बहुत रिफाइन नहीं की जाती है, नुकसान नहीं करती, खांड है ना? तो आप इस्तेमाल करते हैं वो?
1: हाँ करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो उसके बड़े फायदे भी सुने हैं। गन्ना अन्ना तो भाई क्या बात है, गन्ने का जूस तो आजकल देखिए सब तरफ मिल रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम बिना बर्फ का गन्ने का जूस पीते हैं। आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा? आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
1: किसमें?
0: यही सारी चीजों में, खाने आने में।
1: अरे सब कुछ खाने में पसंद है, जो अच्छा लगता है वो खाते, मन करता है
0: जो मिल जाए ऐसे।
1: नहीं, मिल नहीं जाए, जो मन करता है।
0: अच्छा जो मन करता है, तो मतलब मेरा रुझी है आपके घर में
1: जी।
0: अच्छा खाना ना बना रही होंगी है ना?
1: हाँ और क्या।
0: सही बात है। क्या पकवा रहे हैं आज आप? क्या बनवा रहे हैं आज आप?
1: अब ये तो पता नहीं है, हम बाहर बैठे हैं, जो आएगा सामने वो खाया जाएगा।
0: ये हुई ना बात, जो उनका मन होगा वो बनाएंगे, वो आप खाएंगे। तो गाना सुनवा दीजिए उनको, आपने जो कहा अभी कि प्ले कर दें।
1: गाना तो सुनेंगे।
0: हाँ तो नाम ले लीजिए जल्दी जल्दी।
1: जी जी जी
0: जी बताइए।
1: सबसे पहले आपको डेडिकेट,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और एक हमारे मोहब्बत फैज भाई है।
0: जी जी जी जी जी जी जी।
1: और सीतापुर की समा परवीन है। अंसारी
0: जी जी।
1: और सारे सभी सुनने वालों को, जितने सुनने वाले हैं लिसनर सभी को
0: थैंक यू सो मच। 7:17 नेक्स्ट कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत। 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में NDRF के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, पशुपालक समितियों को एक महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे पूरा कराने का निर्देश दिया है, जिससे मुआवजा जारी किया जा सके। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने, पेड़ गिरने और बिजली के खंभे गिरने की घटनाओं से हुई है। इनसे बिजली आपूर्ति और सड़क तथा रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: वहीं मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिलों में प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। चंदौली के अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व राजेश कुमार ने बताया कि नुकसान का आकलन करने के लिए संबंधित अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में तेजी से कार्य कर रहे हैं। जनहानि के प्रकरण में मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को आपदा राहत कोष से लाभ दिलाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
2: हम लोग सभी अवयवों पर, सभी कंपोनेंट्स पर काम कर रहे हैं और जो पोल इत्यादि टूटे हैं उनके मरम्मत, उनको लगवाने जाने का काम जारी है। इसके अलावा जो पेड़ इत्यादि गिरे थे उनको भी हटवाकर जो है यातायात सुचारू कराया गया है। जो मानव मृत्यु के केस हैं उनको भी नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जा रही है और इसी प्रकार जो मकान क्षति हुई है, मकान क्षति में भी नियमानुसार जो भी आर्थिक सहायता बन रही है उसको भी दिलाया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की बचत की अपील के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन की बचत के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, कार पूलिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में संरक्षित 15 लाख से अधिक गोवंश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट आधारित सामूहिक किचन मॉडल विकसित करने की बात कही, जिससे LPG पर निर्भरता हो सके। लखनऊ में निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वो राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे।
3: अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए या अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने, काफिला कम करने की अपील के मद्देनजर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने परिषद की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। वहीं कानपुर स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में पेट्रोल डीजल वाहनों के प्रयोग पर कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने आदेश जारी किए हैं। अब विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और दूसरे अधिकारी परिसर में आधिकारिक कार्यों के लिए ई कार्ट या इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय की बैठकों को

0: अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
1: हमने अपने स्टूडेंट को भी कहा है कि जो साइकिल या ई कार्ड का उपयोग, हम लोगों ने ये भी एक नियम निकाला है कि जो लोग शहर में जा रहे हैं तो ई व्हीकल का यूज, तो पेट्रोल बचाना और ऊर्जा को बचाना, ये ज्यादा का अपना करते हैं।
0: इसी क्रम में अयोध्या नगर निगम ने तय किया है कि अब सप्ताह में एक दिन यानी हर सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इसके साथ ही महापौर का एस्कॉर्ट वाहन भी बंद कर दिया गया है। वाराणसी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल बचाओ जागरूकता अभियान चलाया। नई सड़क स्थित कोदई चौकी से इलेक्ट्रिक स्कूटी रैली निकाली गई और पेट्रोल की बचत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने

0: 2014 से न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कार्य किया गया है बल्कि प्राकृतिक आपदा को कम करके उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
1: आज देश भर में कहीं पर भी जाते हैं, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए एनडीआरएफ के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश, जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में आज स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि निराश्रित गोवंश सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश की सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है और प्रदेश सरकार पशुपालक समितियों को मजबूत करते हुए एक माह में ही भुगतान करने का काम करेगी।
2: निराश्रित गोवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है और इसको उत्तर प्रदेश में हम सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन है और भारत का हिस्सा उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे अच्छा है। आज हम दुग्ध महोत्सव के माध्यम से पशुपालकों को दुग्ध समितियों को मजबूत करते हुए महीने के अंदर ही हम दुग्ध उत्पादकों का भुगतान कराने का काम करेंगे और ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी हो।
0: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का लखनऊ के बैकुंठ धाम में आज अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव और सैफई परिवार के सदस्यों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि अब 17 मई कर दी गई है। परिषद के अनुसार 11 मई तक कुल प्रवेश क्षमता 2,71,093 सीटों के सापेक्ष 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत, 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन, पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा पशुपालक समितियों को एक महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: और कुछ गाने इतनी जल्दी जल्दी आगे निकल जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या है क्या है, लेकिन गाना जबरदस्त था। फिलहाल हमारे साथ लाइन पे कोई है, वो भी बहुत ही जबरदस्त इंसान है, बात करते हैं। हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, कौन बोल रहे
1: हैं जी? तालिब अंसारी बोल रहे हैं, बाराबंकी राजा कटरा से।
0: जी जी जी, बहुत सारे लोग हैं जो उस मोहल्ले में रहते हैं, बड़े शिद्दत से सुनते हैं रेनबो, उसी में आप भी हैं।
1: लेकिन जो अभी ये पिछला गीत था बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब ये एंजॉय तरीके का गीत था।
0: आए है, क्या बात है। और इसी तरह के
1: पसंद आया।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आया। इसी तरह के गाने जो हम पहुँचाएंगे आप तक, बताइए और क्या कहना चाहेंगे तालिब
1: जी? और सब बढ़िया है, फोन लगा रहे थे
0: जी
1: और प्रोग्राम भी आपका सुन रहे थे।
0: अच्छा, तो क्या कर रहे थे तालिब अभी आप
1: जी? हम तो बैठे हुए थे छत पे और प्रोग्राम भी सुन रहे थे
0: तो
1: और कॉल लगा, लेकिन कॉल लगती नहीं, मैं इतनी देर से फोन लगा, लेकिन अब जाके मेरी बेल गई और आपने उठा लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मेल किया। और बहुत सारे लोग देखिए नाराज भी जाते हैं कि भाई मेल किया नहीं शामिल किया, कॉल करा नहीं शामिल हुआ, बहुत सारे लोग हैं जो लाइन में रहते हैं, लेकिन लोग ही चाहते हैं जी।
1: इसके बारे में हम एक बात कहना चाहते हैं कि आज के टाइम में कंपटीशन का टाइम है
0: जी,
1: तो सभी लोग कॉल लगाए, लेकिन अगर दिल से लगाएंगे, मेहनत करके लगाएंगे तो कॉल लगता है, क्योंकि मेरा कॉल उधर से तो आया नहीं, हमने खुद लगाया ना। और लेकिन कॉल लगाया जाता है तो बहुत शिद्दत से बहुत मेहनत पड़ती है, मेरा फोन पूरा हीट हो जाता है, बैटरी भी एकदम लो हो जाती है, तब मेरी जाके कॉल लगती है
0: जी। लेकिन एक चीज ये भी जरूरी है कि जिस तरह आपको टाइम दिया जाता है, आपकी कॉल अटेंड की जाती है, और सारे जो लिसनर्स हैं उनको भी ये तो मौका देना चाहिए ना
1: जी। बिल्कुल, मौका मिलना चाहिए।
0: अच्छा ये बताइए, गाना आप किसको सुनवाना चाहेंगे?
1: गाना हमारे आसिफ भाई हैं, साबिर भाई हैं और अकबर भाई हैं।
0: मैं तीन लोग को सुनवाएं, बाकी सबसे कहते हैं कान बंद कर लो।
1: नहीं, कान नहीं बंद कर, सब लोग ने इतने बढ़िया गिटार प्ले हो रहे हैं, हमको भी बहुत अच्छे लग रहे हैं।
0: अच्छा।
1: आप लोग उस पे डीजे वाले सिस्टम में सुनते हैं ना, म्यूजिक सिस्टम पे, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया तालिब, आपने कॉल किया, दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू।

0: 7:38, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मिंटू तिवारी, ग्राम भकरना, तहसील खागा, जिला फतेहपुर से बोल रहे हैं।
0: अरे मिंटू जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार मैम, बढ़िया हैं।
0: अरे नाराज तो नहीं है आप हमसे?
1: अब नहीं, नाराज नहीं, उस दिन नाराजगी दूर हो गई। आज फोन, आज कॉल उठा, लेकिन दो बार कट गया, लेकिन तीसरी बार उठा लिया आपने।
0: तो खुश हो गया आप मतलब?
1: अब इतनी मेहनत से मान लीजिए फोन करते हैं, अगर ना उठे तो दिक्कत होती।
0: जी जी जी जी, बहुत सारे लोग हैं जो फोन करते हैं, लेकिन एक मतलब इस कुछ मिनट में एक ही इंसान से बात कर सकते हैं ना हम?
1: नहीं नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन
0: जी बताइए गाना कौन सा, गाना किसको सुनवाएंगे आप?
1: गाना हम सुनवाएंगे पहले तो आपको, आपके जितने आरजे हैं एफएम के, उन सभी के लिए, प्रभाकर तिवारी जो है रसूल गुलगुल रहा से
0: जी,
1: मुकेश कुमार हो गए सीधा के पुरवा से, राजेंद्र प्रसाद हो गए वहाँ कुंडा प्रतापगढ़ से, और राहुल भाई हो गए इटावा से, और मेरे बड़े भाई है प्रमोद तिवारी, विनोद तिवारी, मोहम्मद तिवारी और प्रकाश पासवान जी, और जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए। लेकिन थोड़ा हमारा गाना बता दें?
0: जी जी बिल्कुल, गा के बताइए।
1: गाना हमने बताया था ना,
0: गा के बताइए।
1: ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही न जाए,
0: ये गा रहे हैं आप मतलब कि बता रहे हैं आप?
1: नहीं गाना बता रहे, गाने के बोल बता रहे हैं।
0: अच्छा तो गाते नहीं है मतलब, शौक नहीं है आपको?
1: नहीं गाना गाते, लेकिन थोड़ा हमारा थोड़ा छोटा वाला भाई खड़ा है, कहता है बात कराइए थोड़ा, कर लीजिए।
0: अच्छा अच्छा चलिए कोई नहीं, छोटे भाई को दे दीजिए। हाँ नमस्ते। हेलो
2: नमस्ते।
0: नमस्ते बेटा, कौन बोल रहे हैं, क्या नाम है?
2: माय नेम विनीत तिवारी।
0: विनीत तिवारी, मिंटू तिवारी, वाह वाह क्या बात है, दो ही भाई हो बेटा तुम लोग?
2: हमारे
0: देखो बड़े
2: हमारे भाई बहुत फोन लगाते हैं, उठा लिया करो।
0: अच्छा भाई देखो, अब फोन उठाया और कैसे उठाए और कैसे,
2: ठीक है?
0: अच्छा ठीक है, तो तुम लोग दो ही भाई हो है ना?
2: तीन भाई हम लोग।
0: तीन भाई, तीसरे का है?
2: एक हम नाम थोड़ा बोलना चाहेंगे।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
2: ये हमारा भाई नवनीत तिवारी,
0: नवनीत तिवारी, मिंटू तिवारी, विनीत तिवारी, ठीक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और गाना तीर और चोरी चोरी मैंने भी तो फ्रॉम द

0: सात बजकर 44 मिनट हो चुके हैं। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हम कमल शंकर पांडे, ग्राम मोहलिया कला चौराहा, जिला सीतापुर से बोल रहे हैं।
0: कमल शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में, बताइए क्या कहना चाहेंगे?
1: कहना ये चाहते आए लगभग एक महीने से बराबर फोन लगा रहे हैं, फोन नहीं लग रहा है।
0: अच्छा, ऐसे कैसे?
1: पहले लगता था लेकिन इन दिनों पता नहीं क्या हुआ, एक महीने से फोन ही नहीं लगा।
0: अरे छोड़िए, वो दिन जो चले गए उनको भूल जाइए, आज का दिन याद रखिए, 14 मई याद रखिए, 7:45 याद रखिए, और हम दोनों की जो बात हो रही है उसे याद रखिए, ठीक है जी? बताएं, और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। गाना आपने जो पसंद किया है वो गाना आपको क्यों पसंद है ये बता दीजिए।
1: ऐसा ही पसंद है, संगीत अच्छा लगता है, आवाज लगती है।
0: अच्छा, सपना अवस्थी आपको पसंद है?
1: जी, आवाज बहुत पसंद है।
0: अच्छा, क्या बात है, कुछ गुनगुना लेते हैं?
1: नहीं, गुनगुना तो नहीं पाते हैं।
0: अच्छा, गुनगुनाते नहीं है, सुनते हैं बस। चलिए, किसको किसको सुनवाएंगे गाना?
1: आपको, सभी सुनने वालों को, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है।
0: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कमल शंकर पांडे जी, दोबारा कॉल आप जरूर कीजिएगा। ओके, शुभ रात्रि।

0: और जल्दी से अपना वादा पूरा करते हैं हमारे साथ, हमारे जो नेक्स्ट कॉलर हैं उनसे बात करते हैं। हेलो
1: जी, अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं?
1: सुल्तान रजा बात कर रहा हूँ, खाना सब्जी मंडी बरेली से।
0: जी सुल्तान साहब, कैसे हैं आप बताएं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप बताइए मैम कैसी हैं?
0: जी बिल्कुल, हम भी बहुत खूबसूरत हैं, मतलब ठीक है।
1: जी अच्छी है, अच्छी है।
0: ये मेरा एक स्टाइल है कहने का, और हमें लगता है, हमें लगता है कि हर इंसान को अपने को बहुत तरजीह देनी चाहिए, प्रायोरिटी पे जब आप अपने आप को रखते हैं
1: तो। शुक्रिया मैम, बहुत अच्छे
0: है। ये बताइए, सब्जी मंडी में आप रहते हैं तो सब्जियां अभी भी बिक रही है? आवाज आ रही पीछे से,
1: बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया सब्जी।
0: अच्छा क्या क्या बिक रहा है पीछे?
1: सब आलू है, टमाटर है, प्याज है।
0: आलू क्या हिसाब है भैया? आलू क्या हिसाब है
1: इस टाइम? सस्ता है आलू।
0: अच्छा आलू और टमाटर?
1: टमाटर 10 रुपए।
0: 10 रुपए किलो?
1: जी।
0: अरे वाह, हमारी तरफ तो 30 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, 40 रुपए किलो।
1: यहाँ सब्जी मंडी है ना, बहुत सारी सब्जियाँ नई नई सब आती रहती है।
0: तो आपके तो गाल बड़े लाल होंगे, टमाटर खाते रहते होंगे 10 रुपए किलो।
1: शुक्रिया शुक्रिया।
0: है ना, ऐसा है
1: जी?
0: अच्छा टमाटर खाते हैं, आलू खाते हैं, और क्या क्या खाते हैं? मम्मी की डांट खाते हैं?
1: हाँ वो तो मिलती है कभी कभी,
0: है ना? और क्या
1: मिलेगी पक्का?
0: अच्छा अच्छा, और क्या खाते हैं?
1: और तो बहुत सारे ऐसे आइटम है, तुरई है, कदुआ नहीं खाता हूँ।
0: अच्छा कदुआ बोलते हैं आप लोग? कदुआ बोलते हैं हम लोग, कद्दू बोलते हैं।
1: अच्छा हम बोलते हैं कद्दू।
0: अच्छा हम लोग को कद्दू बहुत अच्छा लगता है, कद्दू की सब्जी, पूरी, बूंदी का रायता। 8 बज रहा है, जल्दी से प्रीति अंदर आएगी और उसके बाद हम ये सब खाना आना खाएंगे बढ़िया सा। और बढ़िया सा जो गाना आपने पसंद किया है ये बताइए किसको सुनवाएंगे आप?
1: मेरे दोस्त हैं सादिक रजा, मोहन रजा, जीशान रजा।
0: सुन रहे हैं, सुन रहे हैं सब अभी?
1: ये सब सुनेंगे माशाल्लाह।
0: अच्छा अच्छा, और सब रजा ही है, मतलब जितने भाई है सब सब रजा, पूरी फैमिली
1: पूरा रजा परिवार है?
0: अच्छा रजा परिवार है। और किसको सुनिए? हाँ देखिए, कभी मौका लगता है तो जरूर आते हैं, पुरानी कुतुब खाना, सब्जी मंडी और
1: बरेली।
0: ठीक है आते हैं तो राय बरेली या
1: जिला बरेली?
0: अच्छा जिला बरेली,
1: झुमका वाला, झुमका वाला।
0: अच्छा अच्छा अच्छा वो वाला। चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब, आपने मैं कॉल किया, दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा। 7:52 हो चुके हैं, नेक्स्ट ट्रैक आ रहा है आप तक, और कह सकते हैं कि इसी ट्रैक के साथ इजाजत लेनी होगी हमें आपसे। इंशाल्लाह जल्द होगी मुलाकात किसी और दिन, किसी और वक्त, बल्कि कल ही मिलते हैं आपसे हम। सुनते रहिए रेनबो, कुछ घंटे रहने वाली हैं प्रीति आपके साथ। तो चलें, शुभ रात्रि, शुभ खैर एंड गुड नाइट।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी। 100.7

बरती जाए तथा प्रभावित क्षेत्रों में भी लगातार निगरानी रखी जाए। प्रदेश के बाराबंकी, बहराइच, कानपुर देहात, बस्ती, संभल, हरदोई, उन्नाव समेत 19 जिलों में जनहानि, पशुहानि और फसल नुकसान की जानकारी सामने आई है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आज बदायूं के कछला घाट में 19 करोड़ रुपए के सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा भी उपस्थित रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि गंगा हमारी संस्कृति की आत्मा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर उतार रहे हैं। यह घाट सिर्फ पत्थरों से नहीं, श्रद्धा से संवरेगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी धार्मिक पर्यटन की राजधानी बन रहा है। कछला घाट को मिनी हरिद्वार का रूप दिया जाएगा। आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम कल इकाना स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी। सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने लखनऊ में संवाददाताओं से को संबोधित करते हुए कहा कि कल के मैच के लिए उनकी टीम बेहतर तैयारी कर रही है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के स्पिन बॉलिंग कोच कार्ल क्रो ने कहा है कि उनकी टीम ने पिछले 3 मैचों से अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी के चलते लखनऊ में खेले गए पिछले मैच में एलएसजी को जीत मिली थी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, रात्रि के 8 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की बचत की अपील के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन की बचत के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, कार पूलिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया है। लखनऊ में निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वह राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को प्रदेश में आंधी, आकाशीय बिजली और अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने और हालात का जायजा लेने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार पूरी मजबूती के साथ जनता के साथ खड़ी है और राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों ने प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत राशि उपलब्ध करानी शुरू कर दी है। श्री योगी ने अधिकारियों से कहा है कि राहत और बचाव कार्यों में पूरी गंभीरता

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। वस्ल की उस रात को हर्फों में बयां करता संजीदा रेडियो प्रोग्राम आबशार 100.7 FM रेनबो पर।
6: ढलती हुई रात की ये खामोशी और जज्बातों का उमड़ता हुआ ये शोर, कभी कभी कुछ कहने के लिए लफ्ज ही कम पड़ जाते हैं। तब गजलें हमारा हाथ थाम लेती हैं। आदाब, मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा प्रोग्राम आबशार का, वही गजलों का बहता हुआ झरना जिसमें भीग कर हर अधूरी मोहब्बत मुकम्मल सी लगने लगती है। तो बस तैयार हो जाइए आज की सुरीली गुफ्तगू के लिए। पेशे खिदमत है मोहब्बत के नाम ये पहली गजल

दोस्तों, अब बात करते हैं उस पहली मुलाकात की, जब मोहब्बत तो सच्ची होती है और उस वक्त चेहरे की चमक ही कुछ और होती है जो सब कुछ बयां कर देती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि वो अजनबी था तो इतना अजीब क्यों लगा, वो अजनबी था तो इतना अजीब क्यों लगा, बिछड़ के हमसे वो इतना करीब क्यों लगा। वाकई दिल के रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं। चलिए इसी एहसास को एक और खूबसूरत आवाज देते हैं। अगली गजल, डूब जाइए मोहब्बत के इस हसीन सफर में, सिर्फ और सिर्फ आबशार में।

ज़िंदगी के इस मुसाफिर खाने में रोज़ हज़ारों चेहरे गुजरते हैं, हज़ारों आँखें हमसे मिलती हैं, मगर इस दिल की जुस्तजू बस एक ही शख्स पर आकर ठहर जाती है। और फिर एक मोड़ पर आकर यह एहसास होता है कि तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं। मोहब्बत की इसी शिद्दत को किसी शायर ने इन लफ्जों में पिरोया है। तमाम आलम के नज़ारों में ढूंढा है तुमको, तमाम आलम के नज़ारों में ढूंढा है तुमको, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा मिला ही नहीं। तो चलिए इसी तिश्नगी और इसी बेपनाह मोहब्बत को महसूस करते हैं इस अगली गजल के साथ।

दोस्तों कहते हैं कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने दिल के हाल को लफ्जों की शक्ल देना। पर क्या वाकई मोहब्बत को अल्फाजों की जरूरत होती है? जी हाँ, जब खामोशियां बोलने लगे और नजरें बातें करने लगे तो समझ लीजिए कि इश्क की इब्तिदा हो चुकी है, यानी कि शुरुआत हो चुकी है। ये वो कैफियत है जहां जुबान खामोश रहती है पर रूह सब कुछ समझ लेती है, महसूस कर लेती है। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबां होती है? यह हकीकत तो निगाहों से बयां होती है।

दोस्तों कहते हैं कि शायरी दरअसल उस बेचैनी का नाम है जो तब बनती है जब अपना ही दिल हमसे सवाल करने लगे। एक शायर की रूह की तड़प तो देखिए जब वो अपनी उस मोहब्बत को तलाशता है जो कभी उसकी कायनात हुआ करती थी। वो मेरा रौनक महफिल कहाँ है, मेरी बिजली मेरा हासिल कहाँ है,

मुकाम उसका है दिल की खिलवतों में, खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है। कितनी अजीब बात है ना, जिसे हमने अपनी महफिलों की रौनक बनाया, जिसे अपनी पूरी जिंदगी का हासिल समझा, आज वो दिल के उन कोनों में जा छिपा है जहां हम खुद भी नहीं पहुंच पाते। ये खिलवते कि वो गोशे जहां सिर्फ सन्नाटा और उसकी यादें रहती हैं, जब दिल ही हाथ से निकल जाए तो उसका मुकाम ढूंढना शायद इंसान के बस की बात ही नहीं होती।

दोस्तों वक्त हो चला है 8:41 और 41 सेकंड्स और इस वक्त के साथ ही आपको बता दे आबशार भी वाइंड अप करने को है, लेकिन ये खूबसूरत गजल यूं चलती रहेगी। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। आप कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि रात 9 बजे पॉप टाइम का है टाइम। तो बस सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो और आज प्रीति है आपके साथ।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की।

0: केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने वीडी सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADM

कलबुर्गी के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात कर उन्हें एसपी वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 एआईएडीएमके विधायकों ने ओएस मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए शित कुमार वैद्यान।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर

0: प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज

0: के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
1: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
0: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces special intensive revision phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work

जी दोस्तों, वक्त हो गया 9:26 और कुछ सेकंड्स, और आपको बता दें आप सुन रहे पॉप टाइम ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की, और इस वक्त माइक के इस पार है आरजी प्रीति आपके साथ। मोनू सेठ लिखते हैं, आपने गाना बजाया, बजाओ गाना जोर से, इसलिए हमने अपना रेडियो का वॉल्यूम फुल कर दिया। क्या बात है, इसको कहते हैं कि दिल से किसी बात को मानना। इंद्रपाल जी का भी मेल आया, लिखते हैं कि प्यारी दीदी को प्यार भरा नमस्कार, कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, हम लोग गांव के में एकत्र होकर सुनते हैं। चलिए इसी बहाने फोन को दूर करके, मतलब कि आप लोग रील्स नहीं स्क्रॉल कर रहे हैं, म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, ये मेन बात है। और आप सब लोगों ने क्या बोला है कि आपको बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए, जी शुक्रिया। और अमृता महोली सीतापुर से, इंद्रपाल मिश्रा, आशा अवनीश, विनीश, अक्षत और गरिमा। और इसके साथ ही अर्पित शर्मा का भी मेल आया। अर्पित शर्मा जी लिखते हैं, शुभ संध्या जी, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं। गर्मी कैसी पड़ रही है? हम तो ये नहीं कहेंगे, गर्मी हमारे यहाँ बहुत प्रचंड हो रही है, बस गर्मी पड़ रही है, यही है। और भाई लिखते हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और लू है वगैरह। मुझे लग रहा है ये मेल आपने रिपीट हो गई है, कोई बात नहीं, हमने फिर भी आपकी मेल को पढ़ लिया है। विजय कुमार का भी मेल है, पूरी एफएम टीम को नमस्कार, प्रोग्राम की बहुत ही धमाकेदार शुरुआत। और विजय जी शुक्रिया, आपने मेल हमें किया है। विजय कुमार यादव मोहरी पोस्ट, आशा खेड़ा, उन्नाव, ऐसा लग रहा था किसी का नाम है। अशोक कुमार का भी मेल आया है, अशोक राज, गुड इवनिंग, एड्रेस रायपुर उडारा मितौली लखीमपुर खीरी, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, अशोक जी शुक्रिया। अरविंद कुमार जी ने मेल भेजा है, अरविंद जी लिखते हैं कि जी हाँ प्रीति जी बजाओ गाना जोर से। भाई हमने तो गाना यहाँ से फुल ऑन वॉल्यूम में प्ले किया था, आपने वॉल्यूम अपने मोबाइल का या फिर जहाँ भी आप फोन को ये प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं उसका वॉल्यूम फुल ऑन किया है कि ये नहीं किया है, ये तो आपको हमें सच सच बताना होगा। सुना ना, हमारे यहाँ तो गाना बिल्कुल जोर से ही बजता है, बस अपने जो जिस भी गैजेट पे आप सुन रहे हैं ना, बस उसका भी वॉल्यूम फुल ऑन करके रखिए। नमस्कार एफएम रेनबो लखनऊ, भोजपुरी या तड़का, हरियाणवी हिट्स, पंजाबी पॉप और हिट सॉन्ग सब बजते हैं, लगते हैं गजब। रात 12 बजे रजनीगंधा प्रोग्राम तक साथ देने वाला, ये हुई ना बात अरविंद, इसको कहते हैं दिल से दिल का कनेक्शन। और आप यूं ही हमारे साथ बने रहिएगा, इसीलिए तो कहते हैं 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की। और ये आगे लिखते हैं कि लिखते हैं रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम नाम के अनुरूप सतरंगी है बिल्कुल। अरविंद गोदिम, गोविंद प्रतिमा प्रतिष्ठा, तन्वी, दीपा, श्याम कुमारी, ग्राम धर्मदेवा पोस्ट, छटावा, जिला मिर्जापुर से मेल हमें आया है अरविंद जी का। और इसके साथ ही सदाशिव का भी मेल आया, सदाशिव जी लिखते हैं, ग्राम सलेमपुर पोस्ट मुंडेरी, जिला सीतापुर से ईमेल कर रहा हूं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, प्यारे प्यारे खूबसूरत से इमोजी, इसके लिए शुक्रिया। बाबू अंसारी का भी मेल आया, लिखते हैं देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से मेल किया, प्रीति मैम गुड इवनिंग, प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। भाई हमारे लिसनर से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार मेल करिए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी का मेल छूट जाए, और अगर किसी का ईमेल छूटा तो हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्लीज एक ही मेल करिए जिससे सारे के सारे ईमेल शामिल हो जाएं। जैसे कि रितेश वर्मा, मुस्तफाबाद जरवल रोड बहराइच से मेल किया, नमस्ते कैसी हैं आप, अपनी पसंद का कोई भी गाना सुना। भाई ये इतनी देर से जो बज रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी पसंद के नहीं बज रहे हैं, आपकी भी पसंद के बज रहे हैं, लग रहा है कि आप ही की पसंद के हैं, बस नाम हमने अपना दे दिया है, कोई बात नहीं। पूजा पाल का भी मेल आया, गुड इवनिंग लिखती है, मिर्जापुर से सदना सीतापुर से हूँ, मेल इस टाइम बिछौली से प्रोग्राम सुन रही हूँ, और मेरे साथ सिस्टर वंदना भी सुन रही हैं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है मैम, मैं आपके साथ 12 बजे तक दूंगी, देखते हैं आज। मैम पूजा आपका भी नाम अपनी लिस्ट में लिख ले रही हूँ, ठीक है, और 12:15 गुड नाइट का मैसेज जरूर करना। रामराज का भी मेल आया है, रामराज जी हमने आपका मेल पढ़ लिया है, और साथ में लगते हैं अच्छा ईमेल पढ़ने के लिए आपने धन्यवाद का मेल भेजा, सो स्वीट ऑफ यू। वकील अहमद का मेल आया, अस्सलाम वालेकुम, अब तो मैंने यूं पढ़ लिया सुल्तान, अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, अच्छा थैंक यू सो मच, पॉप टाइम अच्छा लगता है। शकील के घर पर मिला दुनबी हैं, हम सब सुनाने जा रहे हैं, ओके, अगर थोड़ा सा भी कहीं इधर उधर तो उसके लिए गुस्ताखी की माफ कीजिएगा मुझे। और अब आगे लिखते हैं कि अच्छा उसमें से आपने थोड़ा सा समय निकालकर ईमेल पढ़ को टाइप किया है जिससे कि आप हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, सीतापुर से हमें मेल किया है वकील अहमद जी, शुक्रिया। अब जो वक्त है 9:31 का, ये कहता है कि अगला गाना सुना दिया जाए, वरना अब शिकायतों का ईमेल आ जाएगा कि आपने मेल बहुत देर तक पढ़े हमें गाने कम सुनवाए।

0: शाम को लिप्स लगाना
1: तो नजर उतर जाती है दादी।
2: नैनों में तेरे कचरे की धार रे, लिपस्टिक लगा के नजर उतार ले, लिपस्टिक लगा।
3: सुना, लिपस्टिक से नजर उतरती है।

जी हाँ दोस्तों, वक्त हो गया 9:43 और कुछ सेकंड्स। तो अगर अभी तक आपने ईमेल नहीं किया है तो हम आपको बता दें, हमारा पता है fmakashwanilakhnu@gmail.com पर हमें मेल करना है। तो अगर अभी तक आप इंतजार कर रहे हैं हम आपका नाम लेंगे तो भाई हम क्यों ही ले नाम भाई, ये तो हमारा लोगों का दिल का दिल से कनेक्शन होता है। तो आप सब फटाफट हमें मेल करिए और जब तक हमें मेल नहीं करेंगे हम तब तक रजनीगंधा नहीं शुरुआत करेंगे। लेकिन ठीक जैसे 10 बजेगा हम न्यूज पढ़ के हम रजनीगंधा की शुरुआत कर देंगे, लेकिन आप ईमेल जरूर करिए हमें। तो लीजिए पिंकू सोनी, पहली बार में हमने बिल्कुल सही पढ़ा था आपका नाम। मैम जी आपको सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी परिजात धाम टिकैत नगर बाराबंकी से मेल कर रहा हूँ। प्रोग्राम सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, गाने भी आपको पसंद आ रहे हैं, मेल शामिल करने के लिए शुक्रिया। इसको रखे रहा करो अपने पास। प्रोग्राम आपका मेरे दोस्त भी सुन रहे हैं, कुलदीप जी उधौली से और आकाश वर्मा जी मुरारपुर दरियाबाद से। तो भाई ये आपको जो उन्होंने क्यों आपसे बोला कि आपका नाम वो लिखे, उनसे कहिए खुद से अपना ईमेल करें तब हम उनका नाम पढ़ेंगे, बताना मत उनका नाम हमने पढ़ दिया है। और देखिए हमें फीडबैक मिल गया है, सुल्तान रजा जी कहते हैं बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, शुक्रिया सुल्तान जी। और गुलफ्सा सिद्दीकी का भी मेल आ गया, लिखते हैं गुड इवनिंग प्रीति मैम, गुलफ्सा सिद्दीकी संडीला से। पहले आप ये बताइए मुझे लगता है पहले मुझे प्रोग्राम जैसे हम 8 बजे की न्यूज पढ़ा करें उसके तुरंत बाद बता दिया करें कि हम इन्हें दिन से कहां थे। फिलहाल हम आपको बता दें कुछ जरूरी जो होते हैं ना कार्य हमारे जीवन में, उनको हम पूरा करने की वजह से नहीं आ पाए थे, लेकिन हमने आप सबको बहुत मिस किया। और आज जैसे हम 8 बजे आए स्टूडियो तो हाय दिल गार्डन गार्डन हो गया, और 9 बजे तो मैंने उस गार्डन के सारे फूलों को आप सबको समर्पित कर दिया है, और गुलफ्सा उसमें से एक फूल आपके लिए भी है। और आगे लिखती है जल्दी जल्दी आया करो, महान कृपा होगी आपकी, आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, शुक्रिया गुलफ्सा। मैं तो ये कहूँगी आपकी ईमेल करने का अंदाज माशाल्लाह बहुत अच्छा है, सही बोला ना मैंने। साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, क्षमा परवीन, महक अंसारी, ममता गौतम, निशा अंसारी सुन रहे हैं सब, तो शुक्रिया मेल करने के लिए। महेंद्र जी का मेल आया, लिखते हैं सादर प्रणाम, मैं महेंद्र देपन गांव रूप नगर से और अभी 100.7 FM रेनबो पर आपका प्रोग्राम पॉप टाइम को सुन रहा हूँ। रात की इस गर्मी में आपकी आवाज और गानों का साथ बहुत सुकून दे रहा है, ये सुकून और भी देगा जब रात 12 बजे तक देगी। पहले आपने लिख दिया कि रात 12 बजे तक आप रहेंगे हमारे साथ और आपकी बेहतरीन एंकरिंग के लिए ये लाइन। भाई हम भी थोड़ा सा खुश होने का हमें भी हक होता है, भाई बहुत ही प्यारा सा एक पोस्टर भी बना के भेजा है, थैंक यू सो मच। और लिखते हैं आपकी आवाज़ में वो जादू और वो बात है जो महका देती है हर एक हंसी रात है, अल्फाज आपके दिल को सुकून देते हैं जैसे तपती गर्मी में कोई ठंडी बरसात है। और ये जो मुझे इन्होंने पोस्टर भेजा है ना, इतना खूबसूरत भेजा है पोस्टर कि हम लिसनर्स आपको बयां नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिल से बस यही कह सकते हैं कि थैंक यू सो मच इतना प्यार बरसाने के लिए, बस यही तो है जिसकी वजह से हम भाग भाग के आपके लिए आते हैं। विराज मौर्य जी का भी मेल आया, लिखते हैं कि मेरा नाम विराज मौर्य है और पलिया कला लखीमपुर खीरी से मेल कर रहा हूँ, मैंने यह मेल दूसरी बार किया है, धन्यवाद मेरा। फिर वही बात भाई, मैं सारे लिसनर्स को अभी आज मैं ये यहाँ से अनाउंस करती हूँ कि ये धन्यवाद सॉरी थैंक यू ये सब कहीं और आप यूज़ करिए, फिलहाल उन शब्दों की बहुत ज़रूरत होती है, यूज़ करते रहा करिए लेकिन 9 से 10 के बीच में बिल्कुल भी नहीं। जिशान खान लिखते हैं कि हेलो प्रीति मैम, आम जिशान खान संडीला से सुन रहा हूँ प्रोग्राम और आवाज़ की है तारीफ, इस आवाज़ को हम संभाल कर रखेंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है, आपने लिखा है हम तो यही कहेंगे माशाल्लाह, आपकी मेल करने के अंदाज को हम कहेंगे बड़ा ही अच्छा लिखा है, प्रोग्राम भी बहुत अच्छा करती हैं आप, सुनकर मज़ा आता है। गुलफ्सा सिद्दीकी आपने आगे लिखा है प्रोग्राम अच्छा करती हैं आप, सुनकर मज़ा आता है। गुलफ्सा सिद्दीकी, अच्छा गुलफ्सा सिद्दीकी जी जहाँ कहीं भी हैं सुन रही हैं तो सुन लीजिए, जिशान खान ने आपका नाम लिखा है यहाँ पे। तालिब अंसारी जी का फिर से मेला है, प्रोग्राम स्टार्टिंग पे आप जब प्रीति मैम जो म्यूजिक प्ले करती हैं तो धड़कन बढ़ जाती है, ऐसा क्यों भाई, ये तो हम भी पता करेंगे ज़रूर कि ऐसा क्यों है। और फिलहाल शुक्रिया, आपका प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिपीट पे म्यूजिक सिस्टम पे सुनते हैं, क्या बात है तालिब अंसारी जी, ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल की बात हो गई जो हमें बड़ी ही पसंद आई। थैंक यू। जावेद अख्तर का भी मेल आया फिर से, गुड ये जो आपने इतने सारे मेल क्यों भेजे, थोड़ा सा रुक जाओ। और राजेश कुमार के भी मेल को शामिल करते हैं, लिखते हैं जब हम उनके घर गए कहने दिल से दिल लगा लो, उनकी माँ ने खोला दरवाजा, हम घबरा कर बोले आंटी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलवा लो। इस जो को हम जरूर आज लिख लेते हैं, हम मॉर्निंग में इसको लिखकर गुड मॉर्निंग भेजेंगे। प्रोग्राम मस्त कर रही हैं आप, और आपके इस जोक के लिए शुक्रिया।
मोनू सेठ कहते हैं कि कल हमने बुधवार प्रोग्राम में आपके आने के लिए रत्ना जी से प्रोग्राम में मेल किया था और आज आप आ ही गई, बहुत खुशी हुई। जी हमें रत्ना जी ने बताया था कि आपने हमें याद किया है और इसलिए आज हमने कहा सारे काम काज छोड़ो, बस पहुंच जाओ 100.7 एफएम रेनबो के स्टूडियो। सुरेश खन्ना जी का भी मेल आया है और ये हमें लिखा है ग्वालियर से, सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आरव खुराना और एसके पप्पी, इन्होंने मेल किया है। जे एफ जे जे एस, भाई ये क्या है नाम, हम समझ नहीं पाए, कोई बात नहीं। मोहम्मद साबिर अंसारी चमनगंज कानपुर से मेल किया, गुड इवनिंग प्रीति जी, कानपुर में आपका धमाल फुल वॉल्यूम जी, शुक्रिया। हम लोगों के तीनों भाइयों का नाम ले लीजिए, बिल्कुल, मोहम्मद सबीर अंसारी कानपुर, मोहम्मद तालिब अंसारी राजा कटरा और आसिफ अंसारी तेलंगाना से। मैं कितनी देर से तो इन तीनों के नाम ले रही हूँ, अब आप हमें जो है क्या ये थैंक यू वैंक यू मत भेजा कर यार। अब चलो गाना सुन लेते हैं, ये गाना है और देखो वक्त इतनी तेजी से भाग रहा है, हम इतने सारे मेल पढ़ने में गाना ही भूल जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत जरूरी है।

भाई वक्त बहुत कम बचा है, रेनबो कैफे नहीं कहे, रेनबो कैफे कह ले, पॉप टाइम कह ले, दोनों एक ही बात है, बस सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे हेड कहे चाहे जो भी कहे, लेकिन दोनों एक ही बात है। तो भाई एमके राज का भी मेल आ गया, लिखते हैं कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, मुनेश कुमार गांव भानपुर हरहुआ से ये मेल किया है, और भाई टाइम कम होने की वजह से हम बस नाम शामिल कर लेते हैं। विराज मौर्य का भी मेल आया है, लिखते हैं कि प्रोग्राम सुन रहा, प्रोग्राम को हमेशा सुनता हूँ, मेल शामिल करने के लिए शुक्रिया। वीके गुप्ता जी ने बस मेल किया है और शुक्रिया का मेल भेजा है। जय का मेल आया है, लिखते हैं होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, प्रोग्राम के सभी सॉन्ग हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। विनीत कुमार का मेल आया, वीके गुप्ता का मेल आया है, अमन नवाब का भी मेल आया, हाय डियर प्रीति दी, गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग, आज तो सरप्राइज दे दिया आपने। जी बिल्कुल, हम सरप्राइज यूं ही देते रहते हैं, लेकिन ये बताओ इतनी देर से थी कहाँ। लाइफ इज ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल अगर तुम साथ हो। प्रीति दी, अमन नवाब का है ये खूबसूरत सा मेल संडीला से। जिशान खान भी मेल कर रहे हैं, लिखते हैं अरे प्रीति मैम, गुलफसा सिद्दीकी मेरी वाइफ है, मुझे पता है ये आपकी वाइफ है, लेकिन मैं तो आपके मुंह से सुनना चाहता, क्यों नहीं आप यूं ही बताते रहा करिए और घर पे भी यूं ही जाहिर किया करते रहा करिए, ये नहीं कि वाइफ है तो बस खाना बनाए, सबको बताइए कि आपकी इतनी प्यारी सी वाइफ है। रेनू देवी का भी मेल आया है, लिखते हैं प्रोग्राम पॉप टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा है, विलेज हसनपुर और औरस उन्नाव से हमें ये मेल किया है। विजेश का भी मेल आया है, गुड इवनिंग प्रीति मैम जी, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, कोई भोजपुरी सॉन्ग जरूर, अब जो वक्त है ना वो कहता है कि मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, किसी दिन आएंगे और जरूर सुनवाएंगे। विनीत कुमार का भी मेल पढ़ लेते हैं, और ये हमें रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से मेल किया है, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लखनऊ से हरिकेश, लखनऊ से और बहुत सारे नाम लिखे हैं, राजाजीपुरम से भी नाम लिखे हैं, लेकिन वक्त है ना, ये वक्त कम वक्त कह रहा है कि आखिरी गाना को सुनवा दिया जाए, और इस गाने को सुनिए, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, पॉप टाइम को करते हैं यहीं पर वाइंड अप, और इसके बाद न्यूज, न्यूज के उस पार रजनीगंधा कर रहा है आपका बेसब से इंतजार, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, और आज आपके साथ है आरजे प्रीति।

नमस्कार, रात्रि के 10 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आंधी तूफान, ओलावृष्टि तथा आकाशीय बिजली से आई आपदा के दृष्टिगत राहत कार्य तेजी से संचालित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आपदा प्रभावित जनपदों के प्रभारी मंत्रियों से अपेक्षा की है कि वह अपने प्रभार वाले जनपदों में तत्काल पहुंचकर राहत कार्यों का अनुश्रवण करते हुए इनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं। राहत कार्यों के संबंध में यदि शासन स्तर से किसी अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो तो तत्काल अवगत कराएं ताकि प्राथमिकता पर व्यवस्था की जा सके। पेट्रोलियम पदार्थों की खपत कम करने तथा सरकारी खर्चों में कटौती करने के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर असर दिखने लगा है। सीएम योगी की अपील का अनुसरण करते हुए गोरखपुर के महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने अब बिना स्कॉट वाहन के आना जाना शुरू कर दिया है। सांसद रवि किशन शुक्ल ने भी अपना काफिला छोटा कर दिया है। अब वह दो गाड़ियों के साथ ही निकल रहे हैं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने मुख्यमंत्री की अपील के बाद अपने कार्यदायित्व निर्वहन के लिए स्कॉट वाहन को हटा दिया है। आवास आयुक्त बलकार सिंह की अध्यक्षता में आज अमरोहा में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विकास कार्यों एवं जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसके साथ उन्होंने प्रभारी मंत्री केपी मलिक द्वारा जनपद भ्रमण के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुपालन आख्या की समीक्षा भी की। नोडल अधिकारी ने जनपद में सभी ग्राउंड वाटर रिचार्ज संरचनाओं को सक्रिय करने के लिए निर्देश दिए हैं। शाहजहांपुर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने ग्रामीण इलाकों में तालाब

एवं चारागाह भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने और पुनर्जीवन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने तालाब की भूमि खाली कराने, डालमिया चीनी मिल का पानी रोकने, तालाब खुदाई, ट्रैक निर्माण और वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं चारागाह भूमि पर गौशाला निर्माण और हरे चारे की बुआई सुनिश्चित करने को कहा है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
1: वो भूली दास्तां फिर याद आ गई।
0: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: रात के इस खामोश चादर में जब यादों की हल्की हल्की खुशबू घुलने लगती है, तब जिंदगी के कुछ अनछुए किस्से दिल के किसी कोने से धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। कुछ पल ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह भुलाए ही नहीं जाते, पुराने खतों की तरह, जिन पर वक्त की धूल तो जम जाती है मगर एहसास अब भी वैसा ही है, ताजा। तो आज के इस रजनीगंधा रात में हम लेकर आए हैं वही सुनहरे नगमे जो कभी आपकी धड़कनों के बेहद करीब हुआ करते थे। हर गीत के साथ जुड़ी होगी कोई याद, कोई अधूरी कहानी, कोई मीठी मुस्कान। तो बस अपने दिल को थोड़ा सा खुला छोड़ दीजिए और इन पुराने गीतों के साथ खो जाइए उस दौर में जहां मोहब्बत सादगी में बसती थी और एहसास शब्दों से ज्यादा सुने जाते थे। फिलहाल आप सुन रहे हैं आरजे प्रीति को रजनीगंधा प्रोग्राम ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की। सुनते रहिए

दोस्तों, अक्सर वक्त अपनी रफ्तार को भूल जाता है, या शायद हम उसे भूल जाते हैं। क्या आपको याद है वो पहली बार जब भीड़ बहुत थी, शोर भी बहुत था, लेकिन आपकी पूरी दुनिया अचानक एक चेहरे पर आकर सिमट गई हो। वो पल जैसे कुदरत ने उस एक सेकंड को खींचकर एक पूरी उम्र में बदल दिया हो। अच्छा, लोग कहते हैं कि इश्क में दिल धड़कता है, लेकिन उस पल तो ऐसा लगता है कि मानो दिल ने धड़कना ही छोड़ दिया हो, है ना? सिर्फ ये देखने के लिए कि आप सांस कैसे लेते हैं, यानी कि दिल ऐसा सोचता है। उस खूबसूरत चेहरे को देखकर एक बार दिल खुद को रोक लेता है और ये परखता है कि अब आप कैसे सांस लेंगे। वो घड़ी की सुइयां जो आज तक हमें हमेशा दौड़ाती रही हैं, उस दिन पहली बार हमारे हक में ठहर गई थी। जैसे वक्त ने भी झुककर कहा हो, बस यही तो है वो लम्हा जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था। ना कोई लफ्ज थे, ना कोई बहाना, बस एक नजर का जादू था जिसने रूह के सारे बंद दरवाजे खोल दिए थे। उस ठहराव में हमने पहली बार खुद को जाना था। और ये किस्सा हमारा नहीं, ये तो आपका है, जिसे हम बनकर पढ़ गए। बस इस तरह के बहुत सारे आपके दिल में किस्से हैं जिसे आज हम बनकर यहां पर पढ़ेंगे। बस सुनना आपको है।

जिंदगी एक ऐसी किताब की तरह है जिसके पन्ने हम हर रोज पलटते हैं, कभी खुशियों के तो कभी गम के। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पन्ने पर आकर अटक गए हों? हुआ जरूर होगा। वो पन्ना जो अब बहुत पुराना हो चुका है, जिसकी स्याही भी धुंधली पड़ गई है, लेकिन आज भी जब आप उसे पढ़ते हैं तो वो पुरानी खुशबू और वही बेचैनी फिर से जिंदा हो उठती है। आप पूरी कोशिश करते हैं कि आगे के पन्ने हम पलटें, नई कहानियां लिखें, लेकिन वो एक पहली नजर का ठहराव, वो एक ऐसा पन्ना होता है जिसे आप अपनी जिंदगी से, क्या अपनी किताब से फाड़ ही नहीं सकते और ना ही उसे किताब से बाहर निकाल सकते हैं। वो आपकी रूह के किसी कोने में एक दबी हुई आह बनकर आज भी धड़क रही है। आप जानते हैं कि वो दौर गुजर चुका है, वो वक्त बीत चुका है, लोग बदल चुके हैं, फिर भी आज हम उन्हीं पुराने यादों के पन्ने फिर से पलट रहे हैं। शायद हम उस पन्ने से, उस किताब से आजाद ही नहीं होना चाहते, या फिर हम इसी कैद में खुश हैं। और इसे जिसे आप खुशी समझते हैं, वो शायद एक चुभन है जिसे आप उस चुभन के दर्द को हर रोज महसूस करते हैं, लेकिन उस दर्द को दर्द नहीं समझते। उसमें भी आपको एक अलग ही खुशी मिलती है। तो अगर ऐसा कोई पन्ना है जो आपकी जिंदगी में निकल चुका है, लेकिन बार बार उस पन्ने को आप पढ़ रहे हैं, तो मेरी राय तो यही होगी, उस पन्ने को किताब से अलग मत करिए, क्योंकि वो भी जैसे हर एक पन्ना उस किताब के लिए जरूरी होता है, तो हमारी जिंदगी में भी हर एक इंसान जरूरी होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि किताब अगर भर गई हो तो नई किताब आप ना खरीदें, नए पन्नों को ना पढ़ें, नए पन्नों पर नए अल्फाजों को आप ना उकेरें, है ना? तो अगर कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है तो पुराने पन्नों को पढ़िए, संजो कर रखिए, लेकिन नई कहानियां जरूर लिखिए, क्योंकि कहते हैं कि जीवन के दिन छोटे सही। सुनिए इस गाने को और कुछ नई कहानियां लिखने की कोशिश कीजिए।

कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि पूरी महफिल में बैठे हों आप, चारों तरफ आवाजें हों, लोग हों, बातें हों, फिर भी दिल सिर्फ एक ही शख्स को ढूंढ रहा हो? मोहब्बत की बेचैनी शायद यही होती है ना? जब वो पास ना हो तो हर चीज में उसकी कमी महसूस होने लगती है। रात की हवा भी जैसे मानो उसका नाम लेकर हर बार हमारे बगल से गुजरती है। और जानते हैं आप कि ये जो पुराने गीत होते हैं ना, ये पुराने नगमे, ये दिल को और ज्यादा उसके करीब ले आते हैं। और फिर इंसान थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, अजीब इन द सेंस अजीब सा बिहेव करने लगता है। बेचैनी इतनी होती है कि वो बार बार फोन देखने लगता है, बिना वजह मुस्कुरा देना, और हर थोड़ी देर में ये सोचना कि काश वो अभी यहीं होता। मोहब्बत में दूरी सिर्फ फासलों की नहीं होती दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी खामोशी भी पूरी रात बेचैन कर देती है। और शायद इसी बेचैनी में प्यार अपने सबसे खूबसूरत शक्ल में महसूस होता है।

दोस्तों, अभी जल्द ही आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि बारिश हुई थी। इसमें महसूस करने वाली शायद कोई बात ही नहीं, बारिश तो हुई ही थी जल्दी। और मैंने उस वक्त में किसी को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया था। मैंने सोचा था उसी वक्त कि जब भी मैं रजनीगंधा करने आऊँगी, इस किस्से को ज़रूर आपसे बयां करूँगी। और बस आज मुझे मौका मिल गया। हर रोज़ मैं देखती थी, एक लड़का था मेरे घर के सामने, खिड़की से मैंने देखा था, एक चाय की दुकान थी। एक लड़का हर शाम अपनी गली के नुक्कड़

वाली चाय की दुकान पर सिर्फ इसलिए जाया करता था, यानी कि आया करता था, क्योंकि उसी वक्त वहां से कोई गुजरता था। न कभी उससे ठीक से बात हुई और ना ही इजहार मोहब्बत, बस नजरें मिलती थी और दिल उन दोनों का शायद मुस्कुरा देता था। ये सब हम अपनी खिड़की से देखते थे दोनों को। और फिर जब अभी बारिश हुई थी, उस दिन मैं यूं ही खिड़की पर बैठी हुई थी और सोचा शायद आज दोनों फिर से दिखे मुझे। और बस उस दिन हर रोज मेरा खिड़की पर बैठने का जो मकसद था ना, उस दिन पूरा हो गया। पहली बार उस दिन बारिश हो रही थी, पहली बार लड़के ने हिम्मत करके अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ा दी। उस छोटी सी बारिश में न जाने कितनी बातें हुई होंगी बिना कुछ कहे। शायद मोहब्बत ऐसी ही होती है ना, बहुत शोर नहीं करती मोहब्बत, बस धीरे से जिंदगी में उतर जाती है। इन दोनों की जैसे जिंदगी में उतर गई। लड़का यूं ही तो वहां पे चाय पीने आता था, बस किसी को गुजरते हुए रोज देखता था और दिल में वो घर कर गई। और जिस दिन बारिश हुई, उन बारिश की बूंदों के साथ ही इजहार मोहब्बत हो गई, बिल्कुल किसी पुराने गीत की तरह। तो चलिए सुनते हैं एक और गीत। आप सुन रहे हैं रजनीगंधा।

और दोस्तों जो अभी मैंने आपके साथ कहानी शेयर की, तो पहले तो इंतज़ार रहा होगा लड़के का, और फिर जब दोनों लोग एक साथ, जब लड़के ने छतरी बढ़ाई होगी, तो शायद कुछ इस तरीके से रहे होंगे जज्बात।

दोस्तों वक्त हो चला है 10:54 और कुछ सेकंड्स, और इस वक्त के साथ ही रजनीगंधा का पहला पड़ाव बस यहीं तक। ठीक 11 बजे आप सुनेंगे न्यूज़, न्यूज़ के उस पार रजनीगंधा फिर से वापस आएगा। और चलिए सुनते हैं ये गाना, कहीं मत जाइए, बस सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। और आज रात 12 बजे तक रजनीगंधा के सफ़र में आपकी हम सफ़र प्रीति रहेगी आपके साथ।